शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में। जैसा हम हमेशा करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का है, क्योंकि हम इसमें अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। और इस पहचानने की

0: कोशिश में हमारे जो मेहमान होते हैं वो हमारा साथ देते हैं, हमें बताते हैं क्या करें क्या ना करें क्या सोचें। तो आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो सुनीता मैम हैं। मैं सुनीता मैम का बहुत आभार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ और उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कौन हैं सुनीता मैम, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता, अगर मैं उसके साथ एक विशेषण जोड़ दूं तो साधारण सुनीता।
0: वाह क्या बात है,
1: बस ये मेरी पहचान है। और क्या बोलूं कि कहाँ रहती हूँ, हाँ इस जमीन पे हूँ, जमीन से जुड़ी हूँ और ठौर ठिकाना बहुत जगह है, कभी अमेरिका तो कभी भारत, तो कभी भारत के हिमाचल में, तो कभी दिल्ली में, तो कभी गोवा में। सो भगवान की दया से ऐसा कुछ वक्त रहा है कि मुझे जगह जगह रहने को मिलता है। अब मैं रिटायर्ड हूँ तो घूम सकती हूँ इधर उधर।
0: जी जी, नहीं तो रिटायर्ड मतलब आप किसी प्रोफेशन में थी, कुछ विभाग में थी, कुछ कर रही थी आप?
1: जी मैं पढ़ाई से जुड़ी थी और मैं अध्यापिका रही हूँ और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ट्रेनर, और जिसमें मैं इंग्लिश की वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर भी रही हूँ। और कैसे कोई भी भाषा, देखिए हम हिंदी बोलें तो हिंदी की का भी उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए, और सही नहीं होने से उसका जो अर्थ है वो विकृत हो जाता है। ऐसे ही अंग्रेजी में भी ये है, तो मैं प्रोनंसिएशन पे काफी जोर देती थी और उसको न्यूट्रलाइज करने का कि ना तो आप अमेरिकन ढंग से बोलें, ना आप अपना अपना रीजनल टच उसमें लेके आए, जैसे अगर बंगाली होते हैं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट अलग सा एक तरीका हो जाता है, तो उससे फिर मीनिंग्स जो हैं वो बदल जाते हैं। तो मैं साधारणतः यही चाहती हूँ कि जो भी भाषा हो उसको जितना हो सके उसको स्वच्छ स्पष्ट रूप से बोला जाए, और वही मैं सिखाती थी।
0: बहुत बिल्कुल सही बात बताई सुनीता मैम ने कि भाषा वैसे भी किसी सहारे की मोहताज नहीं होती, अपने आप में बहुत ताकतवर चीज होती है भाषा। और बड़ी मजेदार बात है दोस्तों, हम इंसानों को, मनुष्यों को प्रकृति से, प्रकृति के दूसरे जीवों से अलग हमारी भाषा ही बनाती है। हमने उसको कितना डेवलप किया है, कितनी भाषाएं मौजूद हैं और हम उसको कितने प्यार से बोलते हैं। तो ये भाषाएं बहुत ताकतवर होती है दोस्तों, इनका गलत इस्तेमाल कभी ना करिएगा।
1: और फिर राष्ट्रभाषा
0: जी,
1: तो वो हमारी माँ है
0: जी,
1: तो उसका सम्मान तो करना ही है। जो बोले वो अच्छा बोले।
0: बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात। तो जैसा कि इस प्रोग्राम का थीम है सुनीता जी, जो इस प्रोग्राम की आत्मा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है आध्यात्म। तो मुझे बताइए, हमारे दोस्तों को बताइए, अपने विचार साझा कीजिए कि आध्यात्म से आप क्या समझती हैं, आप क्या मानती हैं, आध्यात्म क्या है?
1: जी सो अध्यात्म या जो आजकल बाकी लोग जैसा इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी
0: जी,
1: उसका अर्थ है स्वयं की उन्नति। अब जब आध्यात्मिकता की बात होती है तो हमारे माइंड में, हमारे मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। मैं जन साधारण की बात कर रही हूँ, वो सोचते हैं कि शायद कोई गेरुए रंग का चोगा पहनना होगा, या कोई चीज से परहेज करते होंगे, या कुछ और ऐसा होगा। लेकिन सही माने में अध्यात्म का अर्थ केवल स्वयं का उद्धार है। हम अभी जिस तल पर हैं उससे हम ऊपर उठें, हम स्वयं को जानें, स्वयं को देखें कि हम खुद कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन का मूल बन जाता है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। और अध्यात्म को कभी भी हम धर्म से नहीं जोड़ सकते, ये कोई भी एक धर्म नहीं है, हिंदू क्रिश्चियन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इंसान को अपना समझना, अपनी वृत्तियों को समझना, अपने ध्येय को समझना, अपनी हम क्या करते हैं और कैसी हमारी सोच है, स्वयं को जानना, ये है अध्यात्म।
0: जी अमेजिंग। जाहिर सी बात है कितने प्यारे ढंग से सुनीता मैम ने इस चीज को समझाने की कोशिश की दोस्तों कि अध्यात्म, और बहुत ही खूबसूरत से उन्होंने अध्यात्म और धर्म के बीच का फर्क भी हमें समझाया, बहुत खूबसूरत। अब इसी विषय में आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, उससे पहले हम लोग बस जरा सी देर रुकते हैं, एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आपके पास वापस आता हूं।

0: अब इसी बातचीत को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जैसे कि अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो एक शब्द आया धर्म, तो उसको आपने हमें समझाया। फिर एक और शब्द आता है प्रार्थना, प्रेयर, और एक और शब्द आता है ध्यान यानी कि मेडिटेशन। तो हमारे सुनने वालों के लिए और आपस में हम जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसके उद्देश्य के लिए, प्रार्थना और ध्यान के बीच का फर्क या उनकी सिमिलैरिटी के बारे में सुनीता जी आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगी, मेडिटेशन एंड प्रेयर यानी कि ध्यान और प्रार्थना?
1: जी, सो ये आजकल बहुत ही एक प्रचलित शब्द है मेडिटेशन, और ये एक एक तरह का फैड भी बन गया है, फैशन भी बन गया है, और लोग इसमें अपन को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं तो जी मेडिटेशन करता हूँ, ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है, लेकिन जब सच में वो करने बैठते हैं, आम जनता की बात कर रही हूँ, तो 5 मिनट भी इतने लंबे लगते हैं, इतने लंबे लगते हैं, और हर तरह के उसमें आपके ख्याल आ रहे होते हैं
0: जी।
1: तो यहाँ पे मैं ये जरूर इसमें फर्क बताना चाहूंगी कि ध्यान या मेडिटेशन आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी ही गतिविधियों को देखना है, परखना है, कहाँ दौड़ रहा है, किसके पीछे, किस मकसद से, मेरी वृत्ति क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन भले के लिए कुछ कर रहा हूँ या किसी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसमें भी देखिए आप बहुत अंतर है। तो ये जब हम ध्यान में बैठते हैं, या इससे तात्पर्य ये भी है कि ये सही अवलोकन है कि इसमें जब हम बैठते हैं तो हम इन प्रश्नों के बारे में अपनी ही वृत्ति को देखते हैं। अब देखिए, अब एक चोर मानिए, वो भी तो आंख बंद करके बैठ सकता है ना, लेकिन आप सोचिए वो क्या सोच रहा होगा, वो चुपचाप बैठकर अगले दाम के बारे में सोच रहा होगा
0: जी,
1: है ना, कि वो केवल सिर्फ प्रिटेंड करना नहीं है, है ना, वो तो अपनी चोरी की युक्ति निकाल सकता है, लेकिन यहाँ फिर सच्चाई का मामला है अपनी ही चोरी पकड़ने का।
0: जी जी,
1: ये है कि मैं जो ये कब काम करने लगी हूँ, या मैं ऐसे जो शब्द बोल रही हूँ, या मैं किसी के आगे बहुत झुक रही हूँ, झुक कर नमस्कार कर रही हूँ, और जैसे ही वो चले जाते हैं मैं बोलती हूँ अरे फिर आ गए परेशान करने, और फिर ये ऐसे या फिर ये, तो ये अपनी चोरी पकड़नी है, अपनी अपने को स्वयं देखना है कि हम कितने सच्चाई से चल रहे हैं
0: जी, जी।
1: इस बारे में सोचना का अर्थ है मेडिटेशन और ध्यान। फिर जब आप अपने के लिए जब सोचते हैं तो आप देखिए आपके आधा घंटा क्या घंटा भी निकल सकता है, और तपस्वी लोग आपको पता ही है कि वो फिर घंटों निकाल देते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: ये है सही माने।
0: बहुत खूब दोस्तों, आपने जाना कि सुनीता मैम ने कितने प्यार से इस चीज को समझाया है कि ध्यान और

0: और प्रेयर प्रार्थना किस तरीके से हमें इतना मग्न कर देती है अपने आप में।
1: प्रार्थना, प्रार्थना आपने मेरे को बोला
0: जी।
1: प्रार्थना तो हम बस हमारी एक ये विश है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इसी को बस ऊंचा से हम बोल रहे हैं और वो बदलती रहती है। प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे वो लड़की मिल जाए, प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे वो लड़का मिल जाए, आज प्रार्थना कर रहा हूँ वो मुझे ये घर मिल जाए, ये इतना पैसा मिल जाए। अब इसको तो प्रार्थना नहीं बोलेंगे। प्रार्थना का मतलब है आप सच में एक उच्च शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं और उसका धन्यवाद दे रहे हैं, तब तो हम कहेंगे ये प्रार्थना। ध्यान में भी वही है कि आप कृतज्ञता को महसूस करें।
0: वेरी राइट। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर एक फर्क आ रहा है कि प्रार्थना हम कुछ स्वार्थी होकर करने लगते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है कि हम बहुत ज्यादा स्वार्थी होकर भी नहीं। स्वार्थ अपने आप में एक लेवल तक ठीक होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को उचित रख पाएंगे तभी तो आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगे, लेकिन बस बाल भरे का फर्क होता है। हम कभी अपने लिए स्वार्थी होते हुए उस बाल को कब पार करते हैं पता ही नहीं चलता। यही संभलने की जरूरत है, इसी को आध्यात्म कहते हैं। बहुत खूब। तो जाहिर सी बात है कुछ फायदे हमें नजर आए, अभी सुनीता जी ने बताया। तो सुनीता जी, इस बारे में आप थोड़ा और खुल के हमें बताइए कि आध्यात्म किसी भी इंसान को कैसे और ज्यादा पॉजिटिव कर सकती है और सकारात्मक बना सकती है और एक अच्छा इंसान बना सकती है।
1: जी, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है, जैसे मैंने कहा, ये एक सत्य के पथ पर चलने का तरीका है। और जब हम खुद से सच्चे रहेंगे तो हम हमेशा सच्चाई से ही आगे बढ़ेंगे और परोपकार की तरफ भी बढ़ेंगे। सो आप एक बार ही फिर आपने बोला कि पॉजिटिव
0: जी
1: है ना, कि पॉजिटिव जो है कि सच जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इन अ सेंस कि हमें आम किस चीज का डर होता है, कभी मृत्यु का डर, कभी ये जीवन जानते हुए कि ये बिल्कुल क्षण भंगुर है, फिर भी हम डरते हैं कि अगर मेरा ये छिन गया या मृत्यु हो गई या बीमारी आ गई, ये सब चीज जो है, अगर हम ये समझें कि हम एक प्रकृति का एक अंग है, एक रूप भी है, जैसे एक पेड़ भी बड़ा होता है, पत्ते आते हैं उसमें नए नए, ऐसे ही हमारी भी अपने शरीर भी जो है वो उन्हीं पंचभूतों का बना हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीजें हम में भी हैं और प्रकृति में भी यही है। सो हम प्रकृति का ही एक अंग है। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि नहीं मैं अलग सा दिखता हूं तो मैं ये बिल्कुल अलग सा हूं। अब पॉजिटिविटी की बात ये है कि जैसे एक वृक्ष में जितनी हम उसका ध्यान रखेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, उतना ही वो पनपता है। ऐसे ही हम अपने शरीर रूपी वृक्ष में हम जितना अच्छी खाद, मतलब अच्छा ज्ञान, सही कर्म, ये सब करेंगे तो हमारा जीवन भी एक सकारात्मकता को पकड़े रहेगा। और जो जितनी भी विषमताएं हैं जिंदगी की, उसको भी समझेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ कठिन काम या मेहनत करने से डरेगा नहीं, क्योंकि सच यही है कि कोई भी चीज हमें हासिल बिना एक मेहनत करे नहीं होती है। तो ये सच जानते हुए हम जल्दी से विफल नहीं महसूस करेंगे और ना ही हम आलस करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, हिम्मत भी बनी रहेगी कि अभी नहीं हुआ तो थोड़ी और देर में हो जाएगा, इसमें और काम करना होगा, क्योंकि आप सच्चाई के पथ पे चल रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं कि क्या मैंने ये काम करने के लिए मैंने पूरी स्किल्स मैंने जुटा ली हैं, किया मैं ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा हूँ कि मैं ये काम कर सकता हूँ। तो सच को धारण किए हुए आपका जीवन जो है वो हमेशा सकारात्मक ही रहेगा, दुनिया की तरफ भी, लोगों की तरफ भी और अपनी तरफ भी।
0: जी बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात सुनीता मैम ने हमें बताई है कि किस तरीके से अध्यात्म हमको सकारात्मक रहने में कैसे कैसे मदद करता है। आराम से टेक योर टाइम दोस्तों, विचार कीजिए और तब तक इस भजन को सुनिए।

0: बहुत खूब बहुत खूब। आध्यात्म को अगर हम अपनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, आप इतने समय से जो भी आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस कर रही थी मैम, उससे जो भी अनुभव आपको हुए, उसके हिसाब से हमें बताइए कि आध्यात्म का हमारे संबंधों पर क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं, हमारे पारिवारिक संबंध, सामाजिक संबंध, उन पर क्या फर्क पड़ता है।
1: जी फिर से इस चीज को दोबारा कहूंगी कि जब हम सच के साथ हैं तो, और हम अंतर्मुखी होते हैं
0: जी,
1: आध्यात्मिकता में हम अक्सर अंतर्मुखी रहते हैं और हम हमेशा अपना ही अवलोकन करते रहते हैं, तो जाहिर है कि हम ये भी सोचते होंगे या प्रश्न करते होंगे कि मेरे जो माता पिता हैं उनके प्रति मेरा क्या और कैसा संबंध है, क्या ये वाकई, अब ये तो एक संयोग की बात है कि मैं उनके अब घर में ही पैदा हुई हूँ
0: जी,
1: लेकिन उनके साथ जो मेरा अब संबंध बढ़ रहा है, क्या वो एक सच के बल पर है या फिर वो एक या समाज से भी कहिए या दोस्तों से कहिए या अपने जहां पे आप काम करते हैं, किसी भी कोई भी संबंध में अपने एक सच्चाई को हमने जरूर देखना है। अक्सर जहां रिश्तेदारी और समाज की बात आती है, बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो कोई ना कोई अपने एक किसी मकसद से हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है केवल एक मकसद से कि इससे मैंने दोस्ती रखी तो मुझे फायदा होगा, समाज में मैंने अगर वहां जाके कुछ ये दान करा या ऐसे करा तो ये इस तरीके से हो जाएगा, वो सच में सच्चाई पे नहीं बेस्ड है। और इस तरीके से हम एक तरीके से हम अपने संसाधनों का, हमारे जो संसाधन क्या है, हमारे पास जो प्रेशियस चीजें हैं वो क्या है, हमारे पास दया है, प्यार है, समय है, ये इनको मैं संसाधन बोलती हूँ, क्या हम अपने संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं या उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हैं, तो ये इससे हमें हमेशा ये ध्यान में रहेगा कि मैं किस लिए किसी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, क्या ये दिखावा है, व्यापार है, कहीं लेना देना तो नहीं है या करुणा है, तो सच होगा तो दूर तक जाएगा और अमर भी होगा।
0: जी जी जी, बड़ी खूबसूरत बात, किस तरीके से संबंधों में भी हम सुधार कर सकते हैं, उनमें बदलाव ला सकते हैं अगर हम आध्यात्म को अपना लें। बहुत खूब, तो चलिए एक छोटा सा गैप लेते हुए, एक भजन को सुनते हुए वो विचार करते हैं और वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो सुनीता मैम, आध्यात्म और आज का जमाना, और आपने अपने प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी हमें बताया कि आप भाषा की विशेषज्ञ रहीं, इंग्लिश की आप अध्यापिका रहीं, टीचर रहीं, फैकल्टी रहीं। तो हम लोग एक तरीके से अगर साइंस को अप्रोच करते हुए आज की ज़िंदगी को जीने की कोशिश करते हैं, जो कि हम इस वार्तालाप में भी साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या साइंस और स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म और विज्ञान, इनके बारे में थोड़ा हमें बताइए। इनमें सिमिलैरिटी है, अलगाव है, अलगाव है, या एक दूसरे के पूरक हैं, ये एक दूसरे का सहारा भी इनको मिल सकता है, थोड़ा सा इसके बारे में समझाइए हमें, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी।
1: जी, इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लेकिन लोक धर्म में ऐसा समझा जाता है कि या तो फिर कोई साइंटिफिक होगा या कोई स्पिरिचुअल होगा, क्योंकि उनके माइंड में, उनके मन में, उनके विचारों में आध्यात्मिकता का अर्थ ही बहुत विकृत है
0: जी।
1: वो गलत है, वो स्वयं की तरफ, वो बाहर की तरफ है और अंतर्मुखी तो है ही नहीं। अब जो साइंस है वो दोनों, मैं बोल रही हूँ कि साथ साथ क्यों चलते हैं। साइंस क्या करती है? साइंस बोलती है कि जो ये चीज, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसमें वो एकाग्र होकर, उसके पीछे लगकर उसका अनुसंधान करती है कि नहीं, उसे देखने की कोशिश करती है, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करती है जी। आध्यात्मिकता भी यही काम करती है
0: जी।
1: वहां पे हम, हमारे जो जिसको इक्विपमेंट बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं हमारे, वो अलग हो जाते हैं, जैसे टेलीस्कोप का, टेलीस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लासेस या माइक्रोस्कोप, इन सब चीज का यूज इस्तेमाल कर लिया। आध्यात्मिकता में हम भी खुद को पहचानने के लिए अंतर्मुखी होकर खुद को ही देखते रहते हैं कि अब ये मेरे में जो इस समय विचार उठ रहा है, या मेरे को ये सब चीज देखकर, कोई भी पर्टिकुलर, कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं, किसी को देखकर कि हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, तो ये मुझे क्यों आ रहा है, मुझे, मेरे गुस्से का कारण क्या है। इतना ही सोचते सोचते आप ये सोचिए कि जैसे आपने एक शांत, हमारा मन जो है, हमारी जो असली प्रकृति है वो बहुत शांत है
0: जी।
1: और हम उसमें भावनाओं को लेकर, भावनाएं आप यूं समझिए एक लहरों के समान है कि, तो समुद्र में जो भावनाएं, जो लहरें हैं, क्या वो सच्ची हैं ना, वो क्षणभंगुर है, उठती है और फिर ढल जाती है, उठती है और फिर ढल जाती है। गुस्से को जब हम देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि ये भी एक लहर की तरह उठा, जैसे समुद्र में कंकड़ डाला तो वो उसके चारों तरफ जो है वो रिपल्स बन जाएंगे, और फिर उसको वहीं के वहीं हम थोड़ी देर और देखते रहें तो वो फिर वहीं समतल हो जाएंगे जैसे लहरें। तो भावनाओं को हमको कितना महत्व देना है ये हमें समझना पड़ेगा, ये भी क्षणभंगुर है। कभी तो हमें बहुत क्रोध आ रहा है, कभी हमें बहुत प्यार आ रहा है, लेकिन ये सब जो है, ये जो हमारा अहंकार है वो महसूस कर रहा है, शरीर नहीं
0: जी, जी
1: शरीर नहीं। और क्या मैं सच में शरीर हूं, वो भी नहीं है। हमारी आंखें जो बाहर देखती हैं वो तो एक बाहर का देखना हो गया, क्या सच में ये मेरी दृष्टि भी है? मेरी दृष्टि में, बाहर को देखने में मेरी दृष्टि में क्या इसका महत्व है, और वो क्या है, वो बहुत कुछ अलग है। तो साइंस और आध्यात्मिकता दोनों एक ही काम करते हैं, स्वयं को जानने का और साइंस जो है वो उसका कारण दूसरे प्रकरणों से करती है, बस इतना ही फर्क है।
0: जी जी, बेहद ही खूबसूरत तरीके से फर्क और सिमिलैरिटी और आपस में एक दूसरे के प्रति स्वस्थ रिलेशनशिप के बारे में अभी सुनीता जी ने हमें समझाया, अध्यात्म और विज्ञान के बीच का मामला, बहुत सुंदर। चलिए दोस्तों, एक प्यारे से भजन का आनंद लेते हुए इस संबंध के बारे में सोचिए।

0: बहुत सुंदर। तो जाहिर सी बात है, क्या ये अध्यात्म, क्या ये स्पिरिचुअलिटी, ये हमें बचपन से पता चलती है, कुछ हमारे माहौल के बारे, माहौल हमें सिखा देता है, हमारे परिवार से हमें पता चलती है, या ये उम्र के साथ ही आना शुरू होती है? हम अपने बारे में विचार करना शुरू करते हैं, कौन है हम, कहाँ जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम, ऐसा कुछ होता है मैम, या हमें बचपन से ही इसके बारे में सिखाया पढ़ाया जाता है, हमको एहसास कराया जाता है, इस विषय में क्या कहेंगी आप?
1: जी, हमें अगर हम सभी अपना अपना जीवन देखें तो हमें एक लिखा हुआ स्क्रिप्ट ही मिल जाता है। हमने ये बैठकर कभी सोचा ही नहीं कि मैं खुद कौन हूं, मेरी अपनी प्रकृति क्या है और मुझे क्या करना है। हमें माँ बाप जब पाल रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, वो साथ साथ सिखा रहे होते हैं कि ऐसा करो, यू नो, इधर पांव छुओ, इधर सच बोलो, अभी पढ़ाई करो, अभी पढ़ाई करके आपको ये कमाना है, फिर पैसा कमाना है, फिर उसमें लगा देते हैं। तो ये तो सारा एक स्क्रिप्ट मिला हुआ नहीं है हमें। क्या ये हमने खुद से कभी सोचा है कि क्या इन सब चीजों की हमें जरूरत है? वो हमें एक बाहरी जो दुनिया है वो हमें एक रेस में लगा देती है
0: जी।
1: आप उनसे पूछिए जो रोज कितनी दूर काम करने भी जाते हैं और फिर कैसे, यू नो, बॉसेस के अधीन होने पे वो क्या क्या झेलते हैं और कितनी कुटिलताएं उनका उनको सामना करना पड़ता है। तो ये सब जो है ये एक तरह का स्क्रिप्ट हमें मिला होता है। जब हम अपने साथ बैठते हैं तब हमें समझ आता है कि नहीं, ये सब चीज जो है ये मेरा जीने का मकसद नहीं होता। ये सब तो पशु भी करते हैं ना, अपने परिवार का ध्यान रखते हैं, उनके लिए भी खाना जुटा के लाते हैं
0: जी जी,
1: पर हमारे सिर्फ संसाधनों में है कि कैसे हम अलग अलग करते हैं। लेकिन इंसान होते हुए हमें अपनी बेचैनी समझनी है कि हमारे अंदर किस चीज की बेचैनी है। आपने ये सुना होगा कि कितने बड़े बड़े जो इतने अमीर लोग भी हैं, क्या वो केवल पैसे से कभी खुश रहे हैं?
0: जी जी, सुना है।
1: फिर भी उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है और वो कमी, क्योंकि हम इतनी भाग दौड़ कर रहे होते हैं एक सिर्फ पैसे के पीछे या दुनिया के पीछे। मेरे साथ वाले के पास दो कार हैं तो मेरे पास क्यों नहीं हो, या मेरे पास ये है, सभी बस इस गलत भाग दौड़ में लगे हैं स्वयं से नहीं कि मुझे मेरे मन को, मेरी आत्मा को क्या चाहिए। आत्मा माने मेरे सच क्या है, मुझे क्या चाहिए, मैं किससे संतुष्ट हूँ, उसके बारे में हम नहीं सोच पाते। अगर सोचें वही अध्यात्मिकता है।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी बात बताई आपने सर। मैम, आपकी सारी बातें सुनकर, इस प्रोग्राम के विचार विमर्श को सुनकर, अगर कोई व्यक्ति तय करे कि चलिए मैं अध्यात्म अपनाता हूं, क्योंकि बहुत तरीके से मैं अपने आप को सुधार सकता हूं, मजा आएगा, तो आप उसके क्या सलाह देना चाहेंगे कि एक दो तीन कुछ ऐसे स्टेप्स लीजिए और सरल भाषा में आपको अध्यात्म प्राप्त होगा?
1: जी, इसमें एक तो सच को पकड़ना है, ठीक है, और जो हम जिस तरीके से हम जिसको आजकल के जमाने में बोलते हैं ना, हमारे गोल्स बनाए हुए हैं, तो वो खुद जानना है कि ये मेरे को थोपे गए हैं या सौंपे गए हैं।
0: ओके,
1: और अच्छा। क्या आश्विकता के साथ जीना है या नहीं जीना, और आध्यात्मिकता मतलब सच्चाई के साथ जीना। अब सही धर्म हमारा जो है वो परोपकार है।
0: जी जी,
1: परोपकार कैसे? अब आप, मैं उसमें ये नहीं कहूंगी कि आप पैसा नहीं कमाइए, पैसा जरूर कमाइए, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो तभी आप और 10 लोगों को भी हेल्प कर सकेंगे। लेकिन ये जरूर देखिए कि मैं किस काम से बना रहा हूं।
0: जी,
1: क्या मैं 2 का 4 बनाने के लिए मुझे गलत चीजें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, क्या मैं बॉम्ब्स बना रहा हूँ, क्या मैं एम्यूनिशन बना रहा हूँ, क्या मैं कैसी कैसी चीजें मैं धन प्राप्त करने के लिए मैं क्या कैसा काम कर रहा हूँ वो देखिए।
0: जी, जी जी
1: उसका देखना बहुत जरूरी है। और आप देखिए रतन टाटा, सुधा मूर्ति जैसे, जो उन्होंने खूब पैसा भी कमाया लेकिन फिर भी जमीन से जुड़े हैं, परोपकारी हैं। आपको मालूम है सुधा जी, तो वो बोलती हैं कि एक दिन मैं

0: सब्जी वाली बन के बैठ जाती हूँ।
1: ओह माय गॉड जी
0: ये सच है कि सिर्फ ये महसूस करने के लिए, अब जिसमें इतनी इंसानियत हो
1: जी
0: वो कहाँ से आई है? आध्यात्मिकता से। कितने
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अमीर लोग हैं आजकल जो प्रचलन है, कहाँ कहाँ जाके अपने जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पोते को समझाया और बोला कि नहीं, मैं तुम बोल रहे हो कि मुझे मैकडॉनल्ड्स ले जाओ या मेरे सारे फ्रेंड्स को वहां बुला के खिलाओ पिलाओ, तो वो नहीं, मैं वो नहीं, वो उसको अनाथालय लेके गई और बोला कि ये बच्चे भी हैं, इनको देखकर, इनके साथ अपना जन्मदिन मनाकर हमें ज्यादा खुशी मिलेगी। तो कैसे आप साथ साथ बचपन से ही सिखाते हैं? आपने पूछा ना कि क्या हमें ये सीखना चाहिए, बिल्कुल
1: जी
0: सीखना, लेकिन सिखाने वाला भी सिर्फ केवल एक चोगा पहने हुए नहीं हो, केवल एक छेने बजाकर कीर्तन करने वाला ना हो और फिर वो अपने घर के सेवक को ही बुरी तरह बोले,
1: जी जी वो
0: वो तो फिर परोपकार नहीं हुआ,
1: तो सब नाटक ही हो गया फिर।
0: वो तो फिर पर...
1: दैट इज राइट, दैट इज वेरी राइट, बिल्कुल
0: तो
1: सही।
0: टाटा जी ने देखे, वो एक रेड़ी वाले उनके घर के सामने से जा रहे थे या सामने खड़े भी होते थे, उन्होंने देखा कि ये बेचारा सब्जी बेच रहा है, अभी मैं इसके लिए क्या करूं? तो करुणा है ना मन में,
1: जी
0: अपने पैसे में अपने ऐश्वर्य में गुम नहीं है, वो सोच रहे हैं, उसको देखकर उनको विचार आ रहा है, केवल विचार आने तक ही रुक नहीं जाते हैं, वो अपनी हैसियत से अपने समझ से जो कर सकते हैं वो करते हैं। क्या करते हैं? सिंपल सी चीज, वो बोलते हैं इन सब के लिए जाके ना, इनके लिए कुर्सी रख के आओ वहां पे,
1: जी।
0: या उनके छतरी पहुंचा दी कि ये इतने घंटे जो इनको खड़े होना पड़ता है तो वो बैठ जाएं। सो ये जो सेंसिटिविटी है ये आध्यात्मिकता से आती है, अपने सामर्थ्य से आप जब भी किसी का कुछ कर पाए जरूर करें,
1: जी।
0: और हमें बहुत मौके मिलते हैं, हम मौकों को ना गवाएं और अपनी जिंदगी को भी बेकार ना जाने दें, पीछे मुड़ के देखें तो ऐसा ना सोचें मैंने क्या किया, क्या मैंने
1: एब्सोल्युटली।
0: कुछ किया कि नहीं किया, किसी के लिए कुछ दे पाई कि नहीं दे पाई।
1: बहुत खूब, बड़ी प्यारी बात है। जाहिर सी बात है दोस्तों, आपने आज सुनीता जी के विचार सुने। बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको कहीं ना कहीं गहराई तक छू के गई होंगी। विचार करते रहिए और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, बहुत कुछ अपने बारे में जानने को मिल ही रहा है। सुनीता जी आपका बहुत बहुत आभार, साधुवाद कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए, आपसे बातें की, आपने अपने दिल की बातें हमें बताई। अब हम ये सारी जिम्मेदारी अब हमारी हो जाती है कि इस ज्ञान को हम अपने बेहतरी के लिए किस तरह से इस्तेमाल करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है आपका।
0: आभार आपका समीर जी, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने विचार व्यक्त करने का और ये साझा करने का कि हमें जिंदगी में, मैं कोई बहुत, कोई भी, जैसे मैंने बोला मेरा नाम ही साधारण सुनीता है, साधारण
1: जी
0: सी जिंदगी जीनी है लेकिन सच्ची
1: जी
0: जीनी है,
1: जी
0: बस धन्यवाद आपका बहुत।

दोस्तों, इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम दिव्य दर्शन को यहीं विराम देते हैं। आशा है कि ये कुछ पल आपके मन को सुकून और दिन को सकारात्मक दिशा देंगे। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत करें, अच्छे विचारों को साथ रखें और शांति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त समीर।

Hello, hello, hello. Mic check, 1, 2, 3. Energy check. Chai ready? Dil ready? मैं हूँ तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट शो बातें इधर की उधर की, जहाँ बातें सिर्फ होती नहीं, घुमा फिरा कर दिल तक पहुँचती हैं। यहाँ हम गॉसिप नहीं करते, हम हिस्ट्री को थोड़ा सा फन बना देते हैं। यहाँ फैक्ट्स बोर नहीं करते, वो डांस करते हुए आते हैं। कभी किसी चाय की कहानी में दुनिया देख लेते हैं, और कभी किसी सिंपल इंसान की स्टोरी में रेवोल्यूशन पकड़ लेते हैं। तो वॉल्यूम थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, स्माइल थोड़ी सी और ब्राइट कर दीजिए, क्योंकि अगले कुछ मिनट में आपकी सोच थोड़ी सी अपग्रेड जरूर होने वाली है। स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये है बातें इधर की उधर की, ओनली ऑन SN रेडियो एंड रेडियो तात्या भील 90.8 FM। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर।

बिना पाठ्यक्रम वाले जीवन की गणित। कभी आपने नोटिस किया है, जिंदगी हमें सब कुछ सिखाती है, बस किसी टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं। आज मैं आपसे एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहती हूँ। एक बच्चा मैथ्स की क्लास में टीचर से पूछता है, सर बीज गणित में बीज कहाँ होता है? टीचर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, जरा हाथ खोलो। और जब बच्चा अपने लाल हाथों वाली हथेली आगे करता है तो उसे समझ आता है, बीज दिया जा चुका था, दिखता नहीं था पर था। बस वही पल जिंदगी का पहला बड़ा लेसन बन जाता है। हम सब जिंदगी में अक्सर यही गलती करते हैं। हम कहते हैं, रिजल्ट कहाँ है, ग्रोथ कहाँ है, प्रोग्रेस कहाँ है। हम ये भूल जाते हैं कि बीज हमेशा जिंदगी के नीचे होता है, वह अंधेरा होता है, इंतजार होता है और सबसे बड़ी बात सब्र होता है। ये

ये फॉर्मूला से नहीं, एक्सपीरियंस से समझ आती है। सोचिए, हवा दिखती नहीं पर चलती तो हमेशा है, इज्जत दिखती नहीं पर जब चली जाए तो वो घर के रिश्ते भी हिला जाती है, विश्वास दिखता नहीं पर बिना उसके कोई रिश्ता जिंदा नहीं रहता, और भगवान वो भी नहीं दिखते पर उन पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है। ये संवाद भी यही कहता है, जैसे एग्जाम्स में कभी कभी बिना असल समझ के लंबे आंसर्स लिखकर नंबर आ जाते हैं ना, वैसे ही जिंदगी में भी हम सिर्फ दिखावा करके आगे बढ़ सकते हैं, पर फर्क इतना सा होता है, एग्जाम के मार्क्स जिंदगी नहीं बदलते पर जिंदगी के बीज बदलते हैं। अगर बीज असली हो, मेहनत का, ईमानदारी का, पेशेंस का, तो फल भी असली होता है, चाहे थोड़ा लेट ही आए पर जब आता है तो गहरा होता है, टिकाऊ होता है। इस संवाद का सबसे खूबसूरत मैसेज यही है, जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा विद्यमान होता है। अगर आज आप अपनी जिंदगी में कहीं अटके हुए महसूस कर रहे हैं, अगर लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा, तो याद रखिए, शायद आपका बीज अभी जमीन के नीचे है। जिंदगी की गणित ना रटी जा सकती है ना शॉर्टकट से सीखी जा सकती है, इसे सिर्फ जिया जा सकता है। और कभी लगे कि कुछ दिख नहीं रहा, तो बस इतना याद रखिए, कुछ चीजें सिर्फ महसूस होती हैं और वही चीजें जिंदगी चलाती हैं।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है सिंटू? सिंटू ने जवाब दिया, यार एक दुकान खोली थी उसने, लेकिन अब वो जेल में है। पिंटू, ओ पर ऐसा क्यों हो गया? सिंटू, भाई ने दुकान हथौड़े से खोली थी, उसे पुलिस ले गई और जेल में डाल दिया।

दोस्तों, आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है अपने आप में ही एक मेटाफर। एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। ये कहानी है लेखिका अर्पणा की, जिनकी कहानियों में गहरापन है, रहस्य है और सबसे बढ़कर एक ऐसी संजीदगी है जो दिल को छू लेती है। इस कहानी का केंद्र है एक औरत, उसका घर, उसकी तन्हाई और उसका डर। कहानी की शुरुआत होती है एक आम सरकारी मकान से। आंगन में एक तुलसी का पौधा है, जो बस पौधा नहीं बल्कि यादों का प्रतीक है। नरेटर बताती है कि वो उस तुलसी की पूजा नहीं करती, पर चाय में उसका इस्तेमाल जरूर करती है। ये छोटी सी बात ही कहानी का टोन सेट कर देती है, परंपरा और व्यवहार के बीच का अंतर। उसका रिश्ता आरएस हांडे से भी तुलसी की जैसा ही है, ना पूरी तरह पवित्र ना पूरी तरह सामान्य, एक अजीब सी जटिलता। घर के सामने एक बुढ़ा रहता है अकेला। नरेटर अक्सर उसे देखती है। एक दिन वो सोचती है, क्या मैं भी बुढ़ी होके ऐसी ही अकेली रह जाऊंगी? क्या मेरी कहानी भी इसी तरह खत्म होगी? यहाँ कहानी तन्हाई का साइकोलॉजिकल लेयर खोलती है। फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक शाम नरेटर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, एक साया, एक डर। वो दौड़ती है, साया भी दौड़ता है, उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है और अब वो पकड़ी जाती है तो पता चलता है कि वो साया असल में उसका अपना ही डर था, या शायद उसी की परछाई। ये पल सिंबॉलिक है। कहानी ये दिखाती है कि हम अक्सर अपने ही अंधेरों से भाग रहे होते हैं, अपने ही सवालों से, अपनी ही असुरक्षा से। और फिर आता है सबसे पावरफुल इमेज, दरवाजे। नरेटर एक दरवाजा खोलती है, उसके अंदर एक और दरवाजा, फिर उसके बाद एक और फिर एक और। जैसे जिंदगी में हर प्रॉब्लम के बाद एक नया चैलेंज, हर सच के बाद एक और नया सच, और हर डर के बाद एक और गहरा डर। दरवाजों की एक लंबी कतार। इस कहानी का सार ये है कि जिंदगी लीनियर नहीं होती, एक रूम नहीं, एक कॉरिडोर में नहीं होती, जहां हर दरवाजा खोलने की हिम्मत चाहिए। हर दरवाजे के बाद जो मिलता है वो हमें थोड़ा और मैच्योर कर देता है, थोड़ा और तोड़ता है, थोड़ा और बनाता है। इसमें राजनीतिक संकेत भी है, सामाजिक तंगीत भी है, और सबसे गहरा एक औरत का अस्तित्व संघर्ष है। आखिर में ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, क्या हम सच में एक दरवाजे पर रुक सकते हैं, या जिंदगी का नियम ही है एक दरवाजे के बाद फिर दूसरा दरवाजा। और शायद हिम्मत का मतलब यही है, दरवाजे खोलते रहना।

0: गर्फिदा जान को मारले मैदान को रोकले आंधिया मार दे तूफान को हिम्मत कभी न तोड़ेंगे
1: दुश्मन को ना छोड़ेंगे।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: चीनू उदास बैठा था, तभी मीनू आया और पूछा, क्या हुआ चीनू, तू उदास क्यों बैठा है? चीनू बोला, क्या बताऊं यार, किसी ने कहा था कि पेड़ से हमें शीतल छाया मिलती है, लेकिन यहाँ पेड़ के नीचे पिछले 5 दिन से बैठा हूँ, ना तो शीतल आई ना ही छाया।

शरीर पर चिन्ह भी होते हैं पहचान। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी परंपरा के बारे में जो सिर्फ शरीर पर बना हुआ डिजाइन नहीं बल्कि पहचान, आस्था और इतिहास का जीता जागता प्रमाण है। गोदना यानी ट्रेडिशनल ट्राइबल टैटूइंग। इस चर्चा में बताया गया है कि देश के कई आदिवासी समुदायों ने शरीर पर बनाए गए चिन्ह सिर्फ सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि उनके गहरे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए होते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गुजरात और अन्य राज्यों के गोंद, बैगा, भील, कोरकू, मुरिया, कोल जैसे कई जनजाति समुदाय में गोंदना एक प्राचीन परंपरा है। इन समुदायों के लिए गोंदना उनकी पहचान है, एक जीवन भर का साथी। कुछ जगह देवी देवताओं का चिन्ह, पेड़ पौधों के आकार, प्राणियों के प्राकृतिक सूरज चांद तारे या पवित्र निशान शरीर पर गुदवाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन चिन्हों से शक्ति मिलती है, रक्षा होती है और आत्मा को शांति मिलती है। इस आर्टिकल में एक लोक कथा का भी जिक्र है जिसमें कहा गया है कि भगवान के भोज में जब एक जनजाति के लोगों को पहचान के लिए अलग किया गया तब से गोंदना उनकी पहचान बन गया। यानी ये परंपरा केवल सौंदर्य नहीं बल्कि अस्तित्व का प्रश्न थी। आदिवासी समुदायों में लड़कियों को एक निश्चित उम्र के बाद गोंदना गुंदवाना आवश्यक माना जाता था। ये शादी, जवानी और सामाजिक स्वीकृति का जुड़ाव है। कई संस्थानों पर यह भी विश्वास किया गया कि मरने के बाद सिर्फ गोंदना ही साथ जाता है, सोना चांदी कपड़े ये सब यहीं रह जाते हैं। गोंदना करने की ये प्रक्रिया इंटरेस्टिंग है। सुइयों को बांधकर रंग भरा जाता है जो काजल, तेल या प्राकृतिक रंगों से तैयार होता है। दर्द होता है लेकिन उसे सहना परंपरा का हिस्सा है। कुछ स्थानों पर गोंदने के दौरान गीत भी गाए जाते हैं ताकि दर्द कम महसूस हो। महिलाओं के लिए गोंदना एक जीवित आभूषण जैसा माना जाता है, ऐसा गहना जो कभी नहीं उतारा जाता। आज के समय में जब मॉडर्न टैटू फैशन का हिस्सा बन चुका है, ये संवाद हमें ये याद दिलाता है कि हमारे देश में टैटू सिर्फ फैशन नहीं था, ये इतिहास, धर्म, परंपरा और पहचान का प्रतीक था। ये शरीर पर सिर्फ बना एक चिन्ह नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं किस समुदाय से हूँ और मेरी जड़ें कहाँ हैं? आखिर में ये संवाद एक गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हम अपनी परंपराओं को समझ पा रहे हैं या उन्हें सिर्फ फैशन तक सीमित करते हैं? क्योंकि कभी कभी पहचान कपड़ों से नहीं, शरीर पर बने चिन्हों से होती है।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय।
1: पिंटू बोला, यार मैंने आज बहुत काम कर लिया। उसके दोस्त संजू ने पूछा, कैसा काम भाई? तो पिंटू बोला, वही जो स्कूल में टीचर मना करती है। संजू पूछा, मतलब? पिंटू बोला, अरे सवाल पूछना।

0: Sanjana! Sanjana!
1: I'm sorry. मैंने आपको पहचाना नहीं.
2: तेरे लबों पे इनकार है, मेरे लबों पे इकरार है. हाँ यही तो है सब निशानियां. हाँ इसी का नाम.

दोस्तों, दुनिया में गेम्स की कमी नहीं है, लेकिन कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो सुनते ही हम हैरान रह जाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक अनोखे खेल की, रबर बूट थ्रोइंग। नाम सुनते ही लगता है जैसे कोई मजाक हो, लेकिन ये सच में एक सीरियस स्पोर्ट है। ये खेल फिनलैंड से शुरू हुआ 1992 में। शुरुआत में लोग इसे मजाक या मनोरंजन के रूप में खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट बन गया और आज ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेला जाता है। इस गेम का बेसिक आइडिया सिंपल है, रबर के बूट को जितना दूर हो सके उतना दूर फेंकना। लेकिन दूर फेंकना ही काफी नहीं है, इसमें टेक्निक, बैलेंस और पावर ये सही कॉम्बिनेशन में जरूरी है। बिल्कुल जैसे हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो होता है, बॉडी में कोऑर्डिनेशन का रोल होता है, वैसे ही रबर बूट थ्रोइंग में खिलाड़ी अपने शरीर को घुमाकर मोमेंटम क्रिएट करके बूट को फेंकता है। देखने में सिंपल है, लेकिन असल में काफी चैलेंजिंग है। इसमें पुरुष और महिलाएं अलग अलग कैटेगरीज में हिस्सा लेती हैं। हर पार्टिसिपेंट को निर्धारित वेट और साइज का बूट दिया जाता है। कंपटीशन में सबसे दूर फेंकने वाला खिलाड़ी जीत जाता है। इस खेल की इंटरनेशनल पहचान भी है, इंटरनेशनल बूट थ्रोइंग एसोसिएशन के थ्रू। इमेजिन, फिनलैंड के अलावा कई और देशों में भी ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज होते हैं। आज सिर्फ ये एक लोकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल स्पोर्टिंग इवेंट बन चुका है। लेकिन इस आर्टिकल की सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये गेम सिर्फ एक कंपटीशन नहीं, बल्कि फिनलैंड की कल्चरल आइडेंटिटी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि स्पोर्ट्स सिर्फ सीरियस और ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स तक सीमित नहीं होते, कभी कभी क्रिएटिविटी और मजाक से भी एक नई परंपरा बन जाती है। सोचिए, एक सिंपल सा रबर बूट जो आमतौर पर बारिश या खेत में काम आता है, वही एक इंटरनेशनल स्पोर्ट बनकर सेंटर बन जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज में पोटेंशियल होता है, बस उसे देखने का नजरिया चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी अजीब से गेम का नाम सुने, हो सकता है वो सिर्फ गेम ना हो, बल्कि किसी देश की सोच, क्रिएटिविटी और कल्चर का हिस्सा हो। क्योंकि दोस्तों, कभी कभी रबर बूट को तोड़ना भी एक गेम ही होता है।

तो दोस्तों, आज की बात ने आपको थोड़ा सा इंस्पायर जरूर किया होगा, थोड़ी सी स्माइल जरूर दी होगी, या थोड़ा सा सोचने पर मजबूर तो जरूर किया होगा। मेरा मिशन तो अकम्प्लिश्ड है। मैं हूँ आरजे तनुषा, आपके तरानों की हमसफर, और ये था आपका शो बातें इधर की उधर की, सिर्फ SN रेडियो और रेडियो तात्या भील 90.8 FM पे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, थोड़ा यूमर, थोड़ा हार्ट और थोड़ा हटके लेकर एंगल। तब तक के लिए याद रखिए, स्टोरीज हर जगह होती हैं, बस उन्हें सुनाने का नजरिया चाहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे क्यूरियस। बाय।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है। और

रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपके झाबुआ की आवाज पर। आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत।

0: अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।
1: मुश्किल का नाम मिट जाएगा।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: सेल्समैन ने कहा, सर कॉकरोच के लिए पाउडर लेंगे क्या? पप्पू ने कहा, नहीं, हम कॉकरोच को इतना लाड़ प्यार नहीं करते, आज पाउडर लगा देंगे, कल परफ्यूम मांगेगा।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। थोड़ा थोड़ा करके, दिन दिन करके, जो आपके लिए बना है वो आपको ढूंढ ही लेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइए बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और खुश होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, रेडियो सुनते रहिए।

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे? तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं। जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं, विश्वास नहीं होता? चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले एक और में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा,

गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 Scorpion-29 स्क्वाड्रंस ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए, है ना मजेदार रेडियो के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूँ समीर, कल मिलते हैं।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज।
1: एकता और ऐश्वर्या।
2: कैसे हो बच्चों? नमस्ते नमस्ते। अरे वाह, आज तो सब बड़े खुश नजर आ रहे हो। है
3: भैया,
2: लेकिन ये क्या, ये तुम कुछ छुपा रहे हो क्या?
3: नहीं कुछ नहीं छुपा रहे।
2: नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ये कुशागर और ये निशांत, इनके इन्हें इनके हाथ में शायद कुछ है। वाह वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, है इतने सुंदर फूल। वाह वाह वाह, कितने सुंदर फूल है। वाह क्या खुशबू है इन फूलों की। अच्छा ये बताओ भाई, इन फूलों को तुम लेकर कहाँ से आए?
3: ऋचा के बाग के फूल है।
2: ऋचा के बाग के
4: है? हाँ भैया, ये मेरे बाग के फूल है।
2: अरे वाह, धन्यवाद धन्यवाद ऋचा, बहुत बहुत अच्छे फूल लेकर आई हो तुम, बहुत अच्छे फूल है ये। अच्छा ये बताओ कि ये फूल तुम लेकर क्यों आए हो मेरे लिए?
4: भैया हम आपको उपहार देना चाहते
2: अच्छा।
4: थे।
2: अच्छा
4: आप हमें एक कहानी इतनी सुंदर भी तो सुनाते हो।
2: अरे वाह क्या बात है मेरे शेर, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वाह क्या खुशबू है इन फूलों की। सचमुच फूल तो सभी को अच्छे लगते हैं, एकता और ऐश्वर्या को भी फूल बहुत सुंदर लगते थे।
4: ये कौन है भैया?
2: वही तो बताने वाला हूँ। हाँ तो बच्चों, मेरी कहानी का नाम है एकता और ऐश्वर्या, और आज के मेरे अक्षर हैं ए और ए। ए ए
5: ए ए
2: ए ए। हाँ शाबाश, ए से एकता और ए से ऐश्वर्या, एकता और ऐश्वर्या। तो एकता और ऐश्वर्या दो बहनें थीं, दोनों एक दिन एक बाग में घूमने के लिए गईं।
4: ए से एड़ी।
2: हाँ तो बच्चों, वहां पर सुंदर सुंदर फूल खिले थे, जैसे तुम लेकर आए हो मेरे लिए, है कि एकता उन्हें एक टक देखती रहे।
4: ए से एकता एक टक।
2: शाबाश। हाँ तो बच्चों, उसने सोचा
1: माली से पूछूं कि उन्होंने इतना सुंदर हर एक गुलाब और हर फूल खिलाया कैसे।
2: हाँ तो बच्चों, फिर एकता और ऐश्वर्या माली को ढूंढने लगी। हाँ तो पता है, माली काका मिले ही नहीं।
4: क्यों?
2: बताता हूँ बच्चों, उन्होंने बहुत ढूंढा तो देखा कि माली काका बाग के कोने में एकांत में बैठे थे। एकांत यानी शांत खाली जगह। तो ए से
5: एकांत,
2: एकांत। शाबाश, ए से एकांत,
4: एकांत।
2: तब बच्चों, ऐश्वर्या ने माली काका से पूछा,
1: माली काका आपने इतने सुंदर फूल और वो भी इतने बड़े बड़े उगाए कैसे?
2: तो माली काका एकदम गुस्सा हो गए और बोले, दूर हटो यहाँ से।
4: माली एकदम से गुस्सा क्यों हो गए?
2: अरे बताता हूँ ऋचा, लेकिन पहले बताओ ए से एकदम। शाबाश, तो गुस्से में ऐठ गए माली काका। ऐसे
4: ऐठ कर।
2: हाँ शाबाश
4: भैया, ऐसे ऐसा।
2: सही कहा तुमने, ऐसे ऐसा। बिल्कुल सही, शाबाश। तो बच्चों, एकता और ऐश्वर्या की बात सुनकर माली काका बोले,
6: अरे ना जाने यहाँ कैसे कैसे लोग चले आते हैं, मैं इतनी मेहनत से फूल उगाता हूँ और ये लोग एक एक फूल तोड़ कर ले जाते हैं। मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। हाँ
4: ये तो बहुत बुरी बात है भैया।
2: हाँ बहुत बुरी बात है।
7: मालिक आते दुखी होते होंगे।
2: बिल्कुल होते थे बच्चों।
8: मेहनत
7: ऐसा नहीं करना चाहिए।
2: बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
8: मैं तो कभी भी फूल नहीं तोड़ता।
2: फूल नहीं तोड़ता, फूल
8: फूल।
2: शाबाश। तो बच्चों तब एकता ने पता क्या किया?
3: बताता हूँ।
4: जल्दी।
2: हाँ जल्दी बताता हूँ। तब बच्चों एकता ने एक पेड़ की डाल पर ये लिखकर टांग दिया।
3: क्या भैया?
2: यही कि यहाँ फूल तोड़ना एकदम मना है। और ऐश्वर्या ने भी बाग के बाहर ये ऐलान कर दिया।
3: क्या भैया?
2: उसने ये ऐलान किया कि जो भी फूल तोड़ेगा उस पर जुर्माना होगा, और जिसे बाग देखने आना है उसे टिकट भी लेना होगा।
4: अरे वाह, टिकट लगा दिया।
2: हाँ टिकट लगा दिया।
8: की तो कमाई हो गई।
2: बिल्कुल कमाई हो गई। शाबाश। हाँ। तो बच्चों बताओ, ऐसे
3: ऐश्वर्या
2: ऐनक
3: ऐसा
2: और ऐसे ऐलान, ऐसे ऐलान। हाँ ऐलान कर दिया उसने। तो बच्चों इस तरह से एकता और ऐश्वर्या ने मिलकर ये बहुत अच्छा काम किया। माली काका की मेहनत भी बेकार नहीं गई और मेहनत का इनाम भी मिला। बताओ कैसे मिला?
3: अब लोग टिकट लेने लगे।
2: बिल्कुल सही।
8: माली काका को भी कमाई हो गई।
2: बिल्कुल कमाई भी हो गई।
4: अब कोई उनका फूल नहीं तोड़ेगा।
2: अब कोई उनके फूल नहीं तोड़ेगा। शाबाश।
8: अब खुश रहते हैं।
2: अब खुश रहते हैं
4: और बहुत सारे फूल खिलेंगे।
2: बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने बच्चों। अब लोग टिकट लेकर बाग देखने आते थे और हाँ फूल भी नहीं तोड़ते थे। इस तरह से न तो फूल टूटते थे और न ही बाग की सुंदरता कम होती थी, बल्कि बाग की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और हाँ साथ साथ माली काका धन भी कमाने लग गए थे।
8: खुश हो गए।
4: उनके यहाँ चिड़िया भी आने लग गई।
2: चिड़िया आने लग गई।
4: टूरिस्ट आने लग गए।
8: और उनकी फोटो बाहर छप गई।
2: अखबार में छप गई। यानी उनका बहुत प्रचार हो गया, वो बहुत प्रसिद्ध हो गए दूर दूर तक।
9: ए ए

बाग का माली था बैठा। पूछा जब ऐश्वर्या ने तो माली थोड़ा सा ऐठा। माली को गुस्से में पाकर दोनों का दिल था बैठा। ए से एकांत और ए से ऐश्वर्या और ए

0: एकता और ऐश्वर्या ने पूछा,
1: काका गुस्सा क्यों ऐसे? माली बोला,
2: लोग यहाँ पर आते हैं जाने कैसे कैसे, एक एक फूल को तोड़ फेरते हैं मेरी मेहनत पर पानी जैसे।

0: अरे वाह,
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया। और ये बताओ, नानी जी के घर कौन मजे करता है?
2: मैं गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाता हूँ।
3: अच्छा,
2: मैं भी जाता हूँ और हम नानी के घर पे खूब शैतानी करते हैं। और उधर मामा जी भी होते हैं हमारे। अच्छा। और मेरी मम्मी भी होती है।
1: अरे वाह भाई वाह। अच्छा बच्चों, पता है तुम्हारे जैसा ही एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना नटखट सा बच्चा था जिसका नाम था तुतुन।
0: क्या नाम था?
4: तुतुन।
1: तुतुन को भी अपनी नानी के घर जाना बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारी तरह।
0: हाँ, और नानी के घर से वापस आने का उसका मन ही नहीं करता था।
2: मेरा भी मन नहीं करता आने का।
0: अच्छा?
2: मैं तो सर्दियों में जाता हूँ।
1: अरे वाह। तो ठीक ऐसे ही तुतुन का मन नानी के घर बहुत लगता था, बड़े मजे आते थे उसे वहाँ। एक बार गर्मी की छुट्टियों में तुतुन नानी के घर गया तो छुट्टियां खत्म होने पर तुतुन की मम्मी ने तुतुन से कहा,
0: अरे अरे बेटा तुतुन, कहाँ हो? चलो जल्दी से अपना सामान बांधो। हाँ भाई, रेलगाड़ी आने वाली है 5:30 बजे, छूट जाएगी, कहाँ हो तुतुन?
1: और पता है बच्चों, 5:30 बजे का मतलब क्या होता है?
0: क्या होता है? हाँ
1: सोचो। अरे मैं बताता हूँ, 5:30 यानी 5:30 मिनट। क्या?
4: 5:30 मिनट।
1: शाबाश,
0: बिल्कुल सही कहा। और फिर पता है क्या हुआ? जाने की बात सुनकर तुतुन बहुत उदास हो गया और सोचने लगा,
5: ओहो हम कितनी जल्दी वापस जा रहे हैं, काश हमारी रेलगाड़ी छूट जाए।
0: पर अब क्या हो सकता था, तुतुन को तो जाना था। तो तुतुन अपने मम्मी पापा के साथ 5:15 मिनट पर ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया। तब तुतुन के पापा बोले,
6: अरे भाई तुतुन जल्दी करो। अरे 5:15 बज गए बेटा, कहीं ट्रेन छूट ना जाए।
0: और सुनो आगे सुनो, ट्रेन छूटने की बात पर तुतुन बहुत खुश हो गया और फिर पता है क्या सोचने लगा?
7: लगता है हमारी ट्रेन छूट गई। अरे मजा आ गया, हमारी ट्रेन छूट गई। अब मैं और भी देर तक नानी के घर रह सकता हूँ।
0: तो बच्चों बताओ, क्या तुतुन की ट्रेन निकल गई थी? हाँ
2: नहीं, क्योंकि ट्रेन तो 5:30 बजे निकलनी थी ना। अभी 5:15 ही तो बजे थे।
1: बिल्कुल सही तुमने बताया ईशान। अब ये बताओ, 5:30 का क्या मतलब हुआ?
4: 5:30 मिनट।
1: शाबाश।
0: और 5:15 बजे का मतलब क्या हुआ?
4: 5:15 मिनट।
0: बिल्कुल सही,
1: इसी बात पर हो जाए ताली। पर बच्चों, तुतुन को ये पता ही नहीं था, वो तो खुश हो रहा था कि उसकी ट्रेन छूट गई।
0: और तब तुतुन के पापा ने तुतुन को बताया,
6: अरे बेटा अभी ट्रेन को आने में 15 मिनट बाकी हैं, ट्रेन 5:30 पर आएगी, अभी तो 5:15 ही है।
2: अब तो तुतुन दुखी हो गया होगा। उसे तो जाना होगा।
8: अब तो उसे जाना ही पड़ेगा।
1: अरे नहीं बाबा, सुनो तो सही, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ।
0: हाँ, क्योंकि ट्रेन तो आई ही नहीं। उन लोगों को बहुत देर तक वही इंतजार करना पड़ा।
8: अरे ये कैसे हुआ?
1: यही पूछने तो तुतुन के पापा स्टेशन मास्टर के पास जा पहुँचे और बोले,
6: स्टेशन मास्टर साहब, ये ट्रेन क्यों नहीं आई अभी तक? हम बहुत परेशान हैं। अब देखो हमारे टिकट पर तो 5:30 लिखा है।
2: तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा?
6: स्टेशन मास्टर ने कहा, सर 5:30 का मतलब है 5:30। असल में आपकी गाड़ी 5:30 पर चली गई।
1: क्या?
6: सर देखिए, रेलवे में 5:30 को 17:30 कहा जाता है, यानी 17:30।
1: क्या मतलब?
4: 17:30।
1: शाबाश।
2: 17:30 काफी अजीब सा लग रहा है।
0: हाँ, तुम्हारी ही तरह तुतुन को भी 17:30 सुनकर ना अजीब लग रहा था।
2: पर ऐसा क्यों कहते हैं दीदी?
0: ऐसा इसलिए कहते हैं बच्चों, क्योंकि रेलवे में 12 नहीं 24 घंटे की घड़ी का प्रयोग होता है।
1: हाँ, 12 घंटे की घड़ी में एक ही समय दो

0: बार आता है, इसलिए हमें उसके साथ सुबह, दोपहर, शाम, रात ये सब लगाना पड़ता है। जैसे सुबह के 9 बजे
1: और रात के 9 बजे,
0: सुबह के 5 बजे
1: और शाम के
2: 5 बजे।
0: शाबाश। अच्छा, सुबह के 11 बजे
2: और शाम के 11 बजे।
0: शाम के 11 बजे नहीं बेटा, रात के 11 बजे। बजाओ ताली इसी बात पर।
3: तो टुटुन की रेल छूट गई थी ना?
4: टुटुन को तो बड़ा मजा आ गया होगा।
0: हाँ बच्चों, बहुत मजा आया था। लेकिन अब टुटुन ने 24 घंटे की घड़ी में समय देखना सीख लिया था।
1: हाँ, और पता है 24 घंटे की घड़ी में जब दोपहर के 12 बजे के बाद 1 बजता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं 13 घंटे।
0: क्या कहते हैं?
2: 13 घंटे।
0: हाँ, यानी 12 घंटे में 1 घंटा और जोड़ दिया तो हो गए कितने घंटे? 13 घंटे। शाबाश। अच्छा गुड़िया, तुम मेरी घड़ी देखकर बताओ कि इस वक्त कितने बजे हैं?
4: 4 बजे हैं।
0: 4 बजे हैं, बिल्कुल सही। और शाम होने को है ना? तो इसका मतलब क्या हुआ?
4: शाम के 4 बजे हैं।
0: शाबाश गुड़िया, बजाओ सी बात पर ताली।
1: हाँ, तो अब ये बताओ 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय हुआ?
0: बताओ बताओ।
4: 12, 13, 14, 15, 16
1: बताओ।
4: 16 बजे हैं।
0: 16 बजे हैं नहीं, 16 घंटे हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अच्छा बताओ बच्चों, 12 घंटे की घड़ी में शाम के 6 बजे हूँ तो 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से क्या समय होगा?
2: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 घंटे।
0: शाबाश, बिल्कुल सही कहा तुमने, 18 घंटे।
1: तो अब ये बताओ शाम के 6:30 हो तो
4: 18 घंटे 30 मिनट।
0: वेरी गुड।
1: और शाम के 7 बजे? हाँ हाँ, सोचो सोचो।
4: 19 घंटे।
0: अरे वाह, शाबाश, बड़े होशियार बच्चे हैं। वैसे एक बात है, तुतुन भी तुम्हारी तरह बहुत होशियार हो गया था। तो इस तरह हुई कहानी खत्म। बजाओ ताली।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: भूखा अमरूद।

0: Luca Amrud. एक थी ची ची चिड़िया और एक थी गुनगुन गिलहरी। दोनों सहेलियां थी। हाँ बच्चों, एक दिन चींची ने गुनगुन से कहा,
1: चलो गुनगुन अमरूद के पेड़ पर चढ़कर खेलें।
0: तो बच्चों दोनों पहुंची अमरूद के पेड़ के पास और बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम यहाँ खेल सकती हैं?
0: अमरूद ने कहा,
2: हाँ हाँ खेल लो, लेकिन ध्यान रहे मेरी टहनियाँ ना टूटें।
0: चींची चिड़िया हैरान होकर बोली,
1: अरे अमरूद भैया तुम्हें दर्द होता है क्या?
2: और नहीं तो क्या, तुम्हें दर्द होता है ना, वैसे ही हम पेड़ों को भी दर्द होता है।
1: अच्छा अच्छा, हम नहीं तोड़ेंगे टहनियाँ।
0: ऐसा कहकर बच्चों दोनों खेलने लगी हैं। और कुछ देर के बाद उन्हें भूख लगी। गुनगुन बोली,
1: अमरूद भैया क्या हम तुम्हारे अमरूद खा लें?
0: ये सुनकर बच्चों अमरूद ने कहा,
2: मैं अभी भूखा हूँ, तुम पहले मेरे लिए भोजन लाओ, यानी मेरे आहार का इंतजाम करो।
0: हैरान होकर चींची ने पूछा,
1: अरे तुम खाना भी खाते हो?
0: तो अमरूद बोला,
2: इसमें हैरान होने की क्या बात है, खाना तो सभी को चाहिए, खाना खाकर ही तो हम बढ़ते हैं। तुम भी तो पहले छोटी नन्नी मुन्नी थी, तुम्हारी अम्मा तुम्हें दाना ला ला कर खिलाती थी, तभी तो तुम बड़ी हुई और चलने उड़ने लगी।
0: ये सुन बच्चों चींची ने कहा,
1: लेकिन तुम्हारे लिए खाना कौन लाता है?
0: गुनगुन बोली,
1: और भला तुम खाते क्या हो, हमें बताओ तो झटपट तुम्हारे लिए ले आए खाना।
0: अमरूद ने कहा, बच्चों
2: मैं तो मिट्टी से अपना आहार यानी खाना लेता हूँ, जब जमीन में पानी डाला जाता है ना, तो मेरी जड़ें उस पानी को पीती हैं, तने उस पानी को पहुंचा देते हैं पत्तियों तक, पत्तियां सूरज की रोशनी की सहायता से बनाती हैं खाना, मेरा आहार।
0: गुनगुन ने पूछा,
1: अरे भाई प्रकाश यानी रोशनी से कैसे बनता है तुम्हारा खाना?
0: अमरूद का वृक्ष बोला,
2: जैसे मुन्नी की अम्मा अंगीठी में खाना बनाती है ना, वैसे ही सूर्य का प्रकाश है हमारी अंगीठी, उसी की मदद से पत्तियां मेरा आहार बनाती है। और इसके अलावा जैसे तुम सांस लेती हो ना, मुझे भी चाहिए हवा सांस लेने के लिए।
0: तो बच्चों चींची ये सुनकर बोली,
1: लेकिन अमरूद भैया हमें तो सूर्य के प्रकाश से खाना बनाना आता ही नहीं, हम तुम्हारा आहार कैसे बनाएं?
0: गुनगुन ने पूछा,
1: और शुद्ध वायु कहाँ से लाएं?
0: ये सुनकर बच्चों पास में खड़ा दूसरा अमरूद का पेड़ गाने लगा,

0: पेड़ की ये बात सुनते ही चींची खुश होकर बोली,
1: अरे ये तो बड़ी आसान बात है, गज्जू हाथी तो हमारा दोस्त है। दोस्त अभी लेकर आते हैं उसकी सूंड में भरकर पानी।
0: तो बच्चों झट दोनों पहुंची गज्जू हाथी के पास। उनकी बात सुन गज्जू ने अपनी सूंड में ढेर सारा पानी भरा। फिर वे तीनों चल पड़े अमरूद के पेड़ की ओर। अमरूद के पेड़ की जड़ में गज्जू ने सारा पानी उंडेल दिया, ढेर सारा पानी। बस जड़ों ने पानी ऊपर खींचा, तनों ने पत्ती तक पहुंचाया। सूर्य के प्रकाश की मदद से पत्तियों ने पेड़ का आहार बनाया। अमरूद का पेड़ अब भूखा ना रहा और बोला,
2: आओ आओ तुम भी अपनी भूख मिटाओ, लो ये अमरूद खाओ खाओ।
0: चींची चिड़िया, गुनगुन गिलहरी और गज्जू हाथी ने मिलकर बच्चों खूब मीठे मीठे अमरूद खाए।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM, जाबुआ की आवाज।
1: एक तिनका।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी दुनिया, रेडियो टंट्या भील 90.8 FM जाबुआ की आवाज।
1: अपनी जिम्मेदारी निभाना।

0: महानगर के एक बस स्टैंड पर संजय अपने पिताजी के साथ बस का इंतजार कर रहा है। संजय स्कूल के लिए बस की प्रतीक्षा में है। बस स्टैंड पर काफी भीड़ है।
1: भाई साहब, आप किस बस में जाएंगे?
2: कौन से नंबर की बस निकली है अभी? पीछे को।
0: संजय पिताजी से पूछता है,
3: बाबूजी अभी तक बस नहीं आई, कहीं स्कूल को देर ना हो जाए।
4: आती ही होगी बस। अरे देखो ना, अपनी बस के इंतजार में लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं।
3: हाँ बाबूजी, ऐसे में सामने से आती बस दिखाई कैसे देगी?
4: हाँ ये तो है।
0: तभी एक युवक उन दोनों के पास आता है और कहता है,
5: आप दोनों बीच सड़क से हटकर फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी।
3: आप कौन है?
5: मेरा नाम आदित्य है। आप थोड़ा फुटपाथ पर आ जाइए।
4: जी ठीक है, आओ बेटा आओ, इधर ऊपर आ जाओ फुटपाथ पर।
5: भाई साहब आप भी आ जाइए फुटपाथ पे।
6: क्यों, इतने लोग खड़े हैं और तुम हमसे क्यों कह रहे हो भाई?
5: हाँ हाँ, मैं औरों से भी कह रहा हूँ, आप तो आ जाइए।
6: भैया हम यही ठीक है, आप अपना काम।
5: हाँ आप अपना काम करिए। किनारे थोड़ा किनारे आ जाइए आप। भाई साहब फुटपाथ पे आ जाइए आप। बच्चे अब भी आ जाइए फुटपाथ पे। बहन जी फुटपाथ पे आ जाइए आप।
3: बाबूजी देखिए
5: ये बहन जी,
3: आदित्य भैया एक एक करके सबको कितनी अच्छी बात कह रहे हैं।
4: हाँ और कुछ लोग उसकी बात मानकर फुटपाथ पर आ भी रहे हैं,
3: पर वो दो आदमी तो अभी सड़क पर ही खड़े हैं।
4: उस युवक ने उन्हें समझाया था पर वो नहीं माने तो क्या किया जा सकता है।
3: लो आदित्य भैया तो चले गए।
0: तभी एक बस इतनी तेज गति से आई कि पीछे हटने की कोशिश में बीच सड़क पर खड़े दोनों आदमी गिर पड़े और उन्हें चोट लग गई।
7: अरे ये देखो ये क्या क्या हो रहा है? अरे चोट लग गई।
8: नहीं
7: कोई उठाओ तो सही, कोई उठाओ तो सही। अरे खड़े रहे खड़े।
8: अरे अरे आपने उस युवक की बात मान ली होती तो ऐसे चोट तो मान लगती।
7: अरे वो भला आदमी तो कितनी बार समझा रहा था मगर यही नहीं माने, अब लग गई ना।

0: संजय स्कूल पहुंचा। वहां अध्यापिका जी कक्षा में पूछ रही थी,
1: बच्चों कल मैंने आपसे कहा था कि आप ग्रुप बनाकर कक्षा के कमजोर बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या आपने ऐसा किया?
2: हाँ, मैंने तो किया है।
1: रानी तुम बताओ।
3: बहन जी, मेरे साथी रमेश ने पढ़ाने में कोई रुचि ही नहीं ली, इसलिए मैंने भी किसी को नहीं पढ़ाया।
1: रानी, ये तो गलत बात है। देखो, हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। हमें केवल अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए।
3: जी बहन जी।
4: बिल्कुल ठीक, जैसे आदित्य भैया आज बस स्टैंड पर कर रहे थे।
1: आदित्य भैया कौन?
0: तब संजय ने अध्यापिका जी को बताया कि बस स्टैंड पर कैसे आदित्य भैया लोगों को फुटपाथ पर खड़े होने के लिए प्रेरित कर रहे थे। महानगर की एक सड़क पर अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है।
5: भाई साहब।
6: जी, मुझसे कुछ कहा?
5: जी हाँ, आप ये बताइए कि आज के वातावरण को, अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए?
6: मैं तो ये कहूँगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए, आपस में भाईचारा होना चाहिए
5: जी,
6: लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए। पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में ये सब बहुत ही कम रह गया है। मैं तो कहूँगा सब खत्म हो गया है।
5: नहीं, ऐसा तो नहीं है कि ये सब खत्म हो गया है। क्यों बहन जी, आप क्या कहती हैं?
1: अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी, आजकल कुछ ठीक भी है क्या? आप छोड़िए भी, हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पढ़कर, हम तो चलते हैं।
7: रुकिए, ये बेकार की बात नहीं है। जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यूं मुंह फेर कर मत जाइए, आगे बढ़िए। शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में काम आ जाए। ये समाज सबका है, इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सबकी ही है।
0: बहाना।
6: उषा जी।
1: जी सर।
6: ये पत्र आज ही भिजवा दीजिए, बहुत जरूरी है ये।
1: सर आज?
6: जी आज।
1: सर आज तो नहीं जा सकता।
6: पर क्यों? अभी बजे हैं सुबह के 10 और डाक जाती है दोपहर को 3:30 बजे, तब तक ये टाइप होकर पोस्ट हो सकता है ना?
1: सर अभी तो ये टाइप भी नहीं हो सकता।
6: पर क्यों?
1: सर अभी तो लाइट ही नहीं है।
6: लाइट नहीं है तो क्या हुआ, इस कमरे में तो काफी रोशनी है, आप बिना लाइट के भी इसे टाइप कर सकती हैं।
1: सर मेरा मतलब है इलेक्ट्रिसिटी नहीं है इसलिए कंप्यूटर नहीं चलेगा।
6: पर इलेक्ट्रिसिटी आ भी तो जाएगी।
1: सर इलेक्ट्रिसिटी तो 1 घंटे बाद आएगी।
6: और क्या?
1: तब तक चाय का
6: तो चाय पीकर लौटने का इरादा नहीं है क्या?
1: सर है तो, पर
6: क्या?
1: तब तक इस कंप्यूटर पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि मेरी बारी आज आएगी ही नहीं।
6: आप इसे शुक्ला जी के कंप्यूटर पर कर लीजिएगा, वो खाली पड़ा रहता है।
1: शुक्ला जी का कंप्यूटर तो पहले ही खराब पड़ा है।
6: चलिए जाने दीजिए उषा जी, आप लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, चाय या अपनी बारी, किसी का इंतजार मत कीजिए। आप इस पत्र को साधारण टाइपराइटर पर टाइप करके दे दीजिए, क्या ये हो सकता है?
1: हाँ सर, ये तो हो सकता है।
7: काम न करने के इतने बहाने, और काम करने का कोई बहाना नहीं।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपु रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जैसा कि रेडियो टांटिया भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी बहुत से एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। साथ ही रेडियो टांटिया भील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम से खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते रहे।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं खेतीबाड़ी कार्यक्रम। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं मिर्ची की खेती के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कैसे, कौन सी भूमि में और कैसे वातावरण में और कौन से उचित समय में हम मिर्ची की खेती कर सकते हैं और उसमें हमें किन किन चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती है। चर्चा करेंगे इन सारे बिंदुओं पर।
2: दुनिया भर में मिर्च की करीब 400 किस्में पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो मसालों में सबसे ज्यादा खेती यहाँ पर मिर्च की ही होती है और यहाँ पर मिर्च की खेती हजारों सालों से हो रही है। पिछले कुछ सालों में कुछ नई नई किस्में भी भारत पहुंची है। इन्हीं में से एक है थाई मिर्च। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
3: मिर्च छोटे आकार और गहरे लाल रंग की सुंदर सी दिखने वाली मिर्च है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होती है। जिन इलाकों में पहले से ही भारतीय मिर्च उग रही है उनमें थाई मिर्च की खेती आसानी से की जा सकती है। हाँ,

इलाकों का वातावरण इसके अनुकूल नहीं है। वैसे तो इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए बलुई मिट्टी सबसे बेहतर है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो। खेत में जल निकासी की व्यवस्था होना भी जरूरी है। अच्छी पैदावार के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का ही चुनाव करना चाहिए। एक एकड़ बुवाई के लिए 50 से 60 ग्राम बीज की जरूरत होगी। अक्टूबर और नवंबर का महीना इसकी रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन रोपाई से पहले नर्सरी लगानी होगी। अगर आपके पास समय कम है तो किसी नर्सरी वाले से पौध खरीद सकते हैं। वैसे नर्सरी बोने के लिए 3 हाथ चौड़ी और 6 फुट लंबी मेड़ तैयार करें और लकड़ी की मदद से सीधी रेखाएं खींच लें। इसके बाद एक उंगली की दूरी पर बीज लगाएं। बुआई के तुरंत बाद पानी का छिड़काव कर दें। आप देखेंगे कि 40 से 45 दिनों में पौध तैयार हो गई है, लेकिन बीज बोने के बाद नर्सरी की देखभाल बहुत जरूरी है, इसलिए बीच बीच में सिंचाई करते रहें और निराई करके खरपतवार भी निकालते रहें। रोपाई से पहले 3-4 बार खेत की गहरी जुताई करें। एक एकड़ खेत में 1000 से 1200 किलो गोबर की खाद, 100 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो पोटेशियम और 30 किलो फास्फोरस डालनी चाहिए। 6 हफ्ते बाद और फिर 10 हफ्तों के बाद 10-10 किलो नाइट्रोजन और डालें। पौध तैयार होने पर इसकी रोपाई करेंगे। शाम के समय रोपाई बेहतर मानी जाती है। 10 दिन बाद खरपतवार निकाल दें। उसके बाद भी बीच बीच में खरपतवार निकालते रहेंगे। थाई मिर्च की जड़ें संवेदनशील होती हैं। जल भराव होने पर ये गल जाती हैं और इनमें फफूंद लग जाती है। हर 5 दिन में सिंचाई करनी है। सर्दियों में हफ्ते में 1 बार सिंचाई करनी होगी। जड़ों के आसपास निराई गुड़ाई भी करते रहें। ऐसा करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। 2 महीने होने पर गुड़ाई के बाद 10 किलो नाइट्रोजन को जड़ों के आसपास डाल दें। ऐसा करने से पोषण बना रहेगा। रोपाई के 60 दिन बाद आपका खेत कुछ इस तरह का दिखाई देगा। भारतीय मिर्चों में लगने वाले कीट थाई मिर्च में भी लगते हैं, जैसे थ्रिप्स, सफेद मक्खी, एफिड या फल छेदक। इन कीटों से बचाव के लिए केचुए की खाद का पानी छिड़के, जो जैविक खाद बनाते समय धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। शुरुआत में ही जैविक कीटनाशक छिड़क देंगे तो कीटों की समस्या नहीं आएगी। आज फसल रोपे हुए 90 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा खेत लाल हो गया है। अब इन्हें तोड़कर बाजार में ले जाया जाएगा। एक एकड़ में 6000 किलो थाई मिर्च मिल जाती है। जैविक तरीके से उगाई गई मिर्च तुड़ाई के 8 दिन बाद तक भी ताज़ा रहती है। सीधे मॉल या होटल में बेचने वाले किसान इसकी अच्छी तरह से पैकिंग करके ले जाते हैं।

0: किसान साथियों, अभी आपने थाई मिर्ची की खेती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भेली गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कुछ और मिर्ची की किस्मों को और उनकी खेती के प्रकारों को।
2: आज हम लोग खरीफ के समय मिर्च की खेती पर कुछ बातें बताएंगे। एक अच्छी मिर्च की फसल लेने के लिए अच्छे और स्वस्थ पौधों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पूर्ण ध्यान देना होगा कि आपके पौधे जो हैं रुपाई से पहले पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। उसके लिए हम लोग खरीफ के समय ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जहाँ पर नेट हाउस की अगर आपके पास फैसिलिटी है या मच्छरदानी भी जो आपको कॉमनली आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर में पौधों का या बीज का रुपाई करें। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेड बनाते हैं जो लगभग ज़मीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। बेड बनाते समय ये ध्यान रखिए उसमें अच्छे से गोबर की खाद मिली हुई रहनी चाहिए, और क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा तो उसमें जो है पौधों में बीमारी आती है वह कहलाई जाती है पदवी गलन, तो वो एक फफूंद से होती है। उसके लिए गोबर की खाद जब आप मिट्टी में मिलाते हैं उसके साथ साथ फंजीसाइड भी मिला सकते हैं जैसे बेवेस्टीन या कैप्टॉफ। गोबर की खाद में उसको मिला करके फिर आप बेड की तैयारी कीजिए। बेड जब आपका लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जब आपका तैयार हो गया है तब ऊपर की जितने भी पत्थर वगैरह हैं छोटे छोटे उसको हटा करके एक समतल और महीन मिट्टी तैयार करने की कोशिश करिए, और उसके बाद जो है उसमें बीज की रोपाई के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। बीज की रोपाई के लिए लगभग हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि बीज की गहराई जो है 1 या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो बेड तैयार किए हैं उसमें उंगली से ही सीधी सीधी धारियां बनाते हैं और उसमें हम लोग बीज जो है बोते हैं। एक बार जब बीज की बुआई हो गई है उसके बाद हम लोग उसको हल्की सी मिट्टी से ढक करके उसके ऊपर घास रख करके फिर पानी डाल देते हैं। मौसम में तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री के आसपास रहता है तो आपके सारे पौधे जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में जम जाते हैं। जब एक बार पौधे जब जम जाते हैं तो आपको सारी घास जो उसके ऊपर डाली गई थी वो हटा देनी चाहिए। हर दिन सुबह और शाम उसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब पौधे 1 हफ्ते के करीब होने लगे तब उसमें जो है होइंग करनी पड़ती है, मतलब उंगली से ही जितने भी हैं छोटे छोटे वीड्स जो आने लगते हैं उसको हटाना पड़ता है। इसको जो बहुत कॉमनली आप लोग खरपतवार बोलते हैं वो करनी पड़ती है, और पौधों की तैयारी में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो उसकी रुपाई से पहले 40 से 45 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर इस बीच आपको ये लगता है कि ये पत्ती संकुचन की प्रॉब्लम आपको दिख रही है तब आप जो है उसमें नीम की जो तेल होती है वो नीम बांध की दवाई में उपलब्ध है बाज़ारों में वो आप ले सकते हैं, और सीडलिंग में 1 लीटर में 2 ml मिला करके उससे आप जो है हर हफ्ते पौधों पर स्प्रेइंग कर सकते हैं। इससे जो है आपकी ये जो बीमारी होती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलती है तो सफ़ेद मक्खी नहीं आ पाती है। 40 से 45 दिन में जब आपके पौधे तैयार हो गए हैं तब आप इसको खेतों में रुपाई के लिए तैयार कर सकते हैं। तो खेतों की तैयारी के लिए आपको जो है इसमें खरीफ के मौसम में बेड सिस्टम लगाना पड़ता है। इसमें जो है आप बेड बनाने रिज एंड फरो टाइप का बेड बनाना होता है ताकि बरसात के मौसम में जब बरसात अगर ज़्यादा हो रही हो तो पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है पौधों की रोपाई जो है बेड पर करते हैं। पौधों की दूरी जो है लगभग 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में लगभग 100 ग्राम के बीज चाहिए होते हैं। 100 ग्राम के बीज से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, और 1 एकड़ में लगभग 4,500 के करीब पौधे आ जाते हैं अगर आपके पौधों के बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी है और रो टू रो की स्पेसिंग अगर 60 सेंटीमीटर है। तो एक बार जब आपकी रुपाई हो जाती है, रुपाई ज़्यादातर ये ध्यान दें कि दोपहर के समय करें, दो बजे के बाद या मतलब कि जब शाम के समय। इससे क्या होता है कि सुबह की जो तीव्र धूप होती है उससे पौधे कई बार सूख करके मर जाते हैं, तो अगर आप दोपहर के समय कर रहे हैं या शाम के समय कर रहे हैं तो रात भर की जो ठंडक होती है उसमें पौधे खड़े हो जाते हैं और आपका जो क्रॉप स्टैंड होगा या पौधों की जो मृत्यु दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। एक बार पौधे जब आपके लग गए और 20 से 25 दिन के हो गए हैं रुपाई के बाद, तब आप अपना सेकेंड डोज ऑफ नाइट्रोजन दे सकते हैं जिसमें यूरिया बहुत कॉमनली यूज़ होता है। तो एक 25 दिन पर आप यूरिया का डोज दीजिए, उसके बाद फिर से 15 दिन के बाद फिर 40 दिन पर दीजिए। लगभग 40 दिन में पौधे पूरे पूर्ण तरह से उग जाते हैं और उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब फूल आना शुरू हो गया तब जो है उसमें यूरिया एकदम मत दीजिएगा, उससे फल बनाना

0: मिला सकते हैं। इन बांड का जो मात्रा होनी चाहिए वो 5 ml पर प्रति लीटर के हिसाब से होनी चाहिए।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हमने सुना, मिर्ची में पत्ते कोड़ाने की जो समस्या है वो हमेशा से बनी रही है। इसके लिए आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगर नामक जो दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आप नीम बाण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए करते हैं चर्चा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर।
0: दूसरी दवाइयां जो हैं वो है एक अप्लॉड नाम की दवाई आती है बाजार में, वो 1.5 ml पर प्रति लीटर आपको डालना होगा। उसमें भी 5 ml नीम बाण मिला सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक बार जो दवाई इस हफ्ते अगर इस्तेमाल कर दिए हैं तो दूसरे हफ्ते आपको दूसरी दवाई इस्तेमाल करनी है। एक ही दवाई लगातार आप इस्तेमाल कीजिए। इससे क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी जिससे ये बीमारी फैलती है उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दवाई कारगर नहीं रहती है। तो हर हफ्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दवाई बदल बदल करके स्प्रेइंग करें। और दूसरा तरीका जो आप सफ़ेद मक्खियों से बच सकते हैं, अगर आप खरीफ के समय ले रहे हैं तो अपने खेतों के चारों ओर मक्के की 2 से 3 क्यारियां लगा दें। ऐसा पौधा है जिससे सफ़ेद मक्खियां उसके पास नहीं आती हैं, तो इससे भी आपकी मिर्च की खेती बच सकती है। मिर्च में पत्ती संकुरण की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दूसरा, जब फल आने लगे तब आप अगर हरी मिर्च के लिए आप अपनी खेती कर रहे हैं तो एक बार जब पूरा पौधा आपका मिर्च से भर जाए तो उस समय आप जो है फल तोड़ लें। तो फल तोड़ने से ये फायदा रहता है कि फिर से नए फूल आते हैं और पौधों को और फल बनाने की क्षमता हो जाती है। इस तरह का काम एक फसल में 3 से 4 बार आप फल तोड़ सकते हैं और आप पौधों का उपज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च के लिए खेती करना चाहते हैं तो एक बार जो फल तैयार हो गए हैं, बन गए हैं, तो जब तक लाल नहीं हो रहे हैं फल, उनको तोड़िए मत। एक बार जब फल लाल हो जाते हैं तब आप लाल फल को तोड़ करके उसको हल्की धूप होती है उसमें सूखने के लिए डाल दीजिए, और धूप में जब वो सूख जाए तब आप उनको आराम से रख सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें नमी बनी हुई है फलों में तब तक उसको अंदर मत रखिएगा, इससे फलों में सड़न होने लगेगी। तो ये अगर आप अपनाते हैं किसान भाइयों तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मिर्च की फसल ले सकते हैं।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांटा भील 90.8 FM के साथ। किसान साथियों, हमने बहुत से डॉक्टरों के बारे में सुना है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि पेड़ों के लिए भी डॉक्टर होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक सफल किसान से जो कि अपने गांव में ही पेड़ों के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। किसान साथियों, जानेंगे उनकी कहानी, उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: हमारे झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जानते हैं एक सफल किसान की कहानी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने मनुष्यों के डॉक्टर सुने थे, हमने अपने नाक कान आंखों के डॉक्टर सुने थे, हड्डियों के डॉक्टर सुने थे, लेकिन आज हम सुनने वाले हैं पेड़ के डॉक्टर के बारे में। आज जी हाँ, हम जानने वाले हैं पेड़ के डॉक्टर की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं।
2: उनके गांव जहां पाड़ा में पेड़ों का डॉक्टर कहा जाता है। जी हाँ, कृषि क्षेत्र में तो इन्होंने एक साधारण से सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये आविष्कारक किसान बन चुके हैं। तो कैसा रहा इनका ये सफर और किस तरह से इन्होंने सफलता हासिल की, आइए देखते हैं।
3: चक्रधर प्रधान बरगढ़ जिला ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान है। बचपन में पढ़ाई में इनका मन बहुत लगता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छूट जाने के बाद वे अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और वे खेती के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते थे। वर्ष 1985 में चक्रधर के खेत में अच्छी पैदावार हुई तो उन्हें खेती में आगे बढ़ने का हौसला मिला। इसके बाद चक्रधर ने नींबू की खेती करनी शुरू की। इन्होंने अपने खेत में नींबू के लगभग 50 पेड़ लगाए। शुरुआत में चक्रधर ने 8,050 रुपए की लागत से इस काम को शुरू किया और 8,500 रुपए कमाए। 50-50 पेड़ हर साल लगाने वाले चक्रधर प्रधान ने 3 साल में ये महसूस किया कि हर साल इनका एक पेड़ मर जाता है या खराब हो जाता है। मरने और खराब होने वाली पेड़ों की संख्या हर साल बढ़ रही थी। ये बात चक्रधर को काफी परेशान कर रही थी। पेड़ों की मृत्यु से उन्हें आर्थिक नुकसान होने लगा। वे अपने पेड़ों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। वे इनकी तकलीफों को महसूस करते थे, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। पेड़ों के मरने से वे काफी चिंतित थे। वे समस्या का समाधान खोज रहे थे। अपने पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने हॉर्टिकल्चर के एक वैज्ञानिक से बातचीत की। वैज्ञानिक ने पेड़ों को देखने के बाद कहा कि इन पेड़ों की जगह वे दूसरे पेड़ लगा लें, ये तो खराब हो गए हैं। इस बात ने चक्रधर प्रधान को बहुत परेशान किया। तब इनके मन में ये प्रश्न उठा कि डॉक्टर आला लगाकर मरीज का इलाज करते हैं, क्या पेड़ों का भी आला से इलाज हो सकता है? इस जिज्ञासा ने चक्रधर प्रधान की बेचैनी बढ़ा दी। इन्होंने डॉक्टर से एक आला लेकर अधमरे पेड़ पर 20 मिनट तक कान लगाकर सुना और उस पेड़ से उन्हें कुछ आवाज मिली। आवाज को पहचानकर चक्रधर ने अनुमान लगाया कि जरूर ये कीड़ा है। इन कीड़ों के कारण ही इनके पेड़ सूख कर मर जाते हैं। इनके आला लगाकर पेड़ों को सुनता देख गांव के लोग अजीब समझ रहे थे, लेकिन चक्रधर को किसी की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। वो तो बस अपने पेड़ों को बचाने में लग गए। उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई कर पाया कि कीड़े पेड़ की जड़ों को खा रहे हैं। वे अपने पेड़ों में लगने वाले कीड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर उन्हें बचाने का काम करते हैं। इस काम में सफलता मिलने पर लोगों को भी विश्वास हो गया कि वे सच में पेड़ों के दुख दर्द को समझते हैं। चक्रधर प्रधान अपने गांव में पेड़ों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही इनके गांव और आसपास के किसान अपने पेड़ों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कराने इनके पास आते हैं। इनकी मदद से किसान भी अपने पेड़ों की समस्या को सुलझा कर अपने पेड़ों को सुरक्षित करते हैं। चक्रधर प्रधान अपने इस ज्ञान को किसानों के साथ साझा करते हैं। आज वे अपनी ही नहीं दूसरों के पेड़ों की भी रक्षा करते हैं। इनके गुणों और खेती में दिए इनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अपने इस काम के लिए मान और सम्मान के साथ एक पहचान भी मिली है।

0: हमारे झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चर्चा करते हैं पालक की खेती को लेकर। इसकी खेती हमें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सा बीज लाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
2: आज की वार्ता में मैं आपको अगेती पालक की बुआई कैसे करें, उससे खेती से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। आप देखें, पालक की जहां बात आती है, वैसे अमूमन तौर पे नॉर्मल किसान ये इसको सितंबर से अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक बुआई करता है और उस समय इसकी खेती ज़्यादातर करते हैं। लेकिन आप देखेंगे बाजार में इसकी बहुतायत मांग होती है और पूरे वर्ष भर इसकी खेती की जाती है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सिर्फ पालक की ही खेती कर कर के अपनी आमदनी में वृद्धि करते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके, हमारे किसान भाई, इस समय बाजार में पत्तेदार सब्जियों की मांग ज़्यादा होती है और यदि आप पालक की खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आप देखें, पालक ऐसी सब्जी है जो कि पोषण से भरपूर है। आप इसमें अधिक से अधिक विटामिन, खनिज लवण, आयरन तथा कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत अधिक रेशा होता है तथा कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये पालक की सब्जियां अपने भोजन में समावेश करके अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं और अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती आमतौर से ओपन खेत में करते हैं, फील्ड में करते हैं, और अगर किसान भाई के पास अपनी ज़मीन हो तो उसमें भी छोटे खेती में कर सकते हैं। अगर उनके पास घर के पीछे पिछवाड़े में, अगर बैकयार्ड में जगह है, वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर फिर भी छत है आपके पास तो उस पर भी आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफ गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं उसको कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई आर्थिक दृष्टि से खेती करना चाहते हैं तो वो हमारे जो ओपन खेत हैं, फील्ड हैं, खुले खेत में एक एक हेक्टेयर की खेती, जहाँ पे एक एक एकड़ की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, उसमें खेती कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समय बहुत ही अच्छा आ रहा है, इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप खेती की तैयारी अच्छे से करें। खेती की तैयारी में अगर आप देखें, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इनमें अगर खेती में जीवांश अधिक होगा तो पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसकी वजह से आप अधिक उत्पादन भी ले सकेंगे। तो ये जहाँ तक बात हम देखने की है कि आप 25 टन सड़े गोबर की खाद अगर मिल जाए तो आप अपने खेत में एक हेक्टर के हिसाब से मिलाएं, और नहीं तो आप फार्म यार्ड कंपोस्ट हो उसको भी मिला सकते हैं। अगर संभव हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने खेत में मिला के डाल सकते हैं, तो जिससे कि ये भूमि जो है उर्वरा शक्ति इसकी बढ़े और उसमें जब आप बिजाई करेंगे तो पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। इसके साथ ही जब आप खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं, उसमें ये आप जो सड़ी खाद है कंपोस्ट के मिला लेते हैं, मिलाने के बाद एक दो हल से अच्छी से जुताई करें और बिल्कुल ज़मीन भुरभुरी हो जाए, पानी लगा करके बिल्कुल जब उसमें ओट आ जाए तब आप उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद आप देखेंगे तब ये बिजाई के लायक इसको आपको तैयार करनी है। जैसा बारिश का मौसम है इस समय, तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर उन्हें रेज्ड बेड पे खेती करनी है, जैसे ऊंची उठी हुई क्यारियां बनानी हैं, तो आप उसके लिए 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बना सकते हैं या 80 से लेकर 1 मीटर चौड़ी क्यारियां टमाटर के लिए भी जैसे बनाते हैं, इस तरह से ऊंची उठी हुई 1 फुट लगभग ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं और बीच में 2 क्यारियों के बीच में कम से कम 1.5 फुट की जगह छोड़ें, जिससे कि आने जाने में और उसमें पानी देने में लगाने में आपको असुविधा ना हो। तो इस तरीके से आप रेस्ट बेड पर खेती कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान हमारे ऐसा भी देखा गया है कि वो बिल्कुल फ्लैट बेड में भी खेती करते हैं, बिना मेड़ बनाए हुए उस पर भी खेती कर लेते हैं। तो वो करते हैं, उनकी अगर ज़मीन में पानी के निकास का अच्छा प्रबंध है तो वो आप फ्लैट बेड में भी खेती कर सकते हैं। इसको अब खेती करने के लिए मैं आपको पहले उन्नत किस्मों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप देखें, पालक की बहुत अच्छी किस्में, बहुत हमारे स्थानीय किस्में भी हैं, किसानों के बीच में प्रचलित हैं, वो अपनी उगाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी किस्में हैं जो हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। इसमें पूसा हरित एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत उगाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा दूसरी एक और किस्म है पूसा भारती, ये बहुत ही उत्तम किस्म है। अगर आप देखेंगे इसकी पत्तियों में तो इसमें रेशा तो होता है, लेकिन अगर आप जैसे पत्ती को मोड़ें तो पत्तियां बिल्कुल आसानी से मुड़ जाती हैं और कड़क करके टूटती हैं। इसकी एक खास पहचान है। अगर आप इसको आप खेती करते हैं तो इस जो अन्य किस्मों की अपेक्षा इसका बाजार भाव ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑल ग्रीन किस्म है जो कि बहुतायत है, प्रचलित है किस्मों किसानों के बीच में। ये भी एक किस्म है, पूसा से भी निकाली गई है, इसकी भी खेती कर सकते हैं आप। तो ये जो कुछ उन्नत किस्में हैं पालक की, आप इसके बीज उपलब्धता अपने लिए सुनिश्चित कर लें जहाँ से भी आपको संभव हो, भारत अनुसंधान संस्थानों से या देश के बीज विक्रेता जहाँ से आप करते हैं वहाँ से प्राप्त कर लें। आप इसको ले करके अपने पास सुनिश्चित कर लें क्योंकि बुआई का समय है, बुआई कर सकते हैं आप। वैसे तो आमतौर पे जो हमारे बहुत ही वैसे किसान हैं वो लगभग साल भर इसकी खेती हर मंथ में बुआई कर करके इसको बाजार में बेच करके इसका पैसा मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जब एक हेक्टेयर में आप खेती करना चाहते हैं तो लगभग 30 से 40 किलो इस बीज पर्याप्त होता है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम थोड़ी सी बीज की मात्रा अधिक लगती है। और यही अगर आप जाड़ों के मौसम में करेंगे तो 25 से 30 किलो बीज काफ़ी पर्याप्त होता है। अब जहाँ तक बात है इसमें नत्रजन देने की, देखिए ये पत्तीदार सब्जियां हैं, इसमें आपको नत्रजन की मात्रा का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपने अच्छी सड़ी गोबर की खाद खेत में मिला रखी है, चाहे आप कंटेनर में कर रहे हों, गमलों में कर रहे हों, तो उसमें अच्छे से इसका जमाव होगा। अगर जहां हम खुले खेतों की बात करते हैं तो उसमें हम 75 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की मात्रा संस्तुत करते हैं इसकी खेती के लिए। जहां तक आप अंतिम जुताई के समय में ये आप ध्यान रखें कि 25 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलो पोटाश की मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय मिला करके अच्छे से खेत की जुताई कर दें और बिल्कुल पानी लगा करके उसे बुआई के लिए तैयार रखें। जब आप इस तरीके से करें और जो बाकी 50 किलो मात्रा बचती है नत्रजन की, तो इसको आप 30 दिन पे और 45 दिन पे इसका छिड़काव करते हैं, या यूं कह लें कि जब पहली कटाई कर लेते हैं या दूसरी कटाई के समय में 25-25 किलो की मात्रा का छिड़काव करके आप अपने पौधों को देने के लिए ध्यान रखें। तो अब आप बीज की बुआई कैसे करें, जब आप देखें इसमें कम से कम 30 सेंटीमीटर

0: दूरी पे नाली निकालें, लाइन की कतार की कतार बनाएं। अगर आप मेड़ों पे बो रहे हैं, 1 मीटर चौड़ी मेड़ है, तो आप इसमें कम से कम आप जो है 4 लाइनें या तो 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा के 4 लाइनें आप बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा है तो भी आप इस रेस्ड बेड पे जो ऊंची उठी हुई मेड़े हैं इस पे भी आप अगर 2 लाइन पाइप बिछाते हैं तो उसके 2 लाइन पाइप के 2 लाइन इधर और 2 लाइन दूसरी तरफ, इस तरीके से इसकी आप बिजाई कतारों में करेंगे तो घास और पतवार जो खर पतवार है निकालने में आसानी होगी। तो अगर आप जब देखें जैसे ही आप बुआई कर लें और उसके बाद ध्यान रखें कि इसमें जो खर पतवार भी कभी कभी उग आते हैं तो उसके नियंत्रण के लिए अगर आपके पास पेंडीमेथिलीन दवा है तो ये 3 लीटर जो है दवा और 1000 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टर के लिए पर्याप्त होता है। तो इससे जो है आपका कम से कम 20-25 दिन कोई घास उसमें नहीं निकलेगी और ये जो पौधा अपना है पालक की पत्तियाँ ये जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और बहुत ही बढ़वार अच्छे तरीके से होगी। हो सके अगर आपके पास सूखी घासें हैं या पुआल हैं धान के तो इसको भी अगर आप पलवार के रूप में उस पर बिछा देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि मॉइस्चर जो नमी है हमारे खेत में वो बनी रहेगी जो बीज के अंकुरण को सहायक होगी। दूसरी बात है कि अगर तेज वर्षा आ जाती है किसी कारण से तो ये तेज वर्षा से बीज को बहने से बचा सकती है। तो इसलिए अगर आप सूखी पलवार डाल दें, अगर ये आपके पास सुविधा नहीं है, अगर आपके पास सुविधा है पॉलीथीन की है तो आप उसको भी बिछा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद उसे हटा दें जिससे कि अंकुरण में कोई दिक्कत ना हो और बीज अच्छे से जमाव हो सके। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पालक की अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त फसल ले सकते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें बरसात का मौसम है तो जैसे ही जमाव आपका हो जाता है 1 हफ्ते 10 दिन के पौधे हो जाते हैं तो उस पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, पत्तियों में छेद करने वाले दिखाई देते हैं, रस चूसने वाले दिखाई दे सकते हैं जो कि जाड़ों में बहुत कम मिलते हैं। कि अगर ऐसी चीज़ दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कुछ कीड़े दिखाई दे रहे हैं, लूपर दिखाई दे रहे हैं या कटुए कीट की तरह दिखाई दे रहे हैं तो आप नीम आयल आती है या नीम बीज अर्क का घोल आता है 5% का, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि आप पत्तियों पर छिड़काव कर देते हैं तो आप इन कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकेंगे। ये जो रस चूसने वाले हैं या कुछ कुतरने वाले हैं तो इनसे आपकी रोकथाम बड़े आसानी से इन कीटों का हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे और पानी जो सिंचाई की बात है इसको भी आपको देने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि अगर बीच में बरसात हो जाती है तो ठीक है, नमी खेत में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है फिर आपको देखना है कि फिर 5 से 7 दिन के बाद अगर जर्मिनेशन हो गया है, पौधे मुरझाने की अवस्था आने वाली है तो उसमें आप सिंचाई जरूर करें। जब भी करें आप हल्की सिंचाई करें, और अगर किसी कारण से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर उसमें कहीं डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आ रही है तो हो सके तो जो आप सिंचाई वाले पानी में आप डाइथेनियम 45 का घोल बना दें तो उससे सिंचाई कर देंगे तो ये जो आपका विल्टिंग वाला पौधा है ये बीमारी से बचाव हो सकेगा। तो इस तरीके से अगर आप वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे, और अगर आपके पास एक बात और हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, यदि आपके पास पाली हाउस है, इस समय गर्मी में अभी आपने कुछ लगाया नहीं है तो आप उसके अंदर में भी पालक की बहुत अच्छी खेती ले सकते हैं जो कि 6 से 8 हफ्ते में ही इसको आपको फसल मिल जाती है और इससे अधिक से अधिक आपको दाम भी बाजार में मिल जाएगा। तो आप उसका उपयोग खुले अगर हैं खाली हैं तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि खेत पाली हाउस करते हैं और उनके पाली हाउस में लगातार खेती करने से उसमें क्षारीय भूमि बन गई है जिसका पीएच मान 8, 8.5 तक पहुंच गया है, तो मैं उनके लिए ये संस्तुत करना चाहता हूं कि अगर संभव है तो वो इस समय जब उनका खेत अभी खाली है, दूसरी फसल लगाने का टाइम अगस्त तक आता है, तो उसमें एक फसल पालक की ले लें तो ये काट हैं ये पालक सोख लेते हैं और अगली फसल के लिए बहुत ही ये जमीन अच्छी मानी जाने लगती है। फिर आप अगली फसल जब आप उसमें लगाएंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको एक अतिरिक्त लाभ उस पालक की खेती से आप अभी ले सकते हैं जो कि आप 6 से 8 सप्ताह में ही तैयार हो जाती है। तो इस समय आप देखेंगे अगर आप 6 सप्ताह में लेते हैं तो हमारे किसान भाई हार्वेस्टिंग का जो बात हम करते हैं, अच्छी जब फले ये पौधे बन जाते हैं तो आप 6 सप्ताह में एक कटाई ले सकते हैं, और अगर कटाई नहीं कर पाते हैं तो कोई कोई किसान भाई जड़ सहित पौधे को उखाड़ करके बाजार में फिर बेचने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनका ये मकसद होता है कि हमें बस तुरंत अगली फसल दूसरी लेनी है इस वजह से। और अगर पालक की फसल लेनी है तो आप एक कटाई करके उसमें 25 किलो नत्रजन छिड़काव करके हल्की सिंचाई कर दें तो दूसरी ग्रोथ जल्दी से आ जाती है, और फिर आप 8 हफ्ते तक दूसरी कटाई करके आप फिर पालक की बाजार में बिक्री कर सकते हैं। इससे आप इस तरह से अधिक लाभ मुनाफा कमा सकते हैं, कम समय में अधिक मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।

0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। किसान साथियों, आपको ले चलते हैं मिर्ची के खेत में और जानेंगे हमारे किसान भाई ने इस मिर्ची की खेती को कैसे किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तो इसको तो पहले ये बताइए, लगाने से पहले एक किसान जो मिर्च लगाना चाहता है वो क्या क्या करे, कितनी जुताई कराई आपने?
2: इसमें 3 जुताई हुई
1: है। 3 जुताई बढ़िया से,
2: एक मिट्टी को पलट हल से,
1: मिट्टी पलट हल
2: से जुतवा करके उसके बाद मेड़ बनवाए।
1: ठीक है, मेड़ की दूरी क्या रखी है आपने?
2: मेड़ की दूरी 3 फीट है।
1: 3 फीट मेड़ की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी क्या लगाई आपने?
2: 1 से 1.25 फीट।
1: 1 से 1.25 फीट की दूरी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी आप 1 से 1.25 फीट रखें और मेड़ से मेड़ की दूरी
2: 3 फीट
1: रखें। इस पे जो आपने रोप लगाया है वो दो दो प्लांट करके लगे हैं?
2: दोनों है।
1: अच्छा, 2 भी लगे हैं और
2: जो कमजोर पौधा था वो 2 लगे हैं, जो मजबूत पौधा था वो
1: जो पौधा मजबूत था उसको हमने 1 लगाया है और जो कमजोर थे उसका 2 लगाया है। इसमें जुताई का जब आप खेत बना रहे थे बोने के लिए तो क्या क्या डाला है आपने?
2: उस समय सर हम इसमें गोबर की खाद में 1 बोरे सड़े हुए गोबर की खाद में प्रीमियम मिला के 1 लीटर इसमें
1: एक तो आता है बायो का बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का प्रीमियम 1 बोरे सड़े की खाद सड़ी हुई खाद में मिलाया और डाल दिया। ठीक है, रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा बताइए।
2: रासायनिक फर्टिलाइजर की टोटल इसमें है 2 बोरे डीएपी पड़ी है, 2 बोरे यूरिया। बस
1: डीएपी कब कब दिया है आपने?
2: डीएपी वही मेड़ चढ़ाते समय जब पौधे लग गया उसके बाद चढ़ाते समय इसमें
1: दिया। अच्छा, मतलब पहली डीएपी आपने दिया जब आप प्लांट पकड़ लिया, गुड़ाई कराया इसकी और मेड़ चढ़ाते समय डीएपी डाल के दे दिया। फिर दोबारा भी दिया डीएपी?
2: एक बार दिए हैं,
1: थोड़ा सा
2: दिए हैं।
1: अच्छा, थोड़ा। ठीक है, यूरिया कितना दिया है आपने?
2: वही 2 बोरे की लगभग यूरिया भी दिया अभी तक।
1: अच्छा, अभी तक ये कब का लगाया है आपने इसको?
2: अगस्त का लगाया।
1: अगस्त फर्स्ट वीक का लगा है। 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया इन्होंने लगाया है। केमिकल स्प्रे की बात करें हम मिर्च में, मिर्च में बहुत सारा किसान हमारा परेशान हो जाता है, तो मिर्च में केमिकल स्प्रे कितना हुआ है
2: इसमें? सर केमिकल तो नहीं डाले हैं, हाँ दूसरे एक और ही ऑर्गेनिक डाले हैं।
1: मतलब सहारा लेना पड़ा है, थोड़ा सा सहारा लेना पड़ा है। चलिए बताइए क्या क्या और कैसे प्रयोग किया है इसमें आपने?
2: इसमें शुरू में वही स्प्रे करते समय
1: अर्गोमाइट और
2: वायरस।
1: ये किस लिए? ये पहले किसानों को बताते चलिए इसका स्प्रे क्यों हुआ है।
2: ये माइट और थ्रिप्स के लिए हुआ
1: है। माइट, थ्रिप्स और सफेद मक्खी के लिए। ठीक है, जिससे पौधे जो है ये चिड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया? ये SA90 स्टिकर और ग्रोइंग के समय क्या दिया है आपने ग्रोथ के लिए?
2: ग्रोथ के लिए एक नाइट्रो किंग है, एक ग्रो आता है उसको डाले।
1: कितनी स्प्रे हुई है उसकी?
2: उसकी 2 स्प्रे हुई है सर।
1: तो 2 स्प्रे करने के बाद इसकी ग्रोथ बढ़िया मिली आपको
2: जी।
1: फिर ग्रोथ के बाद क्या डाला आपने?
2: उसके बाद ब्लूम और नाइट्रो किंग का
1: फूल जब आया तो कितने दिन बाद लगाने के? कितने दिन बाद?
2: यही 1 महीने बाद।
1: 1 महीने बाद, लगभग 30-35 दिन बाद
2: जी।
1: ठीक है, ब्लूम नाइट्रो किंग आपने डाला
2: जी।
1: ये ब्लूम और नाइट्रोकिन, मित्रों मैं बताऊं ब्लूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आता था कम से कम, और इस बार कितना आया है?
2: अब की बार लगभग 16-17 हजार में होगा।
1: 16-17 हजार में। एक तो देखिए, हम जब ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रयोग करेंगे अपने खेतों में, प्लांट को न्यूट्रिशन देंगे, तो पहला फायदा तो ये हुआ कि इनकी लागत धीरे धीरे कम हुई, दूसरा उत्पादन 1.5 गुना हो गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि बीमारियां इनके खेतों में नगण्य है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टैंटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहू वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमलता रेजो टैंटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हमने मिर्ची से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही हमने एक सफल किसान जो कि डॉक्टर है उनकी कहानी को जाना, और पालक की खेती को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM छावा की आवाज।
3: आप सुन रहे हैं छावा का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया बिल 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांडिया बिल रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM

0: जिंदगी के रंग गीतों के संग प्रोग्राम में दोस्तों आपका स्वागत है। आइए आपको मिलवाते हैं हमारे आपके जैसे सज्जनों और महिलाओं से, जिनकी बातें सुनकर, जिनसे बातचीत करके आपको बड़ा मजा आएगा, और उन्हीं के पसंद के गीत भी हम इस प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जिंदगी के रंग गीतों के संग, और आज का रंग है साहित्य और संगीत की दुनिया का बहुरंगी रंग। मैं आपकी आवाज की दुनिया का दोस्त आलोक कुमार हमेशा की तरह आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी संवेदनशील रचनाकार मौजूद हैं, जिन्होंने जीवन की साधारण भूमिकाओं को अपनी असाधारण ताकत बनाया है। एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ और एक गृहिणी, इन्हीं अनुभवों की मिट्टी से जन्मी एक सशक्त कवित्री और लेखिका अनिजय वर्गी जी। इनकी लेखनी में रिश्तों की गर्माहट है, प्रेम की अनुभूतियां हैं और जीवन के अनगिनत रंग हैं। परिवार की जिम्मेदारियों के बीच में अपने लिए समय निकालकर इन्होंने लिखना शुरू किया और धीरे धीरे साहित्य की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इनकी कविताएं सदा संकलनों, शब्द शब्द कस्तूरी, नारी आदि में प्रकाशित हो चुकी हैं। महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह, प्रहरी मंच और परसाई मंच जैसे साहित्यिक मंचों से जुड़कर इन्होंने मुंबई की साहित्यिक दुनिया में अपनी एक सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। इनकी आगामी पुस्तक करची से कलम तक केवल एक शीर्षक नहीं बल्कि एक स्त्री की खूबसूरत रचनात्मक यात्रा की कहानी है। कविता के साथ साथ कथक और मधुबनी कला में भी इनकी गहरी रुचि है। तो आइए आज मिलते हैं उस संवेदनशील कलम से जो जीवन के हर भाव को शब्दों में पिरोना जानती है। हम स्वागत करते हैं कवित्री और लेखिका अनिता विजय वर्गी जी का। अनिता जी का आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार आलोक जी, और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और सभी श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अभिभूत हूँ आज रेडियो पर आकर, लगता है

0: ही मजा आने वाला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल अनीता जी, आपने हमारे दिल की बात कह दी, बिल्कुल मजा आने वाला है। आपकी आवाज सुन के ही हमको बहुत अच्छा लग गया है। तो चलिए शुरुआत फिर शुरुआत से करते हैं, और शुरुआत आपके बचपन से ही कर लेते हैं। तो बताइए अनीता जी, कैसा आपका बचपन, पारिवारिक परिवेश कैसा था, कुछ अपने बारे में, अपने बचपन के बारे में श्रोताओं को बताइए, कहाँ बड़ी कहाँ पली बड़ी हैं
0: हाँ
1: आप।
0: जी, बचपन का नाम आते ही ये दो पंक्तियां मेरे दिल में आती हैं कि निर्भय निश्चल बेफिक्रा प्यारा सा भोला बचपन, खो जाता यादों में इसकी मेरे मेरा बावरा सा ये मन। तो बचपन तो किसी का भी हो, आपका मेरा हम सब का, हम बचपन की गलियों में ऐसे खो से जाते हैं। तो बचपन की जो आपने बात कही है, तो बचपन मेरा राजस्थान के अलग अलग शहरों में बीता, और बहुत ही कभी बड़ा शहर था, कभी हम छोटे शहर में गए, गांव में गए, तो कभी हमने खेत खलिहान देखे, तो कभी हमने शहर देखे, तो इस तरह से हमारा बचपन बीता।
1: तो अनिता जी, अब ये बताइए कि आपने बचपन के बारे में बताया, आपकी जगह जगह शिक्षा हुई, तो क्या बचपन से ही साहित्य कविता या कला या लिटरेचर की ओर आपका झुकाव था, या रुचि ये बाद में विकसित हुई, कुछ इसके बारे में बताइए, कैसे
0: हाँ
1: आपका शुरुआत।
0: जी, बचपन में तो साहित्य की तरफ इतना रुझान नहीं था, और मतलब घर में भी कोई ऐसा विशेष साहित्यिक माहौल नहीं था। हाँ, मेरा नृत्य और पेंटिंग इस तरफ काफी, कला की तरफ इस तरह की काफी झुकाव रहा, लेकिन साहित्य के प्रति रुचि बाद में विकसित हुई।
1: तो
0: जी
1: अब ये बताइए, आप कई तरह के रोल निभा रही हैं, आप एक बेटी भी थी शुरू में, पत्नी, माँ, गृहिणी के रूप में, तो ये कैसे आपको अनुभव रहे इस सारे दौर में, और इसके साथ में आपकी साहित्यिक यात्रा भी शुरू होती रही, और फिर
0: जी
1: आपने
0: जी
1: बंबई की यात्रा आपकी कैसे शुरू, इसके बारे में बताइए, तो थोड़ा सा हम आगे चलें।
0: तो मैं ये कहूंगी कि स्त्री का ये नैसर्गिक स्वभाव ही है कि वो अलग-अलग रूपों में ढल जाती है, कभी बेटी, कभी बहू, कभी पत्नी, कभी बहन, कभी गृहिणी, हर रूप में ढल जाना उसकी प्रकृति होती है। और उसके हृदय की मरुधरा पे हर नया रिश्ता अंकुरित होता है, जिसको वो अपने प्रेम से सींचती रहती है जीवन भर। लेकिन ये जो उसका जीवन पूरा इसी तरह से व्यतीत होता है, जब जीवन के उत्तरोत्तर समय में जब वो एक थेरेपी पे आती है, 40+ 50 पर मिडिल एज में, तब जाके वो मुड़ के देखती है, तो उसे एहसास होता है कि उसने किन किन रूपों को इस तरह से जिया है, और वो ये सारे एहसास उसको बाद में होते हैं। पहले तो वो सब रोल निभाती रहती है, उसे खुद को नहीं पता होता है कि वो क्या निभा रही है, लेकिन उसके उत्तरोत्तर जीवन में जब देखती है तब उसे समझ आता है। तो मैंने जो ये मिडिल एज्ड वुमेन होती हैं, उन्हीं को मैंने सांझ सी औरतें नाम दिया है, वो जीवन के सांझ की तरह होती हैं। तो सांझ सी
1: बहुत
0: औरतें, तो उन्हीं के ऊपर आपका जो प्रश्न है ना, उसका जवाब इस कविता में आपको जरूर मिलेगा, तो मैं
1: हाँ,
0: आपके
1: स्वागत।
0: सामने पढ़ना चाहूंगी। अक्सर चलते चलते यूं रुक सी जाती हैं, मुड़कर ठहरना नहीं जानती, ये सांझ सी औरतें ढलना नहीं जानती। एक ही जीवन में कई जन्मों के रंग समेटे, बिखरना नहीं जानती, ये सांझ सी औरतें क्या क्या नहीं जानती। टूटती हैं, बिखरती हैं, फिर जन्म लेती हैं और सवर जाती हैं हर जन्म के साथ। उम्र के उत्कर्ष में हर पड़ाव पर लेती हैं नया जन्म, बार बार हर बार निसार होना जानती हैं ये सांझ सी औरतें, बीमार होना नहीं जानती। पहला जन्म हूँ जब माँ ने छुआ, और दूसरा जब स्वयं माँ बनी, न जाने इस दौरान वह खुद कितनी बार जन्मी, बाबुल के आंगन से पिया की दहलीज तक न जाने कितने किस्सों की साक्षी बनी, और हर बार निखर आई नए रंगों में। ससुराल में धीरे धीरे सबके मन को छुआ, अनगिनत रिवाजों में दबी छुपी आवाजों में हजार बार गिरी और संभली, हर तजुर्बे का रंग अपने चेहरे पर ओढ़े दरिया की धार सी औरतें अधिकार नहीं जानती, हर ऊंच नीच से वाकिफ दर्द को अपने आंचल में समेटे इनकार नहीं जानती, ये सांझ सी औरतें क्या क्या नहीं जानती। जी
1: भाई मजा आ गया, आपने तो एक तरह का पूरा शब्द चित्र खींच दिया हमारे सामने भारतीय महिलाओं का, और जिस तरह की ये सांझ का से जो आपने इसको कंपेयर किया है और बताया है, बहुत बहुत सुंदर। और मैं तो कहूंगा कि जो हमारी भारतीय महिलाओं का जीवन है किस तरह से, और जो ये नैसर्गिक शब्द आपने यूज किया है ना कि उनकी एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, एक नैसर्गिक एबिलिटी होती है कि आपने इन सारे रोल्स में वो इतना स्मूथली ट्रांसफॉर्म कर जाती हैं एक रोल से दूसरी और की तरफ। तो ये बात सुन के और इस कविता में जिस तरह से आपने इसको पिरोया है, बहुत मजा आ गया। बस
0: धन्यवाद।
1: तो मैं आपसे एक गाने के लिए एक हम रुकना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए आप कि बम्बई आप कैसे पहुंच गई राजस्थान से।
0: ये तो मुंबई तक तो या तो लोग हीरो हीरोइन बनने पहुंचते हैं और मैं तो इसलिए पहुंची।
1: आप भी ऐसे ही पहुंची थी क्या? आपका क्या प्लान था वहां
0: जी? नहीं, ऐसा नहीं। वो बोलते हैं ना कि बस जहाँ पिया का घर होता है वही अपना घर होता है, तो मेरे पति यहाँ पर काम कर रहे थे तो शादी के बाद मैं मुंबई आ गई जी।
1: चलिए चलिए, तो बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो आपने पिया के घर की बात करती है, मेरे ख्याल में तो ये जय भादुड़ी की कोई पिक्चर थी, तो क्यों नहीं आज उसी का गाना सुन लेते हैं, आपका पिया का घर का गाना सुन लेते हैं ना। तो हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर आगे का सवाल में लेके आता हूं।

0: हाँ, वेलकम बैक अनीता जी। अब
1: जी
0: शुरुआत करते हैं, थोड़ी आपकी कविता और लेखन की बातचीतें करते हैं। तो अब ये बताइए अनीता जी, की कविता से आपका रिश्ता कब और कैसे शुरू हुआ, और यह वो कौन सा ऐसा क्षण था जिसने आपको कलम उठाने के लिए प्रेरित किया? मतलब कभी कभी ट्रिगर होता है लाइफ में कि भाई इसकी वजह
1: जी
0: से मैं लेखन में मेरा जुड़ा हुआ। कोई व्यक्ति भी हो सकता है, घटना भी हो
1: जी
0: सकती है, कोई अपना
1: जी
0: भी हो सकता है, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए।
1: जी हाँ, ये ना आलोक जी, ये बहुत ही रोचक एक संस्मरण है, एक
0: जी
1: घटना है जो कि कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।
0: जी
1: तो हुआ यूं कि मेरी जो बेटी है उसके स्कूल में हिंदी विषय का एक प्रोजेक्ट दिया गया बच्चों को,
0: ओके
1: और उसमें उनको डाकिया पर सब कुछ करना था। उन्हें डाक टिकट चिपकानी थी, उन्हें डाकिया की फोटो मतलब लगानी थी, और एक कविता उन्हें हिंदी में डाकिया पे लिखनी थी।
0: ओके
1: तो
0: अच्छा
1: और चूंकि बच्चे बहुत छोटे हैं और मुंबई में हिंदी जो है, आप जानते हैं मुंबई में बच्चों को कितनी
0: मैं बिल्कुल, वहां
1: हिंदी
0: हिंदी का,
1: पढ़ाई
0: हिंदी पे
1: जाती
0: हाथ
1: है।
0: तंग है थोड़ा।
1: हाँ, तो
0: बिल्कुल
1: वो लाजमी था कि मैं उसकी थोड़ी सी हेल्प करती। तो
0: बिल्कुल
1: उस वजह से वो जो कविता लिखनी थी तब मैंने कलम उठाई और मैंने वो कविता लिखी, और उस कविता की 4 पंक्तियां मुझे आज भी याद हैं।
0: सुनाइए।
1: हाँ बिल्कुल, तो ये कविता थी डाकिये को समर्पित। सूनी पगडंडी पर थी उनकी नजर, सूनी पगडंडी पर थी उनकी नजर, शायद कोई आए इस डगर। तभी साइकिल की घंटी बजाता डाकिया आया, लगता है आज सरहद पार से फौजी ने संदेशा भिजवाया। फौजियों के साथ साथ डाकिये को भी सलाम, जो करते हैं दिलों को जोड़ने का काम। तो ये छोटी सी कविता मैंने डाकियों उनके लिए, पोस्टमैन के लिए लिखी थी, और मतलब लिखनी पड़ी थी क्योंकि वो प्रोजेक्ट में देनी थी। तो इस तरह से कलम हाथ में आई, और जब उसके फ्रेंड्स वगैरह ने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि अरे, ये तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, आप लिख सकती हो, मतलब आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप और अच्छा लिख सकते हो, तो आप लिखा करो। तो वो भी यात्रा वहां शुरू नहीं हुई क्योंकि तब बच्चे छोटे थे और बड़े भी परिवार में थे, तो उनकी जिम्मेदारियों के बीच में वो लेखन को कहीं पंख मिले नहीं। फिर बाद में जब थोड़े बच्चे बड़े हुए, उसके बाद मैंने लिखना वापस से शुरू किया।
0: बहुत सुंदर, ये बात तो बहुत सही है। लेकिन आपने जो करेक्टर पहला लिया था डाकिया, अब तो वो बिल्कुल विलुप्त प्राय सा ही हो गया है। ना
1: जी
0: डाकिया रह
1: जी
0: गया है, ना लेटर बॉक्स रह गए। लेटर
1: जी
0: बॉक्स भी नहीं दिखते अब तो कहीं भी,
1: हाँ, आप
0: जबकि
1: तो
0: वो किसी
1: हाँ
0: जमाने में तो डाकिया आया करता था। अब जब से कोरियर
1: भाई,
0: आने शुरू हो गए तब तो बात ही खत्म हो गई।
1: हाँ, तो वो जो कहते हैं ना, खतों की महक एक अलग ही हुआ करती थी उस जमाने में।

0: है कविताओं की यात्रा है कि हम मतलब प्लान नहीं किया होता है कि हम पहली कविता का क्या विषय लेंगे, या ये सब स्वतः ही होता चला गया। तो ये जो सबसे पहली बार हुआ वो क्योंकि मुझे करना पड़ा इसलिए मुझे याद था। उसके बाद जो आगे क्या विषय होगा कैसे होगा वो अपने आप ही होता चला गया।
1: चलिए बहुत बढ़िया। तो आपके इस डाकिए पे रुक के हम एक अच्छा सा डाकिए वाला गाना सुन लेते हैं और फिर आगे इस बातचीत को जारी
0: जी
1: करते हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।

0: वेलकम बैक अनिता जी।
1: जी जी
0: अभी थोड़ा आते हैं आपके मुंबई के साहित्यिक जगत के बारे में बातचीत करते हैं। देखिए, कोई छोटा शहर होता है, वहां अपनी पहचान बनाना फिर भी रिलेटिवली इजी होता है, लेकिन मुंबई जैसे साहित्यिक जगत में आपने इतने मंचों पर काव्य पाठ भी किया है, इतनी संकलन में आपका प्रकाशन भी हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि वहां किस तरह से आपने अपनी पहुंच बनाई, किस तरह से पहली बार वहां गई, आपको कौन लेके गया, कुछ ऐसी बातें बताइए हमें।
1: जी जी तो जैसे जब भी आप किसी चीज से जुड़ते हैं ना, तो रास्ते अपने आप ही खुलते चले जाते हैं।
0: जी
1: तो वही यहाँ मुंबई में भी वैसा ही हुआ। और मुंबई में भी जब तक मैं साहित्य से मेरा कोई जुड़ाव नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ पर इतना सब कुछ, मतलब हिंदी साहित्य भी इतना समृद्ध है। तो
0: ओके
1: हाँ, तो धीरे धीरे, मतलब जैसे ओपन माइक्स में आप परफॉर्म करते हो, वहां पर आप जाते हो, वहां पर आपसे लोग जुड़ते हैं, फिर वो किसी और जगह पर आपको बुलाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके एक चेन बन जाती है और आप नए लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो महिला काव्य मंच के अध्यक्ष हैं, अलका अग्रवाल जी सिकदिया, वो व्यंगकार हैं काफी नामी। तो

0: उन्होंने मुझे इस ग्रुप से जोड़ा और उसके बाद काफी चीजों से हम जुड़ते चले गए।
1: तो इस महिला काव्य मंच, राष्ट्रीय शब्द और राग समूह जैसे मंचों से आप जुड़ी, तो यहाँ क्या क्या फॉर्मेट क्या होता है? जैसे आप सब लोग अपनी अपनी कविताएं पढ़ते हैं या क्या, किस तरह से सब लोग, क्या सिस्टम
0: तरह
1: होता है?
0: से जी, जैसे महिला काव्य मंच और ये जितने भी मंच हैं वो एक्चुअली कोविड के बाद में काफी सक्रिय हो गए, क्योंकि कोविड के बाद लोगों को लगा कि हमें अपने फुर्सत के क्षणों में किस तरह से मतलब लोगों से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो ऑनलाइन ही गोष्ठियां होने लगी और ऑनलाइन ही काफी कुछ एक्टिविटीज होने लगी, तो ये जितने भी इस तरह के ग्रुप्स हैं वो काफी एक्टिव हो गए। तो उनका फॉर्मेट यही होता है कि महिला काव्य मंच में तो महिलाएं हैं, चाहे वो 4 साल की हो चाहे वो 80 साल की हो, उन्हें महत्व दिया जाता है और वो अपनी भावनाएं किसी भी रूप में वहां आके कविताओं के रूप में प्रस्तुत कर सकती हैं। और फिर हमारे एनुअल डेज भी होते हैं और जब पॉसिबल होता है तो फिजिकल मीटिंग भी होती है और इस तरह से अच्छे प्रोग्राम्स चलते रहते हैं।
1: तो वहाँ इस मंचों पर आपने आपकी कौन सी प्रस्तुतियां, काव्य पाठ ऐसा आपने किया जो आपके बहुत करीब है और हमें सुना सके तो एक कविता भी सुना दीजिए उसी
0: एक्चुअली काफी सारी कविताएं हैं जो हम पढ़ते रहते हैं और जो कहते हैं दिल के करीब है, तो उस जैसे एक कविता खत नुमा कविता एक मैंने लिखी थी, मेरे बेटे के लिए लिखी थी जब वो मिलिट्री में जा रहा था।
1: अरे वाह, अच्छा, आपका बेटा मिलिट्री में, आर्मी में, ओके,
0: जी जी। तो देखिए ये जो जीवन की कड़ियां कैसे जुड़ती हैं, जो पहली कविता मैंने लिखी थी वो ये थी कि सरहद पे फौजी और पोस्टमैन, उसका रिलेशन और वो जो माँ बाप हैं वो इंतजार कर रहे हैं, तो वो बाद में जाके मेरे जीवन की कहानी बन गई क्योंकि बेटा वहां पर सरहद है और हम यहाँ पर हैं। तो ये सारी तो मैंने जिस समय वो तैयारी कर रहा था वो जैसे कहते हैं ना वो मेरे जो दिल के उद्गार थे, वो कविता मुझे बहुत प्यारी, वो काफी लंबी है तो मैं सोचती हूँ कि हम कभी उसको और सुनाएंगे, और बाकी वो कविता मेरे दिल के बहुत करीब है जी।
1: ओके, नहीं उसमें से अगर कुछ पंक्तियां सुनाना चाहें तो सुना दीजिए या कोई और अन्य सुना दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं।
0: एक कविता मैं आपको सुनाना चाहती हूँ
1: जी।
0: काश तुम समझ पाते, काश तुम समझ पाते, महक जाता है मन मोगरे के गजरों से, हीरों के हार किंचित चुभते हैं शूल की तरह, काश तुम समझ पाते, चांद तारे नहीं ख्वाबों की जमी और तेरी बाहों का बिछौना, बस यही तो सामा है मेरी चाहत का, काश तुम समझ पाते, बुलंदियों के उरूस पर जो हासिल हुआ वो वक्त हमारा नहीं, जो तुम चुरा लाते चंद लम्हे प्रेम के वक्त से छीन कर, बस उन्हीं लम्हों को बांध कर रख लेती मैं प्रेम के आंचल की कोर में छुट्टे सिक्कों की तरह, और जीवन की थाप पर हर बार वो खनक सुन पाते, तुम भी मैं भी, काश तुम समझ पाते।
1: अरे वंडरफुल, बहुत बहुत सुंदर, और शब्दों का चयन और बहुत अच्छा, और आपने एक इसमें शब्द यूज किया उरूज, जो उर्दू का शब्द है और हिंदी वाले बहुत कम उस शब्द को यूज करते हैं। मेरा थोड़ा सा उर्दू से लगाव है और मैं बोलता भी हूँ, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आपने एक हिंदी की कवित्री ने इतना अच्छा और बड़ा उसका बड़ा अच्छा यूज किया आपने, और आपकी जो भावनाएं ये तो बहुत अच्छी है। मैं तो थोड़ा सा इस पे और बात करना चाहेंगे, तो अच्छा ये बता दीजिए आप शॉर्ट में कि कोई प्रसिद्ध साहित्यकार, कलाकार या सेलिब्रिटी ने भी आपका काम को एप्रिशिएट किया है, कुछ उनके बारे में बताइए, अनुभव है ऐसे के साथ।
0: देखिए, सेलिब्रिटीज का जहां तक सवाल है, मुंबई में आप जानते हैं कि काफी प्रोग्राम्स होते हैं और हम लोग काफी लोगों को देखते भी हैं, उनसे कुछ सीखते भी हैं, अच्छा लगता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कविता पाठ के समय वो है या नहीं है, ऐसा भी हो जाता है क्या? लेकिन हाँ, इच्छा है कि किन्हीं सेलिब्रिटी तक हमारी बात पहुंचे और वो उसको सराहे तो उसकी खुशी अलग ही होती है। पर मुझे, मेरी एक कविता है, उसके जो उन्होंने, एक पत्रिका आती है उसमें उन्होंने उसकी काफी अच्छी समीक्षा की, वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा।
1: अच्छा
0: उस,
1: है।
0: जी, और उसका मतलब मुझे हमेशा दिल दिमाग में उनकी प्रतिक्रिया जो उन्होंने दी वो छपी हुई रहती है कि अगर प्रतिक्रिया अगर कोई दे तो ऐसी दे। जी,
1: नहीं तो नाम तो बताइए उनका जिनने आपकी समीक्षा
0: आ,
1: की।
0: आ, उनका नाम, मैं थोड़ा सा मेरे दिमाग से, हाँ
1: अच्छा कोई बात नहीं कोई बात
0: सर, उन सर, उनका नाम है जितेंद्र जी
1: नहीं। अच्छा
0: जीतांशु। हाँ
1: अच्छा
0: जी, वो
1: अच्छा
0: सदीनामा पत्रिका चलाते हैं,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा बहुत बढ़िया।
0: उन्होंने इस तरह से। हाँ जी,
1: चलिए तो जितेंद्र जी के नाम से और उनकी साहित्यिक यात्रा के नाम पर रुककर हम एक गाना सुन लेते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।
0: जी

0: हाँ अनिता जी, तो वेलकम बैक। अब
1: जी
0: ये आपने जो अभी ये काश तुम समझ पाते, ये जो कविता आपने सुनाई, इसी को
1: जी
0: सुन के मेरे दिमाग में, जहन में ये सवाल आ रहा है कि आपकी कविताओं में स्त्री प्रेम और जीवन के भाव बहुत गहराई से दिखाई देते हैं, तो
1: जी
0: इन विषयों से आपका ऐसा इमोशनल कनेक्ट कैसे बन गया, भावनात्मक जुड़ाव कैसे बना, इसके बारे में बताइए।
1: जी जी तो इसके बारे में तो आलोक जी ये कहना चाहूंगी कि एक नारी के रूप में जन्म लिया है तो उसके भाव होना तो स्वाभाविक है। और प्रेम तो ऐसा है कि अगर प्रेम नहीं तो जीवन नहीं, तो ये एक ऐसा त्रिकोण बन जाता है जो किसी भी नारी या पुरुष भी उनके जीवन में बहुत अहम स्थान रखता है। तो इसीलिए ये भावनात्मक जुड़ाव जो है मैं इन सभी विषयों से महसूस करती हूँ, क्योंकि जीवन से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और प्रेम के बारे में भी हम, मतलब प्रेम करते करते भी हम बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत कुछ पाते हैं कि हाँ हमने यहाँ पर ये कमी रह गई तो उसको कैसे सही सुधारा जाए। तो ये इस तरह से एक बहुत ही स्वाभाविक सा जो एक त्रिकोण है वो हमारे जीवन में बन जाता है।
0: चलिए, ये बात तो मैं आपकी समझ गया। अब मैं थोड़ा और आपके साथ ये जो प्रश्नों की हमारी भूमि है, इस पे आगे चलना चाहता हूँ। कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी याद या कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको कभी भीतर तक छू गई हो और आपकी कलम चल पड़ी हो, या आपको अभी तक याद रहती है, भले ही आपने उसको शब्दों में नहीं उतारा हो, लेकिन
1: जी
0: आपको
1: जी
0: हमेशा याद रहती है, ऐसी कोई घटना, ऐसी कोई
1: जी
0: है
1: जी नहीं
0: बात? क्योंकि
1: तो
0: हमारे हमारे रेडियो स्टेशन पे सब बहुत ही इस पर बातें करते हैं, बहुत सहज भाव से। आप बताइए, बिल्कुल अच्छा लगेगा लोगों
1: हाँ
0: को
1: हाँ
0: सुनकर।
1: नहीं फीलिंग्स तो देखिए, जब हम संवेदना के स्तर पर अगर कोई चीज को महसूस करते हैं तब वो जो भाव होते हैं ना, वो मुझे लगता है हमेशा हमें याद रह जाते हैं और हम उनको लिखना चाहते हैं, या ना भी लिखें तो वो हमारी स्मृतियों में कहीं बने रहते हैं।
0: जी
1: तो ऐसी, मतलब आज वो कविता अभी मेरे सामने नहीं है, बट ऐसे ही कोविड टाइम्स में जब हुआ था कि सब तरफ आपको पता ही है किस तरह से समय एकदम बदल गया था, लोगों को
0: सही
1: बिल्कुल
0: बात
1: पैसा
0: है।
1: हाथ में ही नहीं था। तो जो हमारे घर में काम करने वाली जो मेड्स होती हैं उनके लिए बहुत ही एकदम संकट खड़ा हो गया था, क्योंकि वो काम पे भी नहीं आ सकती, पैसा भी नहीं मिल रहा है।
0: बिल्कुल
1: तब
0: सही
1: फिर
0: बात।
1: उनको जहन में रख के फिर मैंने, मुझे एक कविता ऐसे उपजी थी तो वो मैंने लिखी थी, तो
0: अच्छा,
1: वो मेरे को अभी भी याद आती है कई बार।
0: ये
1: जी
0: बताइए,
1: जी
0: जैसे ये लेखन की जो पूरी प्रक्रिया है, इसके लिए अलग-अलग लेखकों के अलग-अलग विचार होते हैं। आपके
1: जी
0: लिए क्या है ये, आत्म अभिव्यक्ति है, आत्मचेतना है, यह समाज से संवाद कायम करने का कोई माध्यम है? क्या क्या इसको क्या विचार सोचती हैं आप?
1: जी लेखन, जैसे लेखन आत्म अभिव्यक्ति तो ऑब्वियसली होता ही है कि जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसको हम लिख देते हैं, और आत्म विकास भी होता है इससे, क्योंकि जैसे जैसे हम लिखते हैं तो जीवन के रहस्यों की कई परतें होती हैं, मतलब आपकी कलम चलती है तो आप जीवन को और गहराई से जान पाते हैं, तो ये भी होता है उसमें। और संवाद का भी माध्यम है, क्योंकि अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो संवाद के तौर पे तो वो जरूर लोगों तक पहुंचता है और आप अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, संवाद कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तीनों ही चीजें साथ में
0: बिल्कुल
1: चलती
0: सही, बिल्कुल सही बात। तो चलिए, इसी बात पे रुक के, हम आपने इतनी अच्छी बात बताई कि और आत्म चिकित्सा भी है, एक तरह से सेल्फ हीलिंग भी है। जब आप लिखते हैं तो आपको बिल्कुल अपने आप एक तरह का सेल्फ हीलिंग भी है, जब आप लेखन प्रक्रिया से गुजरते हैं तो अपने आप जो अंदर टूट फूट होती है वो भी ठीक हो जाती है। बिल्कुल
1: बिल्कुल सेल्फ हीलिंग है, क्योंकि अगर आप देखें तो हीलिंग मेथड्स में आपको यही कहा जाता है कि आप जिस भी दिल में है वो पन्ने पे उतार दीजिए, एटलीस्ट आप
0: बिल्कुल
1: हल्के हो जाएंगे। तो लेखन आत्म चिकित्सा भी करता है, बिल्कुल सही।
0: बिल्कुल सही। तो चलिए इसी बात पे रुक के हम एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और फिर इस बातचीत को जारी रखते हैं।
1: जी।

0: के
1: हाँ, तो वेलकम बैक अनिता जी। अब
2: जी,
1: आप रह रही हैं मुंबई जैसे बड़े मेट्रो के अंदर, तो ये जो महानगर का जीवन आप इतने वर्षों से गुजार रही हैं, इसको आप किस नजर से देखती हैं, और क्या आपको यहाँ के रिश्तों में, यहाँ के वातावरण में और यहाँ के जीवन में कुछ अलग दिखाई देता है बाकी जो आम शहर है उनसे? क्या क्या विचार है इतने साल रहने के बाद आप
2: जी
1: कैसे?
2: जी बाकी महानगरों में तो मैं रही नहीं, मुंबई के अलावा, तो मैं मुंबई की ही बात करूंगी। तो मुंबई महानगर, एक्चुअली मुंबई स्वयं में एक व्यक्तित्व है। एक्चुअली मुंबई स्वयं में एक व्यक्तित्व है। मुंबई जो महानगर है वो बहुत, मतलब यहाँ के लोग बहुत जाबाज हैं। अगर डे टू डे लाइफ में हम लोगों बातचीत नहीं कर पाते हैं क्योंकि सब व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भी जरूरत होती है सब एक दूसरे के काम आते हैं। और वो 26 जुलाई का जो फ्लड हुआ था उसमें मुंबई की जो दिलेरी की कहानियां, तो वो तो आप सभी को मालूम है किस तरह से मुंबई, इसके अलावा जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे सीरीज वाले ट्रेन में, तब भी उसके अगले दिन भी सुबह मुंबई की जो ये जो स्पिरिट है उसके अगले दिन भी चल रहने की, मुंबई खुला था, पूरे पूरे स्कूलें खुली थी, सब कुछ खुला था, कुछ बंद नहीं हुआ था। तो ये मुंबई की जो स्पिरिट है वो अपने आप में बहुत, मतलब आपको प्रेरणा देती है।
1: ये बहुत सही बात कह रही है। मुझे याद है कि वो फ्लड की जो बात मुझे भी याद आ गई, 2005 में एक फ्लड आया था, मुझे याद है, बहुत बहुत बहुत बड़ा फ्लड था। तब भी लोग एकदम दूसरे दिन तैयार हो गए थे, काम पे आने लग गए थे, बहुत बड़ी बात। तो अभी बताइए, जैसे आजकल के रिश्तों के अंदर जो दूरियां बढ़ती जा रही है, ब्रेकअप्स भी बहुत हो रहे हैं, टूटते विवाह भी हो रहे हैं, तो ये क्या है, ये मजबूरी है या भावनाओं की कमी है? इस विषय में आप, आपका लेखन, लेखक मन क्या सोचता है, किस तरह देखती है आप इस सब?
2: ये आजकल के रिश्तों में जो बिखराव है उसका मेन जो कारण मुझे समझ में आता है वो ये है कि एडजस्टमेंट नहीं है। लोग बाग एक दूसरे के लिए जो कहते हैं ना, पहले हम लोग थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करते थे, एडजस्ट भी करते थे, अंडरस्टैंडिंग भी होती थी। अभी क्योंकि अभी दोनों वर्किंग है, मेल फीमेल, और दोनों के वर्कलोड भी है।

0: एक वो होता है कि महानगरीय जीवन है, आपको दोनों को काम करना पड़ेगा, तो वो भी एक प्रेशर रहता है उसमें। फिर वो प्रेशर आपके घर तक पहुंचता है, वर्कलोड इतना होता है कि वो बहुत सारी चीजें अब सामान्य होने लगी हैं, वो भी है। तो अंडरस्टैंडिंग के साथ दोनों को मिलजुल के ही गृहस्थी भी संभालनी पड़ेगी, बाहर भी संभालना पड़ेगा, तभी रिश्ते जो है वो सुधरे हुए रहेंगे। इस तरह से मैं तो जैसे
1: हाँ नहीं सही
0: लेख
1: सही बात है, सही बात है।
0: नहीं,
1: तो
0: लेखक
1: आप,
0: तो
1: हाँ
0: जी।
1: जी, तो अब जैसे महिलाओं का जो रोल है वो भी बहुत बदल गया है। देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आ गई है, फाइनेंशियल अर्निंग भी करने लग गई है, और ये जो लिबर्टी महिलाओं को जो स्वतंत्रता मिल रही है, इसको आप कैसे सोचती है? क्या ये एक परिवार के लिए ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या क्या विचार है आपके?
0: तो एक्चुअली आलोक जी, ये जो टॉपिक है ना वो बहुत ही मतलब क्या
1: विचार,
0: इस
1: आपका
0: तरह का
1: विषद है,
0: टॉपिक है।
1: विषद है, विषद है
0: हाँ, और
1: आपका।
0: देखिए, जिसको हम स्त्री की स्वतंत्रता कहते हैं, मैं एक्चुअली उसको स्वतंत्रता नहीं मानती हूँ, मैं स्त्री की मौलिकता की पक्षधर हूँ। कि स्त्री अपने मौलिक स्वभाव में रह के कुछ कर रही है ना, वो उसकी स्वतंत्रता है, ना कि वो पुरुषों की तरह जो कर रही है वो उसकी स्वतंत्रता है।
1: बहुत
0: तो
1: बढ़िया बात कही, बहुत बढ़िया।
0: हाँ, तो ये चीज इसलिए मुझे, जब हम कहते हैं कि हमने स्त्री को स्वतंत्र बना दिया, तो मुझे लगता है नहीं, हमने उसे स्वतंत्र नहीं बना दिया, हमने उसको एक और ढांचे में उसको फिट कर दिया। मैं मानती हूँ कि आज के जमाने में ये मजबूरी है कि आपको दोनों को वर्किंग होना पड़ेगा, लेकिन अगर जरूरत नहीं है तो करियर के पीछे परिवार छोड़ देना, ये और बहुत सारी चीजें हैं वो, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से डिफाइन करूंगी। और दूसरा, मेरी जैसी महिलाएं जो कि अभी तक परिवार को देख रही थी, अब जो समय मिला है तो उनको मैं एक ऐसी टर्म के नाम से संबोधित करती हूँ, एंडेंजर्ड वुमेन, जो कि
1: अच्छा
0: विलुप्त
1: अच्छा
0: तो हो रही है अब,
1: ओके
0: क्योंकि गृहिणी नाम जो है लुप्त तो होता जा रहा है, क्योंकि अब
1: ओके
0: यहाँ पर कोई गृहिणी रही नहीं है, धीरे धीरे सब वर्किंग होते जा रहे हैं। तो ये इस तरह की बातें
1: नहीं
0: हैं
1: सही बात है, सही बात है।
0: जी।
1: तो चलिए, ये जो महिलाओं का बदलता रूप है, इस पे रुक के हम एक गाना सुन लेते हैं। बड़े अच्छे अच्छे गाने हैं इसके बारे में, तो
0: जी
1: फिर आगे बातचीत को, आप अपनी आखिरी पायदान पर आ गए हैं, बस एक दो सवाल और फिर हमें बहुत ही मजा आ रहा है आपके साथ बात करते में। तो श्रोताओं, देखिए कितनी अच्छी बातें बता रही हैं। एक गृहिणी के एंगल से अनिता जी एक स्त्री के रोल को कितनी अच्छी तरह से डिफाइन कर रही है। तो आप ये बताइए, कथक और मधुबनी कला जैसी रुचियां आपकी कविताओं को किस प्रकार एनरिच करती हैं या समृद्ध करती हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
0: जी। तो आलोक जी, मैं मतलब ये मानती हूँ कि कोई भी कला हो वो आपको समृद्ध करती है। अगर आप एक कलाकार हैं तो आप सृजन करेंगे, आप अगर लेखक हैं तो नई कविताओं को सृजन करेंगे तो वो आपको समृद्ध करेगा। अगर आप एक डांसर हैं तो आप कुछ नया उसमें मतलब नए आप क्रिएशन करेंगे, या आप एक पेंटर हैं, तो ये जितनी भी कलाएं हैं जीवन में वो आपको समृद्ध बनाती हैं। और कविताओं को समृद्ध करने से मैं इसको इस तरह से समझती हूँ कि जैसे कथक है या लेखन है या पेंटिंग है, ये सब आप एक तरह मेडिटेशन है। अगर आपका ध्यान भटेगा तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अगर आप लिखते हैं तो वो आपको एक माहौल चाहिए अच्छे से लिखने के लिए। अगर आप कथक करें, एक भी स्टेप आपने गलत किया तो आपका पूरा गलत हो जाता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ये आपके कंसंट्रेशन को, आपके मेडिटेशन को, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसलिए मैं इन सबको आपस में इस तरह से मैं जोड़ लेती हूँ, ताकि वो मेरे पर्सनल उसमें विकास में भागीदारी दें।
1: ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। म्यूजिक है या डांस है, कोई भी आर्ट फॉर्म है, पेंटिंग भी अगर आप कर दें तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है उस पर। बहुत बहुत खूबसूरत बात कही अनिता जी आपने कि कोई भी आर्ट फॉर्म है उसमें आप जब तक बिल्कुल फोकस नहीं करोगे तब तक वो आपका आपकी वो कृति अच्छी बनेगी नहीं। बहुत बढ़िया बात कही आप।
0: और तो आप इसके भी सॉरी मैं आपको
1: बताइए।
0: मतलब कलाकार में एक जो है ना एक प्यास होती है और वो हर बार नया कुछ करना चाहता है और ये प्यास ही जो है वो उसका जीवन आगे चलाती है। तो मतलब हम अध्यात्म से भी इसको जोड़ के देख सकते हैं कला को, क्योंकि ईश्वर स्वयं कलाकार है, वो खुद दुनिया का सृजन करते हैं। तो हम भी अगर कुछ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन तक हम उनके और नजदीक जा पा रहे हैं, तो यही मेरा उद्देश्य है।
1: बिल्कुल। तो अब बताइए जीवन के इस फेज में, इस पड़ाव पे कोई अधूरा सपना, कोई आगे आने वाले सपने क्या सोचती है, क्या करना अभी जीवन में बाकी है,
0: जी,
1: क्या
0: जी।
1: क्या सोच रही हैं आप?
0: तो अधूरे सपने तो नहीं कहूंगी मैं, मेरे पास एक बकेट है, एक लिस्ट है, तो उसमें कुछ कुछ मैं इजाफा करती रहती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं सीखती रहती हूँ और इसी तरह से आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो मैं चार लाइंस आपको सुनाना चाहूंगी।
1: हाँ सुनाइए सुनाइए प्लीज।
0: उम्र दराज हो चली है हसरतें, उम्र दराज हो चली है हसरतें, अब इन्हें किताब की मानिंद पढ़ती हूँ। जिंदगी एक फलसफा मोहब्बत का, कभी रजती हूँ कभी संवरती हूँ।
1: बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। तो
0: धन्यवाद।
1: बहुत बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उम्र दराज हो चुकी है हसरतें, क्या आपने बहुत बढ़िया लिखा। तो अंत में उन महिलाओं के लिए क्या आप कोई मैसेज देना चाहेंगे, जो आपने तो अपनी राह तलाश ली, जो अभी भी पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच अपने सपने को कहीं दबा देते हैं, कुछ इनके
0: जी,
1: लिए
0: जी,
1: कुछ कहना चाहेंगी?
0: जी जी बिल्कुल, मैं उन महिलाओं को यही कहना चाहूंगी, जैसे मेरी बहुत सारी मेरे जो घर में आसपास फ्रेंड्स बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें भी ये करना है, हमें ये पसंद है ये करना है, पर क्या करें हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम तो मतलब घर में ये वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कहीं ना कहीं रहती ही है। तो ये मदन मोहन दानिश साहब की ये दो पंक्तियां हैं वो मुझे याद आ रही है कि दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, दुनिया तुम्हें फूल तो नहीं देगी, मिले हैं कांटे तो कांटों को ही गुलाब करो, जुगनुओं को समेट लो मुट्ठियों में और रात आए तो आफताब करो। तो मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो
1: रात को
0: मतलब,
1: जगमगा दो सर, बहुत सुंदर।
0: जी जी तो इस तरह से मतलब आपको उन्हीं में से कुछ करके निकलना पड़ेगा, तभी आप अपना कुछ अपने लिए वक्त निकाल पाएंगी और अपना ध्यान रख पाएंगी। और ये वक्त की मांग भी है, क्योंकि अभी सब परिवार आप देख रहे हैं कि बच्चे दूसरे शहरों में हैं, महिलाएं अकेली घर में रह गई हैं, और अब इतना शारीरिक श्रम नहीं उन्हें करना पड़ता कि वो पूरे दिन गृहस्थी में लगी रहें, तो वो बचे हुए समय का क्या करेंगी, अच्छे किसी चीज से जुड़ी रहें तो उन्हीं के लिए बेहतर है।
1: तो श्रोताओं, आज की इस आत्मीय बातचीत में हमने जाना कि किस तरह जीवन की जिम्मेदारियों के बीच में भी सपनों को जिया जा सकता है, और कैसे संवेदनाएं जब शब्दों का रूप लेती हैं तो कविता बन जाती है। अनिता विजयवर्गीय जी ने यह साबित किया कि पहचान केवल मंचों और पुरस्कारों से नहीं बनती, बल्कि अनुभवों, संवेदनाओं और सच्चे भावों से बनती है। उनकी यात्रा हर उस स्त्री को प्रेरणा देती है जो अपने भीतर किसी अधूरे सपने को अब भी संजोए बैठी है। अनिता जी, हमारे साथ अपने जीवन के इतने सुंदर अनुभव साझा करने के लिए आपका धन्यवाद, और आपने इतनी अच्छी कविताएं सुनाई उनके लिए भी हमारी तरफ से विशेष धन्यवाद। हम कामना करते हैं कि आपकी कलम यूं ही जीवन के रंगों को शब्द देती रहे और आपकी आगामी पुस्तक करछी से कलम तक पाठकों के दिल तक पहुंचे। धन्यवाद।
0: धन्यवाद आलोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मेरी बकेट लिस्ट में एक ये ख्वाब रखा था कि मुझे रेडियो पर अपनी आवाज सुननी है, और आज आपने उस ख्वाब को पूरा कर दिया, तो मैं आपका बहुत बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, और श्रोताओं को भी बहुत बहुत मेरा हार्दिक नमस्कार और प्रेम पहुंचे। धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सुनते रहिए जिंदगी के रंग, गीतों के संग। मैं आलोक कुमार आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार
2: दोस्तों, जिंदगी के रंग गीतों के संग के आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। कल एक और नए सज्जन और महिला हमारे साथ हाजिर होंगे आपके लिए मजेदार बातें और गीत लेकर। सुनना ना भूलिएगा।

दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत के लिए जोशो खरोश से भरे हुए मैं और आप ये दिन शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। आइए, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में भी हम जानेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिया और दूसरों के लिए उन्होंने मिसालें कायम की। इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हैं और ऐसे बहुत सारे गीत सुनते हैं जो हमें बस खुश कर देंगे, पूरे दिन के लिए तैयार कर देंगे, जोश से भर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को जोशो खरोश के साथ।

दोस्तों, डर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। बड़ी मजेदार वाली बात है, आपका डर महज एक भाव के अलावा कुछ भी नहीं होता, जो आपकी कल्पना से और बढ़ता जाता है। डर को आप खुद चुनते हैं, लेकिन सफल लोग अपने इस डर को कभी खुद पर हावी नहीं होने देते। वो अपने डर को अपनी सफलता की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो हर उस चीज से लड़ते हैं जिससे वो डरते हैं और उस पर जीत हासिल करते हैं। वो खुद को विश्वास दिलाते हैं कि वो अपने डर से लड़ सकते हैं। बस आपको भी अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं हूं आपका दोस्त समीर और आप हैं जाबुआ के अपने रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 एफएम पर, और आप सुन रहे हैं प्रेरणादायक बातों के साथ प्रेरणादायक गीत। हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, समय जरूर बदल जाता है, और तब आप जीतते ही जीतते हैं दोस्तों।

आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ, हमसे ना छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ।

अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया।

दोस्तों, रेडियो सुनना इतना जरूरी क्यों है, आइयो बताता हूं। प्रकृति ने हमें बनाया ही ऐसा है। जब हम कुछ सुनते हैं तो उसकी छवि, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाते हैं। तो रेडियो सुनने से हम तमाम क्रिएटिविटी को, अपनी रचनात्मकता को मजबूत करते हैं, अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाते हैं, छवियां बनाते हैं और

0: चलो दोस्तों, अब हो गया है हमारे हंसने का समय, तो चलते हैं आरजे समीर के पास।
1: अगर आपको सभी महिलाओं से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर एक ही महिला से डर लगेगा और बाकी सारी अच्छी लगने लगेंगी।
2: तो दोस्तों, इसी तरह हंसते रहिए अपने दोस्त आरजे समीर के साथ। आप हैं झाबुआ की अपनी आवाज रेडियो टंटिया भील 90.8 एफएम के साथ। खुद पर विश्वास करना एक जादू जैसा होता है दोस्तों। अगर ये विश्वास आप कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं।

संस्कृत बोलिए। शीर्षक सुनकर आप कहेंगे कि हम सही सही हिंदी ही नहीं बोल पाते, संस्कृत कहां से बोलेंगे। तो मैं कहूंगा कि आप पहले से ही संस्कृत बोल रहे हैं, जाने अनजाने हम सब संस्कृत बोल और लिख रहे हैं। विश्वास नहीं होता, चलिए पड़ताल करते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम सैकड़ों संस्कृत शब्दों को उनके शुद्ध रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम यानी जस का तस, जैसे अग्नि, रात्रि, पत्र, स्वर्ण, धर्म, युवा। लेकिन हमारा संस्कृत ज्ञान यहीं तक सीमित नहीं है, हम छोटे छोटे वाक्य भी बोलते हैं। गिनते जाइए। अति सर्वत्र वर्जेत, अहिंसा परमो धर्मः, अहम् ब्रह्मास्मि, न भूतो न भविष्यति, न दैन्यम न पलायनम, यथा राजा तथा प्रजा, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते, सर्वे भवन्तु सुखिनः, चरैवेति चरैवेति, जीवेत शरदाः शतम्, वसुधैव कुटुंबकम्, विनाश काले विपरीत बुद्धि, अतिथि देवो भव, सिंहावलोकन, विद्या ददाति विनयम्, यत्र तत्र सर्वत्र, प्रथम ग्रासे मक्षिका पाता, पहले ही कौर में मक्खी यानी शुरुआत में ही गड़बड़। संघे शक्ति कलो युगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। कूप मंडूक, मातृ देवो भवा, माता को भगवान मानने वाले बनो। किमाश्चर्यम, आश्चर्य कैसा, वरदान देते हुए एवं अस्तु, ऐसा ही हो, और तथास्तु, वैसा ही हो। सूची बहुत लंबी है, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये उक्तियां कम शब्दों में ही बहुत कुछ कह देती हैं। इन्हें लेखन और बोलचाल में सम्मिलित करने से बातों का वजन और रोचकता बढ़ाई जा सकती है। तो संस्कृत बोलिए।

बहुत पहले मैंने एक कहानी पढ़ी थी। अपनी 4 वर्षीय बहन के साथ बाजार में घूमते रहे 6 वर्ष के एक लड़के ने पाया कि बहन पीछे छूट गई है, इसलिए वह रुका और पीछे देखने लगा। छोटी बहन खिलौनों की एक दुकान के सामने खड़ी होकर एक गुड़िया को देख रही थी। लड़के ने पीछे जाकर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? बहन ने गुड़िया की तरफ इशारा किया। किसी जिम्मेदार भाई की तरह उसने बहन का हाथ पकड़ा और वह गुड़िया उसे देकर खुश कर दिया। दुकानदार सब कुछ देख रहा था और इस छोटे से लड़के का परिपक्व व्यवहार उसे बहुत अच्छा लगा। फिर लड़के ने दुकानदार के पास आकर पूछा, गुड़िया की कीमत कितनी है सर? जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देख चुका समझदार दुकानदार बच्चे से पूछ बैठा कि वह कितनी कीमत चुका सकता है। बच्चा अपनी जेब से सारी सीपियां निकालता है जो उसने समुद्र तट से इकट्ठी की थी और दुकानदार को दे देता है। दुकानदार उन्हें लेकर इस तरह गिनता है जैसे वह पैसे गिन रहा हो। जब वह लड़के की ओर देखता है तो लड़का चिंतित होकर पूछता है, क्या ये कम है? दुकानदार ने कहा, नहीं नहीं, यह ज्यादा है। इतना कहकर वह केवल 4 सीपी रखकर शेष वापस लौटा देता है। लड़का बहुत खुश होकर उन सीपियों को वापस जेब में रख लेता है और बहन का हाथ पकड़कर चला जाता है। यह सब देखकर दुकानदार का सहायक बहुत चकित हुआ। उसने अपने मालिक से पूछा, सर आपने इतनी महंगी गुड़िया सिर्फ 4 सीपी के बदले में दे दी? एक मुस्कान के साथ दुकानदार ने कहा, हमारे लिए ये सिर्फ सीपियां हैं, लेकिन उस लड़के के लिए ये बहुत कीमती हैं। इस उम्र में तो उसे पता ही नहीं कि पैसा होता क्या है, लेकिन जब वह बड़ा होगा तो निश्चित ही तौर पर उसे मालूम पड़ जाएगा। जब उसे याद आएगा कि उसने पैसे के बजाय सीपियां देकर गुड़िया खरीदी थी, तो वह मुझे याद करेगा और सोचेगा कि यह दुनिया अच्छे लोगों से भरी हुई है। इससे उसे सकारात्मक रवैया विकसित करने में मदद मिलेगी। बदले में वह भी दूसरों की भलाइयों का काम करने के लिए प्रेरित होगा।

दशक पहले 1985 वो भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ। सभी ने उस पर बेहद भरोसा किया और उसने भी देश की सरहदों की रक्षा में अपना पूरा जीवन गुजार दिया। चील की तरह आकाश से जमीन पर अपने शिकार पर झपटने के लिए आतुर इस योद्धा को कई नामों से पुकारा गया, फ्लॉगर, एस अटैकर, और 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी बहादुरी साबित करने के बाद उसके साथी रणबांकुरों ने उसे नया नाम दिया, बहादुर। 1700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 4000 किलो गोला बारूद उठाने की क्षमता, ये है इंडियन एयरफोर्स का MiG-27 लड़ाकू विमान। रशिया में इसे डिजाइन किया गया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसे भारत में बनाया। पर 3 दशक किसी भी योद्धा के लिए लंबा समय होता है। 27 दिसंबर 2019 को इंडियन एयरफोर्स के 2 स्कॉर्पियन 29 स्क्वाड्रन्स ने अपने फ्लॉगर को, एस अटैकर को, अपने प्यारे बहादुर को भीगी आंखों से विदाई दी। बहादुर देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी नई तकनीक से लैस नए जवान लड़ाकुओं को सौंपकर इतिहास के पन्नों में चला गया। हमारा देश बहादुर को हमेशा हमेशा शुक्रिया कहेगा और याद रखेगा।

दोस्तों, रेडियो सुनने का एक और फायदा बताता हूं। रेडियो अच्छे सकारात्मक गीत, संगीत और विचारों के साथ आपके दिमाग की, आपके मस्तिष्क की व्यायाम शाला है। आप रेडियो बिना उसकी तरफ देखे हुए सुन सकते हैं। अपने काम करते रहिए और रेडियो सुनते रहिए। है ना मजेदार रेडियो के साथ।

तो दोस्तों, इस जोश को, इस उत्साह को, इस खुशी को बनाए रखिएगा पूरे दिन। कल सुबह हम लोग फिर मुलाकात करेंगे एक नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ जिंदगी को जीने के लिए। मैं आपका दोस्त हूं समीर, कल मिलते हैं।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

दोस्तों, आज के कलाकार हैं देव आनंद जी। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों को अपने हुनर, अदाकारी और रोमानियत का जादू बिखेरने वाले सदा बहार अभिनेता देवानंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। देवानंद का असली नाम धर्मदेव पिशोरीमल आनंद था। जी हाँ, है ना मजेदार बात। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो बॉम्बे पहुंचे, तब उनके पास सिर्फ 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। चलिए सुनते हैं उनका ये नगमा।

देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के समीप ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके पास तीन अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। देवानंद को पहला ब्रेक 1946 में प्रभात स्टूडियो की एक फिल्म हम एक हैं उसमें मिला। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत।

हालांकि फिल्म फ्लॉप होने से दर्शकों के बीच वो अपनी पहचान नहीं बना सके। इस फिल्म के निर्माण के दौरान ही प्रभात स्टूडियो में उनकी मुलाकात गुरुदत्त से हुई, जो उस समय फिल्मों में कोरियोग्राफर के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे। चलिए दोस्तों, देवानंद जी की फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

देवानंद को पहली नौकरी मिलिट्री सेंसर ऑफिस में एक लिपिक के तौर पर मिल गई, जहां उन्हें सैनिकों द्वारा लिखी गई चिट्ठियों को उनके परिवार के लोगों को पढ़कर सुनाना पड़ता था।

फिर साल 1948 में जिद्दी उनकी पहली फिल्म थी जो हिट हुई। सन 1949 में उन्होंने नवकेतन बैनर्स नाम से अपना प्रोडक्शन हाउस एस्टैब्लिश किया और वर्ष 1950 में अफसर नाम की फिल्म का निर्माण किया, जिसका निर्देशन उनके बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था।

1951 में उनके बैनर की अगली फिल्म बाजी का निर्देशन उनके दोस्त गुरुदत्त ने किया, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। आइए दोस्तों सुनते हैं देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

दिल का पर्दा खोल दो, ओ जिया ओ जिया जिया कुछ बोल दो, अरे ओ

ऐसा तुम चलते हो गहरे से बयां हो जाता है, हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है। जब दिल पे चुनिया चलती है, जब चैन से कोई सोता है, जिया ओ जिया ओ जिया।

0: जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाक तुम्हें कोई खोता है, ओ जिया ओ जिया ओ जिया कुछ बोल दो।
1: दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि देवानंद साहब ने कुछ भूमिकाएं ऐसी भी निभाई जो कुछ नकारात्मक शेड लिए हुए थीं। जब राज कपूर की आवारा प्रदर्शित हुई, तभी देवानंद की राही और आंधियां भी प्रदर्शित हुई थी। इसके बाद आई टैक्सी ड्राइवर, जो हिट साबित हुई। देवानंद साहब की फिल्म का एक और गीत।

1948 के साल में जब देवानंद 25 साल के थे, उनकी दो फिल्में और रिलीज हुईं, फणी मजूमदार की हम भी इंसान हैं और गिरीश त्रिवेदी की विद्या। पहली फिल्म की नायिका रमोला थी, जो 1951 में निर्देशक विजय महात्रे की फिल्म स्टेज में उनकी नायिका बनी। इसमें विद्या फिल्म इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस फिल्म में सुरैया पहली बार देवानंद की नायिका बनी थी। चलिए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

पांडेवरन जी ने सुरैया के साथ बहुत सारी फिल्में की। एक फिल्म थी जिसका नाम था जीत, जो 1949 में पर्दे पर आई थी। ये फिल्म बहुत हिट गई। लीजिए दोस्तों, देवानंद की फिल्म का एक और गीत।

कटारी।

सिनेमा जगत में सदाबहार माने जाने वाले देवानंद साहब ने कभी राजनीति में भी कदम रखा था। मौका था देश में इमरजेंसी का। जून 1975 में उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उनका विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनाव की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया।

0: एक दिल एक जान है हम तुम, जमाना क्या कहेगा।
1: हाँ हाँ हाँ छोड़ दो अचल, जमाना क्या कहेगा।
0: हाँ हाँ हाँ इन अदाओं का जमाना भी है दीवाना, दीवाना क्या कहेगा।
1: जमाना क्या कहेगा,
0: दीवाना क्या कहेगा।
2: दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि देवरन साहब इतने सुंदर थे कि उनको सफेद कलर का सूट यानी कि कोट और पैंट पहनना मना था, क्योंकि महिलाएं उनको इस रूप में देखकर आत्महत्या करने पर उतारू हो जाती थीं। इस बात की सच्चाई को साबित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तो तय है उनके लटकते छटकते अंदाज बेहद खूबसूरत थे। लीजिए उनकी फिल्म का एक और गीत सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे समीर और मैं लाया हूं प्रोग्राम आज के कलाकार। आज के प्रोग्राम में कौन कलाकार हैं? बस अभी पता चलता है।

बिस्वजीत चटर्जी, जो सिंपल बिस्वजीत के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म 14 दिसंबर 1936 में हुआ था। ये हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सिंगर और पॉलिटिशियन भी बने। चलिए शुरुआत करते हैं इनकी फिल्म के इस गीत से।

बिस्वजीत कोलकाता में पले बढ़े और इनके एक्टिंग की सफर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से हुई। माया, मृग और दुई भाई जैसी सफल बंगाली फिल्मों में एक्टिंग करने के बाद बिस्वजीत ने हिंदी फिल्मों का रुख किया। चलिए इनकी फिल्म का ये गीत सुनते हैं।

सुरजीत कोलकाता से मुंबई आए। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाली फिल्मों की तरह इस सफल अभिनेता को सर आंखों पर लिया। परिणाम स्वरूप बेहद कम समय में विश्वजीत की झोली हिंदी फिल्मों से भर गई। चलिए उनकी फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

1962 में बिस्वजीत चैटर्जी की पहली फिल्म 20 साल बाद प्रदर्शित हुई, जिसने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। देखते ही देखते बिस्वजीत हिंदी फिल्मों के तेजी से उभरते हुए अभिनेता बन गए। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत।

विश्वजीत के चाहने वालों ने उन्हें किंग ऑफ रोमांस की उपाधि दी। है ना मजेदार बात। विश्वजीत पर फिल्माए गए गीतों की लोकप्रियता ने उनके फिल्मी करियर में 4 चांद लगा दिए। चलिए हो जाए उनका ये खूबसूरत सा गीत

बिस्वजीत चटर्जी ने कई यादगार फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई, जिनमें मेरे सनम, शहनाई, अप्रैल फूल, दो कलियां और शरारत खास हैं। हो जाए उनकी फिल्म का ये गीत। ये

विश्वजीत को उस समय के लगभग सभी हीरोइनों के साथ एक्टिंग करने का मौका मिला, खास करके आशा पारिख, मुमताज, माला सिन्हा और राजश्री के साथ उनकी रोमांटिक जोड़ी हमेशा बहुत पसंद की गई। तो सुनिए उनकी फिल्म का ये गीत।

हिंदी फिल्मों में मिली सफलता के बाद भी बिस्वजीत ने बंगाली फिल्मों में अभिनय करना नहीं छोड़ा। वो कोलकाता आते जाते रहते थे और चुनिंदा बंगाली फिल्मों में अभिनय करते रहे, जिनमें सुपरहिट फिल्म चौरंगी उल्लेखनीय है। चलिए उनकी फिल्म का ये गीत।

अभिनय के बाद विश्वजीत ने फिल्म डायरेक्शन की तरफ भी कदम बढ़ाए। 1975 में फिल्म बनी कहते हैं मुझको राजा, जिसका निर्माण और निर्देशन दोनों इन्होंने ही किया। इस फिल्म में थे धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा बिजनेस किया।

विश्वजीत की अनगिनत फिल्में आईं। उन्होंने 2002 तक फिल्मों में काम किया। चलिए विश्वजीत की इस फिल्म का एक और नगमा सुनते हैं।

तो दोस्तों आज के कलाकार प्रोग्राम में इतना ही। मैं आपका दोस्त आरजे समीर बहुत जल्द वापस हाजिर होऊंगा आपके इस पसंदीदा प्रोग्राम के साथ। सुनना ना भूलिएगा आज के कलाकार।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम जहां शब्दों में एहसास है और हर शेर में दिल की बात। आज की इस महफिल में पेश है कुछ खूबसूरत गजलें जो आपके दिल को छू जाएंगी। आपके साथ हैं आपकी ही मेजबान, आपकी ही रेडियो दोस्त आरती जी। तो आइए शुरू करते हैं गजलों और सुरों का ये प्यारा सफर।
1: नमस्कार, आदाब, तस्लीम और बेहद खास सलाम मेरे अजीज दोस्तों। 90.8 FM की मखमली तरंगों पर SN रेडियोस और रेडियो टांटिया भील के इस खूबसूरत आंगन में मैं हूं आप सभी की अपनी दोस्त आरती रॉय। लो आ गई हूं मैं एक बार फिर से जज्बातों की एक नई सुरीली महफिल और गुजरे हुए जमाने की हसीन यादों का एक मुकम्मल कारवां समेट कर आप सभी के चहेते प्रोग्राम अल्फाज से एहसास तक में। दोस्तों, जिंदगी की इस आपाधापी में जब कभी दिल सुकून की तलाश करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सुरीले नगमों और रूहानी लफ्जों की पनाह में ही मिलता है। आज की हमारी ये मुलाकात भी कुछ ऐसी ही होने वाली है जहां हर लफ्ज सीधे आपके दिल को छुएगा और हर सुर आपकी रूह में उतर जाएगा। बस अपने ख्यालों को खुला छोड़ दीजिए, गुजरे हुए खूबसूरत लम्हों को जहन में ताजा कर लीजिए और पूरी शिद्दत से तैयार हो जाइए सुरों के इस बेहद अछूते और भीगे हुए सफर में मेरे साथ चलने के लिए। तो बिना देर किए आइए आगाज करते हैं आज की इस हसीन बज़्म का एक खूबसूरत शेर के साथ। मसरूफ रहने का अंदाज, पेश खिदमत है। मसरूफ रहने का अंदाज तुम्हें तन्हा ना कर देगा ले, रिश्ते फुर्सत के नहीं, रिश्ते फुर्सत के नहीं, तवज्जो के मोहताज होते हैं। दोस्तों, आज के इस नए कारवां की पहली कड़ी का आगाज हम सरहद पार की एक ऐसी अजीम फनकारा से कर रहे हैं जिनकी आवाज में पंजाब की मिट्टी का सौंधापन भी है और शास्त्रीय संगीत के कमाल की महारत भी। जी दोस्तों, ये बेहद नामवर और हर दिल अजीज मोहतरमा हैं तसव्वुर खानम जी। 70 और 80 की दहाई में जब उन्होंने रेडियो और टेलीविजन की दुनिया में कदम रखा तो उनकी मखमली और पुरकशिश गायकी ने हर दिल को अपना असीर यानी कैदी बना लिया। वो सिर्फ गजलें नहीं गाती थी बल्कि उनके गाए हुए गीत और तराने आज भी उतने ही तरोताजा लगते हैं। आज मैं आपके लिए उनकी एक ऐसी नायाब पेशकश लेकर आई हूँ जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि ये असल में साल 1974 की एक मशहूर पाकिस्तानी फिल्म ईमानदार के लिए रिकॉर्ड की गई थी। इस शाहकार के को मशहूर शायर तस्लीम फाजली साहब ने अपने खूने दिल से लिखा था और इसे अपनी लाजवाब धुनों से सजाया था पाकिस्तानी मौसिकार नौशाद साहब। गौर फरमाइएगा, नौशाद नहीं, नौशाद साहब ने। नौशाद साहब का असल नाम शौकत अली हाशमी था और उन्होंने इंडिया में भी कुछ फिल्मों में संगीत दिया था लेकिन बाद में वो भी पाकिस्तान चले गए और वहां नौशाद नाम से बेहद मशहूर हुए। इस गजल को हमारी हिंदुस्तानी फिल्मों में भी दोहराया गया लेकिन जो रूहानी कशिश तसव्वुर खानम साहिबा की असल रिकॉर्डिंग में है वो सीधे रूह के तारों को छेड़ देती है। इस नज़्म का एक एक मिसरा वफा की उस इंतहा को बयां करता है जहां इंसान अपनी मोहब्बत के आगे पूरी कायनात को ठुकराने का हौसला रखता है। तो आइए पूरी शिद्दत के साथ डूब जाते हैं वफा के इस समंदर में। तुम्हें दिल में रखेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में बसा लेंगे। कयामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता

जोड़ लेंगे हम। माता पेशे की किस्मत है, न हो तुम जिसमें शामिल, न हो तुम जिसमें शामिल, वो बहारें हम नहीं लेंगे, वो बहारें हम नहीं लेंगे। तुम्हारे नाम पे ये दिल तो क्या है, जान दे देंगे। नजर जिसमें ना आए तुम, नजर जिसमें ना आए तुम, वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम।

दोस्तों, वफा के इस समंदर से आगे बढ़ते हुए अब हमारी सुरीली महफिल एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंची है कि जब मोहब्बत में सामने वाले की बेरुखी और उसकी जबां का ये सन्नाटा रूह को तकलीफ देने लगे तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। ऐसी ही एक दाखली यानी इंटरनल कश्मकश को सुरों में पिरोया है हमारे संगे बुनियाद यानी गजल गायक हरिहरन साहब ने। साल 2001 में उनकी शाहकार एल्बम काश का एक ऐसा नगमा जो आशिकी के उस मकाम को बयां करता है जहां तन्हाई सर चढ़कर बोलने लगती है। मशहूर शायर इब्राहिम साहब के लिखे इन लफ्जों को जब हरिहरन साहब ने अपने मखमली और गमक से भरी शास्त्रीय गायकी से सरोबार किया तो ये खामोशी भी साज बन गई। इस नज्म के बीच की ये सतरें जब सीधे आपके कानों से टकराएंगी तो आप भी इस शिद्दत को महसूस किए बिना रह नहीं पाएंगे। तो आइए अपने दिल को थोड़ा थाम लीजिए और हरिहरन साहब की जुबानी सुनिए ये बेहद पुरअसर और रुमानी गजल। कभी तो तोड़ ये बेजान सन्नाटा, कोई शिकवा कोई नफरत कोई शिकायत कर। गौर फरमाइए, कह रहे हैं कभी तो तोड़ ये बेजान सन्नाटा, कोई शिकवा कोई नफरत कोई शिकायत कर। तेरी चुप्पी कहीं पागल न कर दे, तेरी चुप्पी कहीं पागल न कर दे। तू मुझसे बात कर या फिर कयामत कर। दोस्तों, हरिहरन साहब की आवाज में बहुत खूबसूरत कलाम आपकी नजर।

दोस्तों, खामोशी और सन्नाटों के दौर से गुजर कर अब हमारा ये कारवां उस शख्सियत की चौखट तक आ पहुंचा है जिन्हें जमाना किंग ऑफ गजल कहता है। जी हाँ, हमारे जगजीत सिंह जी। उनकी आवाज की कशिश सीधे टूटे हुए दिलों में मरहम लगाती है। साल 1987 में आई उनकी बेहद मकबूल पेशकश बियॉन्ड टाइम का एक ऐसा नगमा जो खता और माफी के बीच की उस महीन लकीर को बयां करता है जहां एक आशिक अपनी हर भूल को कबूल कर मोहब्बत की पनाह में सुपुर्दे खाक होना चाहता है। शायर नजीर बाकरी साहब के लिखे इन अजीम

बुझ जाएगी। आग दुनिया की लगाई हुई बुझ जाएगी, कोई आंसू मेरे दामन में बिखर जाने दे। और फिर कहते हैं, जख्म कितने तेरी चाहत से मिले हैं मुझको, सोचता हूं कि कहूं तुझसे मगर जाने दे। फिर कहते हैं, अपनी आंखों के समंदर में उतर जाने दे, तेरा मुजरिम हूं मुझे डूब के मर जाने दे। जगजीत सिंह की आवाज में पेशकश है दोस्तों, बहुत बहुत खूबसूरत गजल, शौक फरमाएं।

नया पेशकश जो वक्त के बेरहम थपेड़ों और इंसान के अंदर की टूट फूट को बयां करती है। इस दिलकश नज्म को अपनी मखमली आवाज से नवाजा है मोहतरम तलत अजीज साहब ने। शायर थे सूरज सनीम और इन अजीम लफ्जों को जब राजेश रोशन साहब की सुरीली धुनों का साथ मिला तो ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हर इंसान के अंदर की दास्तान बनकर रह गया। गजल का मिसरा पेशे खिदमत है। शायर कहता है, मेरी शोहरत मेरी दीवानगी की नजर हुई, पी गई मैं की बोतल मेरे गीतों की किताब, आज लौटा हूं तो हंसने की अदा भूल गया, ये शहर भूला मुझे मैं भी इसे भूल गया, मैं भटकता ही रहा दर्द के वीराने में, वक्त लिखता रहा चेहरे पे हर पल का हिसाब। तो आइए सुनते हैं बेबसी की कैफियत तलत अजीज की खूबसूरत आवाज में। आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, मेरे अपने मेरे होने की निशानी मांगे आपकी नजर।

दोस्तों, वक्त के उस हिसाब किताब के बाद हमारा सुरीला कारवां आज के सफर की अगली पायदान पर आ पहुंचा है। जब साल साल के लंबे इंतजार के बाद कोई अचानक आपके सामने आकर खड़ा हो तो दिल की हालत को लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। ऐसी ही एक जज्बाती मुलाकात को सुरों का जामा पहनाया है मोहतरम गुलाम अली साहब ने। उनकी मशहूर एल्बम गोल्डन कलेक्शन की एक ऐसी लाजवाब पेशकश है जो बिछड़ने और फिर से मिलने की उस मीठी सी कशिश को बयां करती है। शायर मोहसिन नकवी की लिखी इस नज्म को जब गुलाम अली जी ने अपनी खास हरकतों, मुर्गियों और मखमली गायकी से सरोबार किया तो ये सिर्फ गजल नहीं रही बल्कि दो रूहों के मिलन की दास्तां बन गई। इस गजल का मिसरा कुछ यूं बयां किया गया है। कौन सी बात है तुम में ऐसी, इतने अच्छे क्यों लगते हो, पीछे मुड़कर क्यों देखा था, पत्थर बनकर क्या तकते हो, जाओ जीत का जश्न मनाओ, मैं झूठा हूं तुम सच्चे हो, अपने शहर के सब लोगों से मेरी खातिर क्यों उलझे हो। मोहसिन फिर मक्ता पेश है, मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, मोहसिन तुम बदनाम बहुत हो, जैसे हो फिर भी अच्छे हो। लीजिए गजल शौक फरमाइए गुलाम अली साहब की आवाज में, इतनी मुद्दत बाद मिले हो, किन सोचों में गुम बैठे हो।

दोस्तों मुलाकातों के उस हसीन दौर से गुजर कर अब हमारा सुरीला कारवां आज के सफर की आखिरी चौखट तक पहुंच गया है। जब दुनिया की तमाम तकलीफें इंसान को चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब दिल सिर्फ अपने उस अजीज शख्स की पनाह ढूंढता है जो उसकी रूह का हमराज हो। सुरों की मलिका मोहतरमा नैरा नूर साहिबा की आवाज में सजी ये एक ऐसी नायाब और तारीखी पेशकश है जो सिर्फ एक नगमा नहीं बल्कि वफा की आखिरी पुकार जैसी लगती है। शायर सिद्दीकी साहब के लिखे इन अजीम लफ्जों में छिपी वो तड़प जब उनकी पाक और रेशमी आवाज से मिलती है तो महफिल का रंग ही बदल जाता है। तो आइए इस आखिरी नगमे के साथ बिरहा के समंदर में उतरते हैं, नैरा नूर साहिबा के इस बेहद जादुई अंदाज में। मिसरा पेश करती हूं। ना है फरियाद होंठों पर, ना है फरियाद होंठों पर, ना आंखों में कोई आंसू, जमाने से मिला जो गम उसे गीतों में ढाला है। फिर शायर कहता है, तुम्हारी बेरुखी एक दिन हमारी जान ले लेगी, कसम तुमको जरा सोचो कि दस्तूरे वफा क्या है। और ये कि ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई, ना जाने किस लिए दुनिया की नजरें फिर गई, हमसे तुम्हें देखा तुम्हें चाहा कसूर इसके सिवा क्या है। महसूस कीजिए इन बोलों को दोस्तों, कहां हो तुम चले आओ, मोहब्बत का तकाजा है गमे दुनिया से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है। नैरा नूर की पुरसुकून आवाज आपकी नजर, प्रोग्राम की आखिरी गजल।

वाह, जमाने से मिले उस गम को गीतों में ढालने की जो ये कलाकारी है, यही तो मौसीकी की असली ताकत है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, घड़ी की सुइयों की ये रफ्तार हमें बिन बोले इशारा कर रही है कि अब वक्त हो चला है आज की इस खूबसूरत बज़्म को यहीं विराम देने का। लफ्जों की चौखट से शुरू हुआ हमारा ये नया कारवां आप सभी की बदौलत सीधे रूह के एहसास तक उतरा है। आपके इसी बेइंतहा मोहब्बत और साथ के लिए मैं दिल से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है आज की ये शाम के चुनिंदा नगमे आपके ख्यालों की डायरी में एक महकती हुई याद बनकर हमेशा जिंदा रहेंगे। अब आपकी दोस्त आरती रॉय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे इसी मुकाम पर इसी वक्त, नए तराने छेड़ेंगे। तब तक सुकून से रहिए, आराम कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। शब खैर, शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे।

दोस्तों, आपकी मेजबान आरती जी के साथ आज की हमारी गजलों भरी महफिल बस यहीं खत्म होती है। उम्मीद है ये गजलें, ये अल्फाज आपके दिल को पसंद आए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आरती जी फिर लौटेंगी नई गजलों और नई भावनाओं के साथ। नमस्कार।

0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके कार्यक्रम खेती बाड़ी में। किसान साथियों, जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 FM झाबुआ की आवाज आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM की ऐप के माध्यम से काफी विद्यार्थियों ने और किसानों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है और खेती संबंधी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर झाबुआ के मौसम के ऊपर। झाबुआ का अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 24.1 डिग्री सेल्सियस, कल की वर्षा 9.4 मिलीमीटर, 1 जून से अब तक की कुल वर्षा 152.6 मिलीमीटर नापी गई है। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमलता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेतीबाड़ी कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं उड़द की खेती के ऊपर, साथ ही जानेंगे तिल्ली की खेती और मशरूम की खेती। किसान साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नजर मंडी भावों के ऊपर।
2: कहीं उठा पटक तो कुछ मंडियों में स्थिर रहे उड़द के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में 295 रुपए उछले उड़द के सौदे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उड़द से। इस साल देश में होने वाले दालों के निर्यात में बम्पर इजाफा देखने को मिला है। साल 2022 में अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 1,89,000 टन के पार पहुंच गया है, जो बीते साल के मुकाबले 1,52,000 टन अधिक है। वहीं कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला।
3: कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को मंडियों में उड़द के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़े, जबकि कुछ में नरमी देखने को मिली। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में उड़द के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्कनेट के अनुसार गुजरात की जसदन मंडी में 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 5,500 रुपए, 15 जुलाई को इसके भाव में 1,250 रुपए का उछाल आया और भाव 6,750 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 14 जुलाई को यहां उड़द का भाव था 7,165 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदे 295 रुपए चढ़कर 7,460 रुपए पर हुए। जबकि मध्य प्रदेश के खातेगांव मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 14 जुलाई को उड़द का भाव रहा 4,501 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदों में 1,101 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 3,400 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में ने बीते दो दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को उड़द 7,800 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो शुक्रवार को हरदोई मंडी में उड़द का भाव रहा 7,550 रुपए, महोबा मंडी में भाव रहा 5,480 रुपए, गोंडा मंडी में उड़द 7,400 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बदायूं मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 6,520 रुपए पर हुए। देश में इस साल उड़द की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 5,30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान उड़द की पैदावार 27,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 22,30,000 टन ही रही थी। वहीं बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बंपर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है।
0: किसान भाइयों, अभी हमने अलग अलग जगह की मंडी भावों का रुख किया। किसान भाइयों, जैसा कि हम सुन रहे हैं उड़द की खेती, उड़द का भाव जिस तरीके जैसे कि अभी बना हुआ है, साथ ही आगे भी इसमें उछाल देखा जा सकता है। किसान भाइयों, अधिकतर हमारे किसान भाइयों ने अधिकतर अपने खेतों में बुआई कर ली है, और भी कहीं कहीं पर कुछ जगहें हैं जो जिन किसान भाइयों को अभी बुआई करना बाकी है। तो अगर कोई किसान उड़द की खेती करना चाहे तो वो अपना रुख उड़द की खेती की तरफ मोड़ सकता है। आइए जानते हैं उड़द से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण बातों को।
4: बिल्कुल, अगर हम उड़द की बात करते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। अगर हम निर्यात की स्थिति भी देखते हैं तो निर्यात जो है वर्ष दर वर्ष हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है। घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो डिमांड है वो लगातार बनी हुई है, और गवर्नमेंट की MSP पॉलिसी भी इसके लिए सपोर्टिव बनी हुई है, इसलिए आने वाले समय में जो है इसमें तेजी जारी रहेगी।
0: किसान साथियों, आइए जानते हैं क्या हमें अभी इन उड़द को बेच देना चाहिए या अभी हमें इसका भंडारण करके रखना चाहिए, और इसमें क्या इसे रखने से हमें आगे फायदा होगा या फिर नुकसान उठाना पड़ सकता है। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
4: जी बिल्कुल, अगर किसानों की अगर हम बात करते हैं तो किसानों के पास अगर भंडारण की क्षमता है तो आने वाले समय में अक्टूबर नवंबर के पास में हमें यहाँ करंट भाव से जो है 5-7% तक की तेजी और देखने को मिल सकती है।
0: जिन जिन किसान भाइयों के पास अगर भंडारण की व्यवस्था है तो आने वाले समय के लिए ये हमारे लिए फायदे का सौदा बन सकता है। खेती बाड़ी से जुड़ी हुई इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भिल्ली गीत को। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वाते खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम पर। अभी आपने एक सुंदर से प्यारे से भीली गीत को सुना। किसान साथियों, उड़द से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को अभी आपने जाना। अभी हम जानेंगे तिल्ली से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को। उससे पहले आइए डालते हैं एक नज़र तिल्ली के मंडी भावों पर।
2: कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में तिल बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्वाकनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 14 जुलाई को काले तिल का भाव रहा 13,400 रुपए, 15 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी आई और भाव 13,475 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान तिल के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 14 जुलाई को तिल का भाव था 13,250 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदे 1,000 रुपए लुढ़क कर 12,250 रुपए पर हुए। वहीं जसदन मंडी में 14 जुलाई को सफेद तिल का भाव रहा 11,625 रुपए, 15 जुलाई को इसके सौदों में 125 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 11,750 रुपए। धोराजी मंडी में गुरुवार को सफेद तिल का भाव रहा 12,005 रुपए, शुक्रवार को इसके भाव में 125 रुपए की गिरावट आई और भाव 11,880 रुपए पर आ गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बीते दो दिनों के दौरान तिल के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को तिल 8,860 रुपए पर बिकी। इस साल देश में तिल की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर खरीफ तिल की उपज बीते साल के मुकाबले 40,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिल के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान खरीफ तिल की उपज 8,57,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान तिल की पैदावार 8,17,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डाले तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी।
1: किसान साथियों, अभी हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से मंडियों में तिल्ली भाव को जाना। अलग अलग मंडियों में क्या भाव हो रहा है, क्या भाव है अभी, इन सारी जानकारियों को अभी हमने सुना। आइए लेते हैं एक्सपर्ट की राय, आने वाले समय में क्या हमें तिल्ली को लेकर हो सकता है फायदा या यह हमारे लिए घाटे का सौदा बन सकता है। आइए सुनते हैं।
3: बिल्कुल, अगर हम तिल की बात करते हैं तो मंडियों के अंदर जो आवक है वो सामान्य से हमें ज्यादा आती हुई दिखाई दे रही है। इसका उत्पादन भी जो है वर्ष दर वर्ष अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें ज्यादा ही दिखाई दिया है। लेकिन अगर हम निर्यात को देखते हैं और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम इसकी डिमांड देखते हैं तो वो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें कम ही दिखाई दी है, इसलिए इसके भावों में हमें नरमी दिखाई दी है।
4: यानी जो उपज है पैदावार के मुकाबले जो बाजार मांग है वो इतनी अधिक नहीं है, और जैसा कि आपने बताया कि निर्यात भी इतना ज्यादा इसका दिखाई नहीं दे रहा है। अगर हम उपज के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या करना चाहिए किसानों को ऐसे में?
3: बिल्कुल, अगर हम इस स्थिति की हम बात करते हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों को इसमें बिकवाली ही करनी चाहिए। इसमें आंशिक बिकवाली जो है 2-5% तक की रह सकती है।
4: बिल्कुल, तो बिकवाली ही बेहतर रहेगा, जैसा कि अभी आप बता रहे हैं। तो जिन किसानों ने तिल की फसल ली, जिनके पास तिल का स्टॉक है, उनके लिए बेहतर यही है कि इसे मंडियों में ले जाएं और आप बेच दें जो भाव मिल रहे हैं उसी पर। बढ़ते आगे और बात करते हैं हरी मिर्च के, नजर डालते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे हरी मिर्च के भाव। शुरुआत करते हैं चंडीगढ़ मंडी से, जहां पर हरी मिर्च का भाव रहा 1,500 रुपए। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में भाव रहा 4,750 रुपए। गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 2,500 रुपए और राजस्थान के जोधपुर मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है।
1: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન. આપુ રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં. એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન, રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM.
0: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM. आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें.
1: किसान साथियों, वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का. विराम के बाद हम जानेंगे सोयाबीन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को.

0: लागत 30,000 रुपए आती है। इसमें भूमि का पट्टा मूल्य, खेत की तैयारी, खाद और उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशक और कटाई वगैरह पर आने वाले तमाम खर्च शामिल हैं। जब बीज बड़े होकर फली की चौड़ाई के 80 से 90 फीसदी हिस्से को घेर ले तो समझ लीजिए सब्जी के लिए सोयाबीन तैयार है और इसकी कटाई की जा सकती है। पहली कटाई बोने के 70 से 75 दिनों के बाद होती है। 15 क्विंटल प्रति एकड़ की फसल होने पर देशमुख की कुल आमदनी 3 लाख रुपए हुई। ऐसा तब है जब बाजार में फली का दाम 200 रुपए किलो हो। इस तरह एक एकड़ में शुद्ध लाभ 2,70,000 रुपए बैठता है। अगर आपको और ज्यादा कीमत चाहिए तो फिर हरी फली को प्रस्फुटित यानी ब्लेंच करना होगा। देशमुख ने -18 डिग्री सेल्सियस पर हरी फली का भंडारण किया। इस तापमान पर फली को 18 महीने तक संग्रहित किया जा सकता है। देशमुख 2 और 3 बीजों वाली प्रस्फुटित और फ्रोजन हरी फलियों को बाजार में 300 रुपए किलो के भाव बेचने में कामयाब रहे। सोयाबीन के बीजों को सुखाकर भी बेचा जा सकता है। इसका बाजार भाव 100 से 150 रुपए किलो होता है। अगर आप चाहें तो सूखे परिपक्व बीज से टोफू यानी सोया पनीर भी बना सकते हैं। स्वर्ण वसुंधरा के 1 क्विंटल अनाज से 225 किलो सोया पनीर बनता है, जिसमें 13,000 रुपए की लागत और 54,000 से भी ज्यादा का शुद्ध लाभ कमाया जा सकता है। इसके अलावा भुने हुए अनाज से अच्छी क्वालिटी का सत्तू बनता है। 8 घंटे तक पानी में भिगोने के बाद अनाज का सेवन पौष्टिक भोजन के रूप में भी किया जाता है। स्वर्ण वसुंधरा के अनाज से सोया दही, छेना, आइसक्रीम और गुलाब जामुन तैयार किए जा रहे हैं।
1: किसान साथियों, अभी आपने सोयाबीन के उत्तम बीज की किस्मों को जाना, अपने स्वर्ण वसुंधरा सोयाबीन को जाना, कैसे हम उससे दही बनाया जा सकता है, उससे खाद्यान्न की चीज़ें बनाई जा सकती है, उसमें प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है जो हमारे लिए हम आसानी से जिसे पचा सकते हैं, उसे सोया पनीर बनाया जा सकता है और भी अन्य चीज़ें बनाई जा सकती है। किसान साथियों, जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आइए डालते हैं एक नज़र जुलाई के इस कृषि कैलेंडर के ऊपर।
2: ये मौसम टमाटर की हल्की सिंचाई के लिए अनुकूल है। खेत में नमी बनाए रखने के लिए 5 से 6 हल्की सिंचाई जरूरी है। फसल को घास पात से साफ करने के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई का कार्य करें। टमाटर के रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर जमीन में दबा दें। फल छेदक और झुलसा रोग की निगरानी करें और बचाव हेतु उचित कीटनाशक का छिड़काव करें।
3: सोयाबीन का बोने के लिए उचित समय 25 जून से लेकर 7 जुलाई तक है और अभी भी किसान यदि लगाना चाहें तो, हालांकि उपज में कमी आएगी, देरी से बोने पर उपज में कमी आती है, ये 15 जुलाई तक लगा सकते हैं। यदि समय और प्रबंधन उचित हो तो उपज दे सकती है।
4: जी बिल्कुल, तो 7 जुलाई आपने कहा कि हमारे किसानों को कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी किसी कारणवश अगर नहीं की गई है तो वो 15 जुलाई तक इसकी बुआई का काम कर सकते हैं। हालांकि उपज में जरूर कमी आ सकती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि उचित प्रबंधन किया जाए। जी बिल्कुल, तो वो कौन कौन से उचित प्रबंधन है इनके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डाल लेते हैं।

0: सोयाबीन यानी स्वादिष्ट, पौष्टिक और गुणों से भरपूर हर किसी को अच्छी लगती है। सोयाबीन भारत की प्रमुख तिलहनी फसल है। इसमें लगभग 40% प्रोटीन, 20% तेल के साथ अनेक औषधीय गुण हैं। सोयाबीन का इस्तेमाल आज कई रूपों में होता है। यही कारण है कि आज हमारे किसान बड़ी तादाद में सोयाबीन की खेती कर रहे हैं।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: हल्दी में बहुत सारी किस्में जो हैं वो प्रचलित हैं, जैसे कि रोमा, सुरोमा, मेघा, राजेंद्रा सोनिया। इसके अतिरिक्त स्थानीय किस्में भी हैं, क्योंकि हल्दी और अदरक जैसी फसलों में बीज की मात्रा काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो जो स्थानीय किस्में भी अगर अच्छी गुणवत्ता की हैं तो किसान भाई उनका भी प्रयोग कर सकते हैं।
3: जी बिल्कुल, तो ये तमाम हल्दी की किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर वो अपनी फसल

0: अच्छा उत्पादन हासिल करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे अगर हमारे किसान बुआई कर रहे हैं तो उससे पहले बीजोपचार किस प्रकार किया जाए?
1: हल्दी और अदरक दोनों में गठी सड़न का जो रोग है वो काफी प्रमुख है। हालांकि हल्दी में इसकी समस्या नहीं भी आती है, लेकिन अदरक में यह एक गंभीर समस्या है। तो बीज भंडारण के समय में भी इसी तरह का बीज उपचार किया जाता है, और बीज की खेत में रोपाई से पहले भी बीज गठियों को अच्छी तरह उपचारित करना बहुत ही आवश्यक होता है। और इस उपचार के लिए डायथिन M45 0.25% तथा बेबिस्टीन 0.10% का घोल बनाकर और उसको जो है वो गठियों को उसमें 1 घंटे तक अच्छी तरह डुबो कर रखें तथा बाद में छाया में सुखाएं और उसके बाद ही इसका जो बिजाई है खेत में वो करें।
2: किसान भाइयों, ये जानते हैं अदरक की खेती हमें कब करनी चाहिए, कब हमें इसे लगाना चाहिए ताकि हमें उपयुक्त समय पर हम इसकी देखरेख कर सकते हैं और सही समय पर हम इस उपज को बाजार में बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा ले सकें। तो आइए जानते हैं कब हमें इन्हें लगाना चाहिए, जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
1: वैसे तो पूरे भारतवर्ष में अदरक की बिजाई का जो समय है वो अप्रैल और मई महीने का रहता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा है उनमें जो है वो फरवरी माह में भी अदरक की जो बुआई है वो की जा सकती है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि आने वाला जो गर्मी का मौसम होगा अप्रैल मई जून का महीना, इसमें सिंचाई की व्यवस्था हो,
0: सिंचाई की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। जैसे जनवरी के महीने में काफी ठंड पड़ती है,
1: जनवरी तो
0: उसमें कर सकते हैं क्या?
1: जनवरी में तो नहीं कर सकते क्योंकि जब टेम्परेचर या तापमान जो है वो काफी नीचे रहेगा तो उसकी जो अंकुरण है गठियों का वो नहीं होगा। इसलिए फरवरी माह के बाद, मध्य फरवरी के बाद जो है कुछ क्षेत्रों में दक्षिण भारत में खास करके इसकी बिजाई की जाती है, लेकिन सिंचाई की व्यवस्था का सुनिश्चित होना।
0: बिल्कुल, जैसे ये ओडिशा से बात कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं फरवरी,
1: जनवरी तो नहीं लेकिन फरवरी के
0: मध्य फरवरी से अगर आप करना चाहते हैं बुआई तो आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा रवि जी कि सिंचाई की उचित व्यवस्था हो आपके इलाके में, तभी आप इसका चुनाव करें बुआई के लिए फरवरी मध्य के दौरान।
3: सोयाबीन की देरी की अवस्था में जो जल्दी पकने वाली जातियां हैं उनका चुनाव करना चाहिए, जैसे JS 95 60, JS 20 34, JS 93 05, जो जल्दी पकती है, मतलब 85 से 90 दिन में पकती है, उन जातियों का चुनाव करें। साथ ही बीज दर 25% बढ़ा लें, जो बीज दर उचित समय में बोते हैं उससे 25% अधिक बीज बोएं और बीज उपचार करके बोएं। बीज उपचार के लिए थायरम और कार्बेंडाजिम, 2 ग्राम थायरम लें और 1 ग्राम कार्बेंडाजिम लें, इस तरह 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से इसका उपचार करें, या फिर थायरम प्लस कार्बोक्सिन नाम की दवाई है उसका भी 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करें। उसके बाद में आप यदि यहाँ पर पीला मोजेक आने की संभावना है वहाँ पर इंसेक्टिसाइड या कीटनाशक दवाई से भी उपचारित करें, जैसे थायोमेथॉक्सिम है या इसको 10 मिलीलीटर प्रति किलो बीज, या फिर इमिडाक्लोप्रिड दवाई है उसको 1.25 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। तत्पश्चात उसमें राइजोबियम एवं पीएसबी से उपचारित कर उसकी बोनी करना चाहिए, जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन किसान
0: जी बिल्कुल। तो ये कुछ जल्द पकने वाली किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं अगर वो सोयाबीन की बुआई करना चाहते हैं। और साथ ही साथ जैसे हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि बीजोपचार करना बहुत जरूरी है, वरना आगे चलकर आपकी फसल जो है उसे काफी नुकसान पहुंच सकता है, गुणवत्ता पर काफी असर पड़ सकता है, जिससे उसकी क्वालिटी जो अगर कम हो जाएगी तो उसका मूल्य भी आपको कम ही मिलेगा। इसलिए जरूरी है कि आप पहले ही तैयारियां करके रखें ताकि आपको बाद में कोई नुकसान ना झेलना पड़े।
3: सोयाबीन की बढ़वार के लिए सबसे प्रथम बात आती है पानी की, यदि बराबर वर्षा होती रहती है तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है। और बढ़वार नहीं होने का दूसरा कारण होता है कि पोषक तत्वों की कमी। यदि हम जो अनुशंसित मात्रा है सोयाबीन के लिए 25 किलो नत्रजन, 60 किलो स्फूर्त, 40 किलो पोटास एवं 20 किलो सल्फर गंधक की आवश्यकता होती है अच्छे उत्पादन के लिए। ये अनुशंसित मात्रा है और ये पोषक तत्व सोयाबीन के बोने के समय ही दिया जाना चाहिए। खड़ी फसल में कोई भी खाद का उपयोग न करें तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है।
0: जी बिल्कुल, सिंचाई का उचित ध्यान रखें, साथ ही साथ पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो फसल की बढ़वार में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसका ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं डॉक्टर शर्मा का। डॉक्टर शर्मा, गठी सड़न रोग कैसे नियंत्रित किया जाए?
1: गठी सड़न, जैसा कि मैंने कहा कि अदरक की फसल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है
0: जी,
1: और इसका उपचार करने के लिए सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि बुआई से पहले जो है वो गठियों का उपचार करना, और इसी तरह से जैसे फसल को निकाला जाता है और बीज के लिए जो फसल रखनी है भंडारण से पहले भी उसी तरह का गठियों का उपचार किया जाना है
0: जी।
1: और अगर इस तरह की समस्या खड़ी फसल में खेत में आती है तो इसका या तो इसी घोल का ड्रेंचिंग करके यानी के पौधों की जड़ों में इसकी इस घोल की सिंचाई करें या इसका छिड़काव जो है वो पौधों के ऊपर करें
0: जी।
1: विशेषकर पानी की निकासी का ध्यान रखें क्योंकि वर्षा ऋतु में अगर पानी खेतों में रुकता है तो किसी भी तरह का कोई उपचार जो है वो काम नहीं आएगा, लेकिन पानी की निकासी पहले करना बहुत जरूरी है
0: जी। पानी की निकासी करना भी बेहद जरूरी है, और साथ ही साथ जो आपने अभी उपचार बताए हैं वो करने भी बहुत जरूरी है, तभी जाकर ये जो रोग है, जो समस्या है, इसका समाधान आपको मिल पाएगा, इससे निजात आपको मिल पाएगा और आपकी जो फसल है वो एक स्वस्थ रूप में आपको मिल पाएगी, जिससे आपको सीधा सीधा फायदा पहुंचेगा।
2: किसान साथियों, अगर हमारी खेती में खरपतवार अगर ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, हमें कौन सी दवाई इसमें डालनी चाहिए, आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को।
3: सोयाबीन की फसल जो खड़ी फसल है और 15 से 20 दिन की हो गई है, उसमें खरपतवार नाशक दवाइयों से हम खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं। इसमें सर्वप्रथम आप इमेजेतापीर नाम की दवाई है जिसको 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से इसका छिड़काव करेंगे तो सभी प्रकार के खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा, जहाँ पर जिन खेतों में केवल सक्रिय पत्ती वाले खरपतवार हैं वहाँ पर क्रिजोलोफापिथाइल नाम की दवाई है, फिनॉक्सीप्रोपिथाइल है, क्रिजोलोफापीटेफुरुल है, ये दवाइयाँ 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करेंगे तो वहाँ पर सभी सक्रिय पत्ती वाली खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। यदि जिन खेतों में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार की अधिकता है वहाँ पर क्लोरीमुरान इथाइल नाम की दवाई है, इसकी मात्रा केवल 36 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, इसका उपयोग यदि करेंगे आप तो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नष्ट हो जाएंगे और सोयाबीन की फसल को खरपतवार से हानि नहीं होगी।
0: जी बिल्कुल, खरपतवार नियंत्रण किस प्रकार किया जाए ये तो आपने बता दिया डॉक्टर बिल, और अब आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे हम देख रहे हैं कि काफी जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हमें देखने को मिल रही है, तो जो ज्यादा भारी बारिश वाले क्षेत्र हैं वहां पर अगर हमारे किसानों ने सोयाबीन की फसल लगाई है तो क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है उन्हें?
3: सोयाबीन की फसल में अधिक बारिश से ज्यादा नुकसान होता है बजाय सूखे के तुलना में
0: जी,
3: तो जल प्रबंधन बहुत आवश्यक है सोयाबीन की फसल में। जहाँ पर भी जल जमाव होता है, जिन खेतों में जल जमाव होता है वहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था अवश्य करें, और यदि भविष्य में इस बार यदि आपने फ्लैट बेड पे समतल जमीन पर सोयाबीन बोई है तो अगले वर्ष से सोयाबीन को बोने की पद्धति ब्रॉडबेड फरो या रिच फरो पद्धति से यदि सोयाबीन को लगाएंगे तो जब अधिक बारिश होती है तो फरो से पूरा अधिक मात्रा वाला पानी बाहर निकल जाता है, खेत से बाहर हो जाता है, जिससे सोयाबीन को हानि नहीं होती है। और कम पानी की स्थिति में, कम बारिश होती है तो उस स्थिति में ये कूड़ में पानी जमा हो जाता है और सोयाबीन की फसल को बराबर मात्रा में पानी मिलता रहता है, इसलिए सोयाबीन की फसल को दोनों ही स्थितियों में ये पद्धतियां लाभप्रद है
0: जी। बिल्कुल, चाहे ज्यादा बारिश हो या फिर कम बारिश हो, इन दोनों ही परिस्थितियों में आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है इसके बारे में अभी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताया।
2: किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर हमारा सोयाबीन क्यों नहीं बढ़ रहा है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इसका क्या कारण हो सकता है।
3: सोयाबीन की फसल को वैसे सोयाबीन की फसल को पानी कम लगता है, ये फसल 450 से लेकर 750 मिलीमीटर बारिश में अच्छी होती है, परंतु इसको लगातार मतलब बारिश का डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं वो अच्छा होना चाहिए। यदि समय समय पर बारिश होती रहती तो सोयाबीन की बढ़वार अधिक होती है, सूखे की स्थिति में इसकी बढ़वार रुक जाती है। इसलिए यदि जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की व्यवस्था है तो सूखे की स्थिति में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे कि सोयाबीन की बढ़वार अधिक से अधिक मिल सके उनको।
0: जी, सिंचाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है अगर हम सोयाबीन की खेती की बात करते हैं तो। जैसे अभी बरसात का मौसम है, ऐसे में तो पानी उचित मात्रा में मौजूद होता है जिसके चलते नमी जो है वो मिट्टी में बरकरार रहती है। लेकिन जैसे अभी हम बात करें कि जहां पर बारिश बहुत ही कम है, तो ऐसे स्थिति में क्या करें किसान?
3: ऐसी स्थिति में किसानों को यदि सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो उस स्थिति में उसमें इंटरकल्टर कल्टीवेशन ऑपरेशंस या भूमि की गुड़ाई करना चाहिए, जिससे कि मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी तो जो जमीन में नमी है उसकी हानि नहीं होगी और नमी संरक्षित रहेगी, जो नमी पौधे को मिलेगी और सोयाबीन की बढ़वार रुकेगी नहीं
0: जी।
3: या फिर बहुत लंबा अंतराल हो गया सूखे का, तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन में एंटी ट्रांसपेरेंट्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, इसका 1% घोल बना के छिड़काव कर देंगे तो सोयाबीन में को कम पानी में सहनशीलता आ जाएगी और पौधे में हानि मतलब सोयाबीन की फसल में हानि नहीं होगी। तो इस तरह से हम कम
0: तो कम पानी वाले क्षेत्रों में भी ये उपाय कर सकते हैं हमारे किसान, जिससे उनकी सोयाबीन की जो फसल है उसकी बढ़वार अच्छी बनी रहे। बिल्कुल
2: किसान साथियों, आइए जानते हैं अगर हमारे सोयाबीन की पत्ती है वो कटी फट्टी से आ रही है या फिर पूरी पत्ती नहीं आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है, आइए जानते हैं।
3: इस समय सोयाबीन की फसल करीब करीब 15 से लेकर 25 दिन की फसल हो चुकी है खेतों में, तो सर्वप्रथम जो सोयाबीन में कीट लगता है वो ब्लू बीटल नाम का कीट लगता है, जो पहली जब पौधा छोटा होता है उस समय लगता है और पहली पत्ती को खा जाता है। तो उसके नियंत्रण के लिए हम यदि खेत में ब्लू बीटल नाम का कीड़ा है, नीला भ्रंग जिसको बोलते हैं, तो वो यदि उपस्थित हो खेत में तो उसमें क्विनोलफॉस नाम की दवाई 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें तो वो कीट नियंत्रण हो जाएगा। जहाँ पर सोयाबीन फसल बड़ी हो गई है, 20 दिन से ऊपर की होने लगी है, तो वहाँ पर जो हरी इल्ली आने की संभावना बढ़ गई है, जो पत्तियां खाती है, मतलब इस समय पर्णभक्षी कीट ज़्यादा आते हैं, तो उनका नियंत्रण बहुत ज़रूरी है और जितनी जल्दी हम इनका नियंत्रण कर लेंगे तो अच्छी मतलब कम पावरफुल दवाई से भी इनका कंट्रोल हो जाता है, जो पुरानी दवाइयाँ उनसे भी कंट्रोल हो जाता है, तो उनका छिड़काव कर लें। या जिन किसानों के यहाँ 20 दिन की फसल हो रही है तो वहाँ पर खरपतवार नाशक और कीटनाशक दवाइयों को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे काश्त में कमी आती है और दोनों काम एक साथ हो जाते हैं, खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है और कीट नियंत्रण भी हो जाता है।
0: तो वही बात हो गई, एक पांत और दो काज
3: हो गए,
0: खरपतवार नियंत्रण भी हो जाएगा, साथ ही साथ कीटों से निजात जो है तो वो भी मिल पाएगा।
3: इसके लिए आप इमाजेतापीर जो रसायन है वो खरपतवार नाशक है और क्लोरा एंट्रीनिलीपोर नाम की दवाई है, वो दवाई का एक साथ मिलकर प्रयोग करेंगे तो दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। या दूसरी दवाई आपके इमिडिया क्लोरप्रीड है, उसको भी उपयोग कर सकते हैं इस खरपतवार नाशक दवाई से, या किजालोफाफिथाइल नाम की दवाई है जो खरपतवार नाशक, इन दोनों कीटनाशक दवाइयों को मिलाकर इनका प्रयोग कर सकते हैं तो दोनों काम एक साथ हो सकते हैं।
2: किसान साथियों, अभी आपने खरपतवार नाशक दवाइयों को लेकर सुना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों को आपने सुना। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खेती बाड़ी से जुड़ी हुई और भी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आइए सुनते हैं ये छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा मिली गीत।
4: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: एनएक।
1: ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है किसान साथियों आपका। आइए जानते हैं बरसात के समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे हमारी फसल की हमें देखरेख करनी चाहिए। आइए जानते हैं एक्सपर्ट की राय।
2: लगभग सभी फसलों में अगर हम धान को छोड़े तो वर्षा ऋतु में जो बहुत ज़्यादा बारिश या किसी अन्य कारण से जो भी बारिश का पानी खेत में रुकता है उसकी सही निकासी बहुत ज़रूरी है। अदरक और हल्दी की फसल में तो विशेषकर जो क्यारियां हैं वो जमीन से ऊंची उठी हुई बनाई जाती हैं तथा क्यारियों के दोनों तरफ नालियों का जो है वो प्रबंध किया जाता है ताकि अत्यधिक जो पानी है या जल भराव है वो उसकी सही निकासी हो सके। और ये बहुत ही जरूरी है पूरी फसल की अगर हम प्रबंधन को देखें कि जल की जो निकासी है उसका उचित प्रबंध हो।
3: जी, जल निकासी का प्रबंधन पूर्ण रूप से होना जरूरी है ताकि हमारी जो फसलें हैं, चाहे हम बात कर लें हल्दी की, अदरक की या फिर अन्य फसलों की हम बात कर लें, उनकी गुणवत्ता भी काफी अच्छी बनी रहती है और बढ़वार जो है, पैदावार जो है वो भी काफी अच्छी बनी रहती है, क्योंकि अधिकता पानी की नुकसान भी पहुंचा सकती है हमारी फसलों को,
2: पहुंचाती है।
3: जी बिल्कुल। अब अगर हम उर्वरकों की बात कर लें डॉक्टर शर्मा।

0: तो उर्वरकों को कब देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए, अगर हम बात करें हल्दी और अदरक दोनों फसलों की?
1: हल्दी और अदरक दोनों ही फसलों के लिए गोबर की गली सड़ी जो देसी खाद है वो लगभग 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से लेकर 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की मात्रा में डालनी चाहिए। इसके अतिरिक्त मिट्टी की जांच के आधार पर नत्रजन, फास्फोरस और पोटासियम, इन खादों की जो मात्रा है वो भी डालनी चाहिए। और हल्दी के लिए नाइट्रोजन 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस भी 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास जो है वो 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा अदरक की फसल के लिए नाइट्रोजन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और फास्फोरस 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पोटास जो है वो भी 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से सामान्यता इनकी सिफारिश की जाती है।
0: जी, तो ये इन्हें कब कब देना चाहिए, कितने समय के अंतराल में?
1: ये सारी जो खादे हैं इनको खेत तैयार करते समय ही डाला जाता है। सिर्फ नाइट्रोजन एक ऐसी खाद है जिसको 3 बराबर भागों में बांटकर पहली खेत की तैयारी के समय में और बाकी के 2 भाग जो हैं वो बराबर भाग एक एक माह के अंतराल पर निराई गुड़ाई के समय पर दिए जाते हैं।
2: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम। आज हमने सोयाबीन को लेकर बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, इसकी उन्नत बीजों के बारे में, उन्नत किस्मों के बारे में, साथ ही समय समय पर हमें इसकी कैसे देखरेख करनी चाहिए, हमें कौन से उर्वरक डालने चाहिए, कौन सी दवाई इसमें डालनी चाहिए आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हमने चर्चा की। किसान साथियों, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांट्याबिल 90.8 FM छाबवा की आवाज। रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांट्या भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपू रोज करहूं वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांट्या भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। जैसा कि रेडियो टांट्या भील 90.8 FM छावा की आवाज आपके लिए खेती संबंधी बहुत सी जानकारियों को अब तक आप तक पहुंचाता आया है। किसान साथियों, रेडियो टांट्या भील 90.8 FM की एप्लीकेशन के माध्यम से भी बहुत से एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों ने इस एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड किया है। साथ ही रेडियो टांट्या भील 90.8 FM के खेती बाड़ी कार्यक्रम से खेती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को लेते रहे।
3: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांट्या भील 90.8 FM, आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
2: किसान साथियों, आपका ज्यादा वक्त ना लेते हुए आइए शुरू करते हैं खेतीबाड़ी कार्यक्रम। खेतीबाड़ी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं मिर्ची की खेती के ऊपर। तो आज हम जानेंगे कैसे, कौन सी भूमि में और कैसे वातावरण में और कौन से उचित समय में हम मिर्ची की खेती कर सकते हैं और उसमें हमें किन किन चीजों की सावधानियां रखनी पड़ती है। चर्चा करेंगे इन सारे बिंदुओं पर।
4: दुनिया भर में मिर्च की करीब 400 किस्में पाई जाती है। अगर भारत की बात करें तो मसालों में सबसे ज्यादा खेती यहाँ पर मिर्च की ही होती है और यहाँ पर मिर्च की खेती हजारों सालों से हो रही है। पिछले कुछ सालों में कुछ नई नई किस्में भी भारत पहुंची है, इन्हीं में से एक है थाई मिर्च। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
5: थाई मिर्च छोटे आकार और गहरे लाल रंग की सुंदर सी दिखने वाली मिर्च है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में होती है। जिन इलाकों में पहले से ही भारतीय मिर्च उग रही है उनमें थाई मिर्च की खेती आसानी से की जा सकती है। हाँ, ठंडे इलाकों का वातावरण इसके अनुकूल नहीं है। वैसे तो इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है, लेकिन अच्छी पैदावार के लिए बलुई मिट्टी सबसे बेहतर है। ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 5.5 से 6.5 के बीच हो। खेत में जल निकासी की व्यवस्था होना भी जरूरी है। अच्छी पैदावार के लिए हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का ही चुनाव करना चाहिए। एक एकड़ बुवाई के लिए 50 से 60 ग्राम बीज की जरूरत होगी। अक्टूबर और नवंबर का महीना इसकी रोपाई के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन रोपाई से पहले नर्सरी लगानी होगी। अगर आपके पास समय कम है तो किसी नर्सरी वाले से पौध खरीद सकते हैं। वैसे नर्सरी बोने के लिए 3 हाथ चौड़ी और 6 फुट लंबी मेड़ तैयार करें और लकड़ी की मदद से सीधी रेखाएं खींच लें। इसके बाद एक उंगली की दूरी पर बीज लगाएं। बुआई के तुरंत बाद पानी का छिड़काव कर दें। आप देखेंगे कि 40 से 45 दिनों में पौध तैयार हो गई है, लेकिन बीज बोने के बाद नर्सरी की देखभाल बहुत जरूरी है, इसलिए बीच बीच में सिंचाई करते रहें और निराई करके खरपतवार भी निकालते रहें। रोपाई से पहले 3-4 बार खेत की गहरी जुताई करें। एक एकड़ खेत में 1000 से 1200 किलो गोबर की खाद, 100 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो पोटेशियम और 30 किलो फास्फोरस डालनी चाहिए। 6 हफ्ते बाद और फिर 10 हफ्तों के बाद 10-10 किलो नाइट्रोजन और डालें। पौध तैयार होने पर इसकी रोपाई करेंगे। शाम के समय रोपाई बेहतर मानी जाती है। 10 दिन बाद खरपतवार निकाल दें। उसके बाद भी बीच बीच में खरपतवार निकालते रहेंगे। थाई मिर्च की जड़ें संवेदनशील होती हैं। जल भराव होने पर ये गल जाती हैं और इनमें फफूंद लग जाती है। हर 5 दिन में सिंचाई करनी है। सर्दियों में हफ्ते में एक बार सिंचाई करनी होगी। जड़ों के आसपास निराई गुड़ाई भी करते रहें। ऐसा करने से मिट्टी में नमी बनी रहती है और उसकी जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। 2 महीने होने पर गुड़ाई के बाद 10 किलो नाइट्रोजन को जड़ों के आसपास डाल दें। ऐसा करने से पोषण बना रहेगा। रोपाई के 60 दिन बाद आपका खेत कुछ इस तरह का दिखाई देगा। भारतीय मिर्चों में लगने वाले कीट थाई मिर्च में भी लगते हैं, जैसे थ्रिप्स, सफेद मक्खी, एफिड या फल छेदक। इन कीटों से बचाव के लिए केचुए की खाद का पानी छिड़के, जो जैविक खाद बनाते समय धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। शुरुआत में ही जैविक कीटनाशक छिड़क देंगे तो कीटों की समस्या नहीं आएगी। आज फसल रोपे हुए 90 दिन हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा खेत लाल हो गया है। अब इन्हें तोड़कर बाजार में ले जाया जाएगा। एक एकड़ में 6000 किलो थाई मिर्च मिल जाती है। जैविक तरीके से उगाई गई मिर्च तुड़ाई के 8 दिन बाद तक भी ताज़ा रहती है। सीधे मॉल या होटल में बेचने वाले किसान इसकी अच्छी तरह से पैकिंग करके ले जाते हैं।

0: किसान साथियों, अभी आपने थाई मिर्ची की खेती को लेकर महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले लेते हैं यहाँ पर छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से भेली गीत को।
1: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: है झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, ब्रेक के बाद पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका खेती बाड़ी कार्यक्रम में। किसान साथियों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं कुछ और मिर्ची की किस्मों को और उनकी खेती के प्रकारों को।
2: आज हम लोग खरीफ के समय मिर्च की खेती पर कुछ बातें बताएंगे। एक अच्छी मिर्च की फसल लेने के लिए अच्छे और स्वस्थ पौधों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको पूर्ण ध्यान देना होगा कि आपके पौधे जो हैं रुपाई से पहले पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। उसके लिए हम लोग खरीफ के समय ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जहाँ पर नेट हाउस की अगर आपके पास फैसिलिटी है या मच्छरदानी भी जो आपको कॉमनली आप लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर में पौधों का या बीज का रुपाई करें। उसके लिए सबसे पहले हम लोग बेड बनाते हैं जो लगभग ज़मीन से 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे होना चाहिए। बेड बनाते समय ये ध्यान रखिए उसमें अच्छे से गोबर की खाद मिली हुई रहनी चाहिए, और क्योंकि बरसात का मौसम रहेगा तो उसमें जो है पौधों में बीमारी आती है वह कहलाई जाती है पदवी गलन, तो वो एक फफूंद से होती है। उसके लिए गोबर की खाद जब आप मिट्टी में मिलाते हैं उसके साथ साथ फंजीसाइड भी मिला सकते हैं जैसे बैवेस्टीन या कैप्टॉफ। गोबर की खाद में उसको मिला करके फिर आप बेड की तैयारी कीजिए। बेड जब आपका लगभग 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे जब आपका तैयार हो गया है तब ऊपर के जितने भी पत्थर वगैरह हैं छोटे छोटे उसको हटा करके एक समतल और महीन मिट्टी तैयार करने की कोशिश करिए, और उसके बाद जो है उसमें बीज की रोपाई के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। बीज की रोपाई के लिए लगभग हम लोग यह ध्यान रखते हैं कि बीज की गहराई जो है 1 या 1.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम लोग जो बेड तैयार किए हैं उसमें उंगली से ही सीधी सीधी धारियां बनाते हैं और उसमें हम लोग बीज जो है बोते हैं। एक बार जब बीज की बुआई हो गई है उसके बाद हम लोग उसको हल्की सी मिट्टी से ढक करके उसके ऊपर घास रख करके फिर पानी डाल देते हैं। मौसम में तापमान लगभग 30 से 32 डिग्री के आसपास रहता है तो आपके सारे पौधे जो है 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में जम जाते हैं। जब एक बार पौधे जब जम जाते हैं तो आपको सारी घास जो उसके ऊपर डाली गई थी वो हटा देनी चाहिए। हर दिन सुबह और शाम उसमें पानी देना बहुत ज़रूरी है। जब पौधे 1 हफ्ते से के करीब होने लगे तब उसमें जो है होइंग करनी पड़ती है, मतलब उंगली से ही जितने भी हैं छोटे छोटे वीड्स जो आने लगते हैं उसको हटाना पड़ता है। इसको जो बहुत कॉमनली आप लोग खरपतवार बोलते हैं वो करनी पड़ती है, और पौधों की तैयारी में लगभग 1 महीने का समय लग जाता है। तो उसकी रुपाई से पहले 40 से 45 दिन में आपके पौधे तैयार हो जाते हैं। और अगर इस बीच आपको ये लगता है कि ये पत्ती संकुचन की प्रॉब्लम आपको दिख रही है तब आप जो है उसमें नीम की जो तेल होती है वो नीम बांध की दवाई में उपलब्ध है बाज़ारों में, वो आप ले सकते हैं। और सीडलिंग में 1 लीटर में 2 ml मिला करके उससे आप जो है हर हफ्ते पौधों पर स्प्रेइंग कर सकते हैं। इससे जो है आपकी ये जो बीमारी होती है वो सफ़ेद मक्खी से फैलती है तो सफ़ेद मक्खी नहीं आ पाती है। 40 से 45 दिन में जब आपके पौधे तैयार हो गए हैं तब आप इसको खेतों में रोपाई के लिए तैयार कर सकते हैं। तो खेतों की तैयारी के लिए आपको जो है इसमें खरीफ के मौसम में बेड सिस्टम लगाना पड़ता है। इसमें जो है आप बेड बनाने रिज एंड फरो टाइप का बेड बनाना होता है ताकि बरसात के मौसम में जब बरसात अगर ज़्यादा हो रही हो तो पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हम लोग जो है पौधों की रोपाई जो है बेड पर करते हैं। पौधों की दूरी जो है लगभग 45 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच में होती है। अगर आप 1 एकड़ में खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लगभग 100 ग्राम के बीज चाहिए होते हैं। 100 ग्राम के बीज से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं और 1 एकड़ में लगभग 4,500 के करीब पौधे आ जाते हैं अगर आपके पौधों के बीच में 45 सेंटीमीटर की दूरी है और रो टू रो की स्पेसिंग अगर 60 सेंटीमीटर है। तो एक बार जब आपकी रुपाई हो जाती है, रुपाई ज़्यादातर ये ध्यान दें कि दोपहर के समय करें, दो बजे के बाद या मतलब कि जब शाम के समय। इससे क्या होता है कि सुबह की जो तीव्र धूप होती है उससे पौधे कई बार सूख करके मर जाते हैं। तो अगर

0: आप दोपहर के समय कर रहे हैं या शाम के समय कर रहे हैं तो रात भर की जो ठंडक होती है उसमें पौधे खड़े हो जाते हैं और आपका जो क्रॉप स्टैंड होगा या पौधों की जो मृत्यु दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। एक बार पौधे जब आपके लग गए और 20 से 25 दिन के हो गए हैं रुपाई के बाद, तब आप अपना सेकेंड डोज ऑफ नाइट्रोजन दे सकते हैं जिसमें यूरिया बहुत कॉमनली यूज होता है। तो 25 दिन पर आप यूरिया का डोज दीजिए, उसके बाद फिर से 15 दिन के बाद फिर 40 दिन पर दीजिए। लगभग 40 दिन में पौधे पूरे पूर्ण तरह से उग जाते हैं और उसमें फूल आना शुरू हो जाते हैं। एक बार जब फूल आना शुरू हो गया तब जो है उसमें यूरिया एकदम मत दीजिएगा, उससे फल बनाने की क्षमता जो पौधों की बहुत कम हो जाती है। ये जो पत्ते मुड़ने की बीमारी है या मरोड़िया बीमारी है, ये ज़्यादातर जब पौधे उगते हैं उस समय ज़्यादा आती है। तो इससे बचने के लिए आप जो है विभिन्न दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो बाज़ार में बहुत उपलब्ध है वो है रोगर। रोगर जो है वो एक तरल दवाई है जिसको आप 2 ml पर लीटर डाल करके आप स्प्रेइंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप नीम बाण भी मिला सकते हैं। नीम बाण का जो मात्रा होनी चाहिए वो 5 ml पर प्रति लीटर के हिसाब से होनी चाहिए।
1: किसान साथियों, जैसा कि अभी हमने सुना, मिर्ची में पत्ते कोड़ाने की जो समस्या है वो हमेशा से बनी रही है। इसके लिए आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगर नामक जो दवाई है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही आप नीम बाण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए करते हैं चर्चा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर।
0: दूसरी दवाइयां जो हैं वो है एक अप्लॉड नाम की दवाई आती है बाजार में, वो 1.5 ml पर प्रति लीटर आपको डालना होगा। उसमें भी 5 ml नीम बाण मिला सकते हैं, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि एक बार जो दवाई इस हफ्ते अगर इस्तेमाल कर दिए हैं तो दूसरे हफ्ते आपको दूसरी ही दवाई इस्तेमाल करनी है। एक ही दवाई लगातार आप इस्तेमाल कीजिए, इससे क्या होता है कि सफ़ेद मक्खी जिससे ये बीमारी फैलती है उसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो दवाई कारगर नहीं रहती है। तो हर हफ्ते आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप दवाई बदल बदल करके स्प्रेइंग करें। और दूसरा तरीका जो आप सफ़ेद मक्खियों से बच सकते हैं, अगर आप खरीफ के समय ले रहे हैं तो अपने खेतों के चारों ओर मक्के की 2 से 3 क्यारियां लगा दें। ऐसा पौधा है जिससे सफ़ेद मक्खियां उसके पास नहीं आती हैं, तो इससे भी आपकी मिर्च की खेती बच सकती है। मिर्च में पत्ती संकुरण की जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। दूसरा, जब फल आने लगे तब आप अगर हरी मिर्च के लिए आप अपनी खेती कर रहे हैं तो एक बार जब पूरा पौधा आपका मिर्च से भर जाए तो उस समय आप जो है फल तोड़ लें। तो फल तोड़ने से ये फायदा रहता है कि फिर से नए फूल आते हैं और पौधों को और फल बनाने की क्षमता हो जाती है। इस तरह का काम एक फसल में 3 से 4 बार आप फल तोड़ सकते हैं और आप पौधों का उपज बढ़ा सकते हैं। अगर आप लाल मिर्च के लिए खेती करना चाहते हैं तो एक बार जो फल तैयार हो गए हैं, बन गए हैं, तो जब तक लाल नहीं हो रहे हैं फल, उनको तोड़िए मत। एक बार जब फल लाल हो जाते हैं तब आप लाल फल को तोड़ करके उसको हल्की धूप होती है उसमें सूखने के लिए डाल दीजिए, और धूप में जब वो सूख जाए तब आप उनको आराम से रख सकते हैं। लेकिन जब तक उसमें नमी बनी हुई है फलों में तब तक उसको अंदर मत रखिएगा, इससे फलों में सड़न होने लगेगी। तो ये अगर आप अपनाते हैं किसान भाइयों तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी मिर्च की फसल ले सकते हैं।
1: किसान साथियों, आप सुन रहे हैं खेती बाड़ी कार्यक्रम रेडियो टांटा व्हील 90.8 FM के साथ। किसान साथियों, हमने बहुत से डॉक्टरों के बारे में सुना है, बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं, हमारे इंसानों के लिए होते हैं, जानवरों के लिए होते हैं, लेकिन आपने नहीं सुना होगा कि पेड़ों के लिए भी डॉक्टर होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं एक सफल किसान से जो कि अपने गांव में ही पेड़ों के डॉक्टर के नाम से मशहूर हैं। किसान साथियों, जानेंगे उनकी कहानी, उससे पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा विराम और सुनते हैं एक सुंदर से प्यारे से मिली गीत को।
2: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।

0: पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। आइए जानते हैं एक सफल किसान की कहानी। जैसा कि हम बात कर रहे थे, हमने मनुष्यों के डॉक्टर सुने थे, हमने अपने नाक कान आंखों के डॉक्टर सुने थे, हड्डियों के डॉक्टर सुने थे, लेकिन आज हम सुनने वाले हैं पेड़ के डॉक्टर के बारे में। आज जी हाँ, हम जानने वाले हैं पेड़ के डॉक्टर की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं।
2: उनके गांव जहां पाड़ा में पेड़ों का डॉक्टर कहा जाता है। जी हाँ, कृषि क्षेत्र में तो इन्होंने एक साधारण से सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज ये आविष्कारक किसान बन चुके हैं। तो कैसा रहा इनका ये सफर और किस तरह से इन्होंने सफलता हासिल की, आइए देखते हैं।
3: चक्रधर प्रधान बरगढ़ जिला ओडिशा के रहने वाले एक सफल किसान है। बचपन में पढ़ाई में इनका मन बहुत लगता था, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इन्हें सातवीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। पढ़ाई छूट जाने के बाद वे अपने पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए और वे खेती के क्षेत्र में कुछ अलग करना चाहते थे। वर्ष 1985 में चक्रधर के खेत में अच्छी पैदावार हुई तो उन्हें खेती में आगे बढ़ने का हौसला मिला। इसके बाद चक्रधर ने

नींबू की खेती करनी शुरू की। इन्होंने अपने खेत में नींबू के लगभग 50 पेड़ लगाए। शुरुआत में चक्रधर ने 8,050 रुपए की लागत से इस काम को शुरू किया और 8,500 रुपए कमाए। 50-50 पेड़ हर साल लगाने वाले चक्रधर प्रधान ने 3 साल में ये महसूस किया कि हर साल इनका एक पेड़ मर जाता है या खराब हो जाता है। मरने और खराब होने वाली पेड़ों की संख्या हर साल बढ़ रही थी। ये बात चक्रधर को काफी परेशान कर रही थी। पेड़ों की मृत्यु से उन्हें आर्थिक नुकसान होने लगा। वे अपने पेड़ों से अपने बच्चों की तरह प्यार करते थे। वे इनकी तकलीफों को महसूस करते थे, उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझते थे। पेड़ों के मरने से वे काफी चिंतित थे। वे समस्या का समाधान खोज रहे थे। अपने पेड़ों की रक्षा के लिए उन्होंने हॉर्टिकल्चर के एक वैज्ञानिक से बातचीत की। वैज्ञानिक ने पेड़ों को देखने के बाद कहा कि इन पेड़ों की जगह वे दूसरे पेड़ लगा लें, ये तो खराब हो गए हैं। इस बात ने चक्रधर प्रधान को बहुत परेशान किया। तब इनके मन में ये प्रश्न उठा कि डॉक्टर आला लगाकर मरीज का इलाज करते हैं, क्या पेड़ों का भी आला से इलाज हो सकता है? इस जिज्ञासा ने चक्रधर प्रधान की बेचैनी बढ़ा दी। इन्होंने डॉक्टर से एक आला लेकर अधमरे पेड़ पर 20 मिनट तक कान लगाकर सुना और उस पेड़ से उन्हें कुछ आवाज मिली। आवाज को पहचानकर चक्रधर ने अनुमान लगाया कि जरूर ये कीड़ा है। इन कीड़ों के कारण ही इनके पेड़ सूख कर मर जाते हैं। इनके आला लगाकर पेड़ों को सुनता देख गांव के लोग अजीब समझ रहे थे, लेकिन चक्रधर को किसी की परवाह नहीं थी कि वे क्या सोच रहे हैं। वो तो बस अपने पेड़ों को बचाने में लग गए। उन्होंने पेड़ के नीचे खुदाई कर पाया कि कीड़े पेड़ की जड़ों को खा रहे हैं। वे अपने पेड़ों में लगने वाले कीड़ों पर कीटनाशकों का छिड़काव कर उन्हें बचाने का काम करते हैं। इस काम में सफलता मिलने पर लोगों को भी विश्वास हो गया कि वे सच में पेड़ों के दुख दर्द को समझते हैं। चक्रधर प्रधान अपने गांव में पेड़ों के डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही इनके गांव और आसपास के किसान अपने पेड़ों में उत्पन्न समस्याओं का समाधान कराने इनके पास आते हैं। इनकी मदद से किसान भी अपने पेड़ों की समस्या को सुलझाकर अपने पेड़ों को सुरक्षित करते हैं। चक्रधर प्रधान अपने इस ज्ञान को किसानों के साथ साझा करते हैं। आज वे अपनी ही नहीं दूसरों के पेड़ों की भी रक्षा करते हैं। इनके गुणों और खेती में दिए इनके योगदान के लिए कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अपने इस काम के लिए मान और सम्मान के साथ एक पहचान भी मिली है।

0: और छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांडिया भील 90.8 FM आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए चर्चा करते हैं पालक की खेती को लेकर। इसकी खेती हमें कब करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कौन सा बीज लाना चाहिए आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
2: आज की वार्ता में मैं आपको अगेती पालक की बुआई कैसे करें, उसी खेती से अधिक लाभ कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में आपको चर्चा करूंगा। आप देखें, पालक की जहां बात आती है, वैसे अमूमन तौर पे नॉर्मल किसान ये इसको सितंबर से अक्टूबर से लेकर के जनवरी फरवरी तक बुआई करता है और उस समय इसकी खेती ज़्यादातर करते हैं। लेकिन आप देखेंगे बाजार में इसकी बहुतायत मांग होती है और पूरे वर्ष भर इसकी खेती की जाती है। तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सिर्फ पालक की ही खेती कर कर के अपनी आमदनी में वृद्धि करते हैं। तो जहाँ तक संभव हो सके, हमारे किसान भाई, इस समय बाजार में पत्तेदार सब्जियों की मांग ज़्यादा होती है और यदि आप पालक की खेती करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलता है। आप देखें, पालक ऐसी सब्जी है जो कि पोषण से भरपूर है। आप इसमें अधिक से अधिक विटामिन, खनिज लवण, आयरन तथा कैल्शियम मिलता है। इसके अलावा इसमें बहुत अधिक रेशा होता है तथा कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल कम होता है, जिसकी वजह से ये हमारे डायबिटिक के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये पालक की सब्जियां अपने भोजन में समावेश करके अपने स्वास्थ्य को संतुलित कर सकते हैं और अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। इसकी खेती आमतौर से ओपन खेत में करते हैं, फील्ड में करते हैं, और अगर किसान भाई के पास अपनी ज़मीन हो तो उसमें भी छोटे खेती में कर सकते हैं। अगर उनके पास घर के पीछे पिछवाड़े में, अगर बैकयार्ड में जगह है, वहाँ भी इसकी खेती कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है, अगर फिर भी छत है आपके पास तो उस पर भी आप कंटेनर गार्डनिंग कर सकते हैं, रूफ गार्डनिंग जिसको हम कहते हैं उसको कर सकते हैं। और जो हमारे किसान भाई आर्थिक दृष्टि से खेती करना चाहते हैं तो वो हमारे जो ओपन खेत हैं, फील्ड हैं, खुले खेत में एक एक हेक्टेयर की खेती, जहाँ पे एक एक एकड़ की खेती करते हैं हमारे किसान भाई, उसमें खेती कर सकते हैं। तो मैं उसके लिए आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये समय बहुत ही अच्छा आ रहा है, इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप खेती की तैयारी अच्छे से करें। खेती की तैयारी में अगर आप देखें, क्योंकि ये पत्तेदार सब्जियाँ हैं, इनमें अगर खेती में जीवांश अधिक होगा तो पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसकी वजह से आप अधिक उत्पादन भी ले सकेंगे। तो ये जहाँ तक बात हम देखने की है कि आप 25 टन सड़े गोबर की खाद अगर मिल जाए तो आप अपने खेत में एक हेक्टर के हिसाब से मिलाएं, और नहीं तो आप फार्म यार्ड कंपोस्ट हो उसको भी मिला सकते हैं। अगर संभव हो तो आप वर्मी कंपोस्ट भी अपने खेत में मिला के डाल सकते हैं, तो जिससे कि ये भूमि जो है उर्वरा शक्ति इसकी बढ़े और उसमें जब आप बिजाई करेंगे तो पौधों की बढ़वार अच्छी हो सके। इसके साथ ही जब आप खेतों की अच्छी तरह से जुताई कर लेते हैं, उसमें ये आप जो सड़ी खाद है कंपोस्ट की मिला लेते हैं, मिलाने के बाद एक दो हल से अच्छी से जुताई करें और बिल्कुल ज़मीन भुरभुरी हो जाए, पानी लगा करके बिल्कुल जब उसमें ओट आ जाए तब आप उसकी जुताई करें। जुताई करने के बाद आप देखेंगे तब ये बिजाई के लायक इसको आपको तैयार करनी है। जैसा बारिश का मौसम है इस समय, तो हमारे किसान भाई इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर उन्हें रेज्ड बेड पे खेती करनी है, जैसे ऊंची उठी हुई क्यारियां बनानी हैं, तो आप उसके लिए 1 मीटर चौड़ी क्यारियां बना सकते हैं या 80 से लेकर 1 मीटर चौड़ी क्यारियां टमाटर के लिए भी जैसे बनाते हैं, इस तरह से ऊंची उठी हुई 1 फुट लगभग ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएं और बीच में 2 क्यारियों के बीच में कम से कम 1.5 फुट की जगह छोड़ें, जिससे कि आने जाने में और उसमें पानी देने में लगाने में आपको असुविधा ना हो। तो इस तरीके से आप रेस्ट बेड पर खेती कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर किसान हमारे ऐसा भी देखा गया है कि वो बिल्कुल फ्लैट बेड में भी खेती करते हैं, बिना मेड़ बनाए हुए उस पर भी खेती कर लेते हैं। तो वो करते हैं, उनकी अगर ज़मीन में पानी के निकास का अच्छा प्रबंध है तो वो आप फ्लैट बेड में भी खेती कर सकते हैं। इसको अब खेती करने के लिए मैं आपको पहले उन्नत किस्मों के बारे में बता देना चाहता हूँ कि आप देखें, पालक की बहुत अच्छी किस्में, बहुत हमारे स्थानीय किस्में भी हैं, किसानों के बीच में प्रचलित हैं, वो अपनी उगाते हैं, लेकिन कुछ अच्छी किस्में हैं जो हमारे पूसा संस्थान से निकाली गई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से। इसमें पूसा हरित एक बहुत ही अच्छी किस्म है जो कि हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत उगाई जाती है और मैदानी क्षेत्रों में भी इसकी खेती की जाती है। इसके अलावा दूसरी एक और किस्म है पूसा भारती, ये बहुत ही उत्तम किस्म है। अगर आप देखेंगे इसकी पत्तियों में तो इसमें रेशा तो होता है, लेकिन अगर आप जैसे पत्ती को मोड़ें तो पत्तियां बिल्कुल आसानी से मुड़ जाती हैं और कड़क करके टूटती हैं। तो इसकी एक खास पहचान है। अगर आप इसको आप खेती करते हैं तो इस जो अन्य किस्मों की अपेक्षा इसका बाजार भाव ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा ऑल ग्रीन किस्म है जो कि बहुतायत है, प्रचलित है किस्मों किसानों के बीच में। ये भी एक किस्म है, पूसा से भी निकाली गई है, इसकी भी खेती कर सकते हैं आप। तो ये जो कुछ उन्नत किस्में हैं पालक की, आप इसके बीज उपलब्धता अपने लिए सुनिश्चित कर लें जहाँ से भी आपको संभव हो, भारत अनुसंधान संस्थानों से या देश के बीज विक्रेता जहाँ से आप करते हैं वहाँ से प्राप्त कर लें। आप इसको ले करके अपने पास सुनिश्चित कर लें क्योंकि बुआई का समय है, बुआई कर सकते हैं आप। वैसे तो आमतौर पे जो हमारे बहुत ही वैसे किसान हैं वो लगभग साल भर इसकी खेती हर मंथ में बुआई कर करके इसको बाजार में बेच करके इसका पैसा मुनाफा कमाते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जब एक हेक्टेयर में आप खेती करना चाहते हैं तो लगभग 30 से 40 किलो इस बीज पर्याप्त होता है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम थोड़ी सी बीज की मात्रा अधिक लगती है। और यही अगर आप जाड़ों के मौसम में करेंगे तो 25 से 30 किलो बीज काफ़ी पर्याप्त होता है। अब जहाँ तक बात है इसमें नत्रजन देने की, देखिए ये पत्तीदार सब्जियाँ हैं, इसमें आपको नत्रजन की मात्रा का ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। यदि आपने अच्छी सड़ी गोबर की खाद खेत में मिला रखी है, चाहे आप कंटेनर में कर रहे हों, गमलों में कर रहे हों, तो उसमें अच्छे से इसका जमाव होगा। अगर जहां हम खुले खेतों की बात करते हैं तो उसमें हम 75 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश की मात्रा संस्तुत करते हैं इसकी खेती के लिए। जहां तक आप अंतिम जुताई के समय में ये आप ध्यान रखें कि 25 किलो नत्रजन, 50 किलो फास्फोरस और 40 से 50 किलो पोटाश की मात्रा खेत में अंतिम जुताई के समय मिला करके अच्छे से खेत की जुताई कर दें और बिल्कुल पानी लगा करके उसे बुआई के लिए तैयार रखें। जब आप इस तरीके से करें और जो बाकी 50 किलो मात्रा बचती है नत्रजन की, तो इसको आप 30 दिन पे और 45 दिन पे इसका छिड़काव करते हैं, या यूं कह लें कि जब पहली कटाई कर लेते हैं या दूसरी कटाई के समय में 25-25 किलो की मात्रा का छिड़काव करके आप अपने पौधों को देने के लिए ध्यान रखें। तो अब आप बीज की बुआई कैसे करें, जब आप देखें इसमें कम से कम 30 सेंटीमीटर की दूरी पे नाली निकालें, लाइन की कतार की कतार बनाएं। अगर आप मेड़ों पे बो रहे हैं, 1 मीटर चौड़ी मेड़ है, तो आप इसमें कम से कम आप जो है 4 लाइनें या तो 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर की दूरी पे लगा के 4 लाइनें आप बुआई कर सकते हैं। यदि आपके पास ड्रिप की सुविधा है तो भी आप इस रेस्ड बेड पे जो ऊंची उठी हुई मेड़े हैं इस पे भी आप अगर 2 लाइन पाइप बिछाते हैं तो उसके 2 लाइन पाइप के 2 लाइन इधर और 2 लाइन दूसरी तरफ, इस तरीके से इसकी आप बिजाई कतारों में करेंगे तो घास और पतवार जो खर पतवार है निकालने में आसानी होगी। तो अगर आप जब देखें जैसे ही आप बुआई कर लें और उसके बाद ध्यान रखें कि इसमें जो खर पतवार भी कभी कभी उग आते हैं, तो उसके नियंत्रण के लिए अगर आपके पास पेंडीमेथिलीन दवा है तो ये 3 लीटर जो है दवा और 1000 लीटर पानी में घोल बना करके 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होता है। तो इससे जो है आपका कम से कम 20-25 दिन कोई घास उसमें नहीं निकलेगी और ये जो पौधा अपना है पालक की पत्तियाँ, ये जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा और बहुत ही बढ़वार अच्छे तरीके से होगी। हो सके अगर आपके पास सूखी घासें हैं या पुआल हैं धान के, तो इसको भी अगर आप पलवार के रूप में उस पर बिछा देंगे तो इससे 2 फायदे होंगे। एक तो ये है कि मॉइस्चर जो नमी है हमारे खेत में वो बनी रहेगी जो बीज के अंकुरण को सहायक होगी। दूसरी बात है कि अगर तेज वर्षा आ जाती है किसी कारण से तो ये तेज वर्षा से बीज को बहने से बचा सकती है। तो इसलिए अगर आप सूखी पलवार डाल दें, अगर ये आपके पास सुविधा नहीं है, अगर आपके पास सुविधा है पॉलीथीन की है तो आप उसको भी बिछा सकते हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद उसे हटा दें जिससे कि अंकुरण में कोई दिक्कत ना हो और बीज अच्छे से जमाव हो सके। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप पालक की अधिक से अधिक गुणवत्ता युक्त फसल ले सकते हैं। एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए इसमें बरसात का मौसम है तो जैसे ही जमाव आपका हो जाता है, 1 हफ्ते 10 दिन के पौधे हो जाते हैं, तो उस पर छोटे छोटे कीड़े दिखाई देते हैं, पत्तियों में छेद करने वाले दिखाई देते हैं, रस चूसने वाले दिखाई दे सकते हैं, जो कि जाड़ों में बहुत कम मिलते हैं। कि अगर ऐसी चीज दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कुछ कीड़े दिखाई दे रहे हैं, लूपर दिखाई दे रहे हैं या कटुए कीट की तरह दिखाई दे रहे हैं, तो आप नीम आयल आती है या नीम बीज अर्क का घोल आता है 5% का, इसका 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके यदि आप पत्तियों पे छिड़काव कर देते हैं तो आप इन कीड़ों से अपनी फसल को बचा सकेंगे। ये जो रस चूसने वाले हैं या कुछ कुतरने वाले हैं, तो इनसे आपकी रोकथाम बड़े आसानी से इन कीटों का हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और पानी जो सिंचाई की बात है, इसको भी आपको देने की आवश्यकता जरूर है, क्योंकि अगर बीच में बरसात हो जाती है तो ठीक है, नमी खेत में है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अगर लंबे समय तक बारिश नहीं होती है फिर आपको देखना है कि फिर 5 से 7 दिन के बाद अगर जर्मिनेशन हो गया है, पौधे मुरझाने की अवस्था आने वाली है, तो उसमें आप सिंचाई जरूर करें। जब भी करें आप हल्की सिंचाई करें, और अगर किसी कारण से आपको दिखाई दे रहा है कि अगर उसमें कहीं डैम्पिंग ऑफ की बीमारी आ रही है, तो हो सके तो जो आप सिंचाई वाले पानी में आप डाइथेनियम 45 का घोल बना दें, तो उससे सिंचाई कर देंगे तो ये जो आपका विल्टिंग वाला पौधा है ये बीमारी से बचाव हो सकेगा। तो इस तरीके से अगर आप वैज्ञानिक ढंग से खेती करेंगे, और अगर आपके पास, एक बात और हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहते हैं, यदि आपके पास पाली हाउस है, इस समय गर्मी में अभी आपने कुछ लगाया नहीं है, तो आप उसके अंदर में भी पालक की बहुत अच्छी खेती ले सकते हैं, जो कि 6 से 8 हफ्ते में ही इसको आपको फसल मिल जाती है, और इससे अधिक से अधिक आपको दाम भी बाजार में मिल जाएगा। तो आप उसका उपयोग, खुले अगर हैं, खाली हैं, तो उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, अगर हमारे किसान भाई ऐसे हैं कि खेत पाली हाउस करते हैं और उनके पाली हाउस में लगातार खेती करने से उसमें क्षारीय भूमि बन गई है, जिसका पीएच मान 8 साढ़े 8 तक पहुंच गया है, तो मैं उनके लिए ये संस्तुत करना चाहता हूं कि अगर संभव है तो वो इस समय, जब उनका खेत अभी खाली है, दूसरी फसल लगाने का टाइम अगस्त तक आता है, तो उसमें एक फसल पालक की ले लें, तो ये काट हैं, ये पालक सोख लेते हैं और अगली फसल के लिए बहुत ही ये जमीन अच्छी मानी जाने लगती है। फिर आप अगली फसल जब आप उसमें लगाएंगे तो आपकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। तो आपको एक अतिरिक्त लाभ उस पालक की खेती से आप अभी ले सकते हैं, जो कि आप 6 से 8 सप्ताह में ही तैयार हो जाती है। तो इस समय आप देखेंगे, अगर आप 6 सप्ताह में लेते हैं, तो हमारे किसान भाई हार्वेस्टिंग का जो बात हम करते हैं, अच्छी जब फले ये पौधे बन जाते हैं तो आप 6 सप्ताह में एक कटाई ले सकते हैं, और अगर कटाई नहीं कर पाते हैं तो कोई कोई किसान भाई जड़ सहित पौधे को उखाड़ करके बाजार में फिर बेचने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि उनका ये मकसद होता है कि हमें बस तुरंत अगली फसल दूसरी लेनी है इस वजह से। और अगर पालक की फसल लेनी है तो आप एक कटाई करके उसमें 25 किलो नत्रजन छिड़काव करके हल्की सिंचाई कर दें, तो दूसरी ग्रोथ जल्दी से आ जाती है, और फिर आप 8 हफ्ते तक दूसरी कटाई करके आप फिर पालक की बाजार में बिक्री कर सकते हैं। इससे आप इस तरह से अधिक लाभ, मुनाफा कमा सकते हैं, कम समय में अधिक मुनाफा आपको प्राप्त हो सकता है।
0: आप सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांडिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो, आपड़ी बातें।
1: किसान साथियों, खेती बाड़ी कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांडिया भील 90.8 FM के साथ।

0: किसान साथियों, एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आपका इस छोटे से ब्रेक के बाद। किसान साथियों, आपको ले चलते हैं मिर्ची के खेत में और जानेंगे हमारे किसान भाई ने इस मिर्ची की खेती को कैसे किया है। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी।
1: तो इसको तो पहले ये बताइए, लगाने से पहले एक किसान जो मिर्च लगाना चाहता है वो क्या क्या करे, कितनी जुताई कराई आपने?
2: इसमें तीन जुताई हुई
1: है। तीन जुताई बढ़िया से,
2: एक मिट्टी को पलट हल से,
1: मिट्टी
2: दो बार
1: पलट हल से
2: मीटर से जुतवा करके उसके बाद मेड़ बनवाए।
1: ठीक है, मेड़ की दूरी क्या रखी है आपने?
2: मेड़ की दूरी 3 फीट है।
1: 3 फीट मेड़ की दूरी है। पौधे से पौधे की दूरी क्या लगाई आपने?
2: 1 से 1.25 फीट।
1: 1 से 1.25 फीट की दूरी, मतलब पौधे से पौधे की दूरी आप 1 से 1.25 फीट रखें और मेड़ से मेड़ की दूरी
2: 3 फीट
1: रखें। इस पे जो आपने रोप लगाया है वो दो दो प्लांट करके लगे हैं?
2: दोनों है।
1: अच्छा, दो भी लगे हैं, और
2: जो कमजोर पौधा था वो दो लगे हैं, जो मजबूत पौधा था वो
1: जो पौधा मजबूत था उसको हमने एक लगाया है और जो कमजोर थे उसका दो लगाया है। इसमें जुताई का जब आप खेत बना रहे थे बोने के लिए तो क्या क्या डाला है आपने?
2: उस समय सर हम इसमें गोबर की खाद में 1 बोरे सड़े हुए गोबर की खाद में प्रीमियम मिला के 1 लीटर इसमें
1: एक तो आता है बायो का बैक्टीरियल प्रोडक्ट, ग्रीन प्लांट बायो प्रोडक्ट का प्रीमियम 1 बोरे सड़ी हुई खाद में मिलाया और डाल दिया। ठीक है, रासायनिक फर्टिलाइजर की मात्रा बताइए।
2: रासायनिक फर्टिलाइजर की टोटल इसमें है 2 बोरे डीएपी पड़ी है, 2 बोरे यूरिया बस।
1: डीएपी कब कब दिया है आपने?
2: डीएपी वही मेड़ चढ़ाते समय, जब पौधे लग गया उसके बाद चढ़ाते समय इसमें
1: दिया। अच्छा, मतलब पहली डीएपी आपने दिया जब आप प्लांट पकड़ लिया, गुड़ाई कराया इसकी और मेड़ चढ़ाते समय डीएपी डाल के दे दिया। फिर दोबारा भी दिया डीएपी?
2: एक बार दिए हैं,
1: थोड़ा सा
2: दिए हैं।
1: अच्छा, थोड़ा। ठीक है, यूरिया कितना दिया है आपने?
2: वही 2 बोरे की लगभग यूरिया भी दिया अभी तक।
1: अच्छा, अभी तक ये कब का लगाया है आपने इसको?
2: अगस्त का लगाया।
1: अगस्त फर्स्ट वीक का, अगस्त फर्स्ट वीक का लगा है। 2 बोरी डीएपी और 2 बोरी यूरिया इन्होंने लगाया है। केमिकल स्प्रे की बात करें हम मिर्च में, मिर्च में बहुत सारा किसान हमारा परेशान हो जाता है, तो मिर्च में केमिकल स्प्रे कितना हुआ है?
2: इसमें सर केमिकल तो नहीं डाले हैं, हाँ दूसरे एक और ही ऑर्गेनिक डाले हैं।
1: मतलब सहारा लेना पड़ा है, थोड़ा सा सहारा लेना पड़ा है। चलिए बताइए क्या क्या और कैसे प्रयोग किया है इसमें आपने?
2: इसमें शुरू में वही स्प्रे करते समय
1: अर्गोमाइट और
2: वायरस।
1: ये किस लिए, ये पहले किसानों को बताते चलिए इसका स्प्रे क्यों हुआ है?
2: ये माइट और थ्रिप्स के लिए हुआ,
1: माइट थ्रिप्स और सफेद मक्खी के लिए। ठीक है, जिससे पौधे जो है ये चिड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या दिया? ये SA90 स्टिकर। और ग्रोइंग के समय क्या दिया है आपने ग्रोथ के लिए?
2: ग्रोथ के लिए एक नाइट्रो किंग है, एक ग्रो आता है उसको डाले।
1: कितनी स्प्रे हुई है उसकी?
2: उसकी 2 स्प्रे हुई है सर।
1: तो 2 स्प्रे करने के बाद इसकी ग्रोथ बढ़िया मिली आपको
2: जी।
1: फिर ग्रोथ के बाद क्या डाला आपने?
2: उसके बाद ब्लूम और नाइट्रो किंग का
1: फूल जब आया तो कितने दिन बाद लगाने के, कितने दिन बाद?
2: यही 1 महीने बाद।
1: 1 महीने बाद लगभग 30-35 दिन बाद
2: जी।
1: ठीक है, ब्लूम नाइट्रो किंग आपने डाला
2: जी।
1: ये ब्लूम और नाइट्रोकिन, मित्रों मैं बताऊं ब्लूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आता था कम से कम, और इस बार कितना आया?
2: अब की बार लगभग 16-17 हजार में होगा।
1: 16-17 हजार में। एक तो देखिए, हम जब ऑर्गेनिक खेती ऑर्गेनिक प्रोडक्टों का प्रयोग करेंगे अपने खेतों में, प्लांट को न्यूट्रिशन देंगे, तो पहला फायदा तो ये हुआ कि इनकी लागत धीरे धीरे कम हुई, दूसरा उत्पादन 1.5 गुना हो गया, और सबसे अच्छी बात यह है कि बीमारियां इनके खेतों में नगण्य है।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील, रोज हांजे 6-8 वागे आपड़ी समस्या अने आपड़ो समाधान। आपु रोज करहु वातें खेती ना बारा मा अने कमाई ना बारा मा, एत्रे हमरता रेजो टांटिया भील नो रेडियो स्टेशन, रेडियो स्टेशन 90.8 FM।
3: सुन रहे हैं झाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: किसान साथियों, आज के खेती बाड़ी कार्यक्रम में हमने मिर्ची से जुड़ी हुई बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियों को जाना, साथ ही हमने एक सफल किसान जो कि डॉक्टर है उनकी कहानी को जाना, और पालक की खेती को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। किसान साथियों, आज के लिए बस इतना ही, वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपसे पुनः कल मुलाकात होगी इसी समय इसी वक्त। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ रेडियो टांटिया भील 90.8 FM छाबुआ की आवाज।
3: आप सुन रहे हैं छाबुआ का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो टांटिया भील 90.8 FM। आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें।
0: रेडियो स्टेशन 90.8 FM टांटिया भील रोज हांजे 6 થી 8 વાગે આપણી સમસ્યા અને આપણો સમાધાન આપું રોજ કરું વાતે ખેતીના બારામાં અને કમાઈના બારામાં એત્રે હમળતા રહેજો ટાંટિયા ભીલનો રેડિયો સ્ટેશન 90.8 FM

0: आज के कलाकार के इस तेजी से बढ़ते हुए मंच पर आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम स्वागत करते हैं उन सिंगर्स का, उन टैलेंट्स का, उन गायकों का, उन गायिकाओं का जो अपने टैलेंट का मजा ले रहे हैं और हम भी उनको पूरा पूरा प्रोत्साहित करने की कोशिश में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं और मिलते हैं आज एक और टैलेंट से। आज के कलाकार का ये मंच दोस्तों आप जानते हैं नए कलाकारों का है, नए गायकों का है, नई प्रतिभाओं का है। और आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ हैं चंद्रकांत कांबले जी। बाकी चंद्रकांत अपने बारे में खुद बताएंगे। चंद्रकांत जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सुनने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए ना, आप कहाँ हैं, क्या करते हैं।
1: सर मैं पुणे में रहता हूँ, धायरी में, और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ, कस्टमर केयर में है, विप्रो में।
0: ओके, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों आपने सुना कि चंद्रकांत जी पुणे में हैं, किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, एम आई राइट चंद्रकांत जी?
1: हाँ सर, हाँ सर।
0: ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस प्रोग्राम को चंद्रकांत जी के ही गाए हुए इस बहुत ही प्यारे से गीत से।

0: बहुत बढ़िया चंद्रकांत जी, चलिए हमें बताइए ना कि आप जब छोटे थे, जब बचपन में, तो आप क्या बनना चाहते थे?
1: वैसे तो मैं वकील बनना चाहता था।
0: ओके।
1: मतलब पिताजी का ये था कि वकील बनो, घर में सब टीचर एक है, इंजीनियर है, तो कोई अलग। तो वकील बनने के लिए पढ़ाई भी किया मैं थोड़ा बहुत, फिर बीच में ही पिताजी का निधन हो गया ना, तो मेरा पढ़ाई वही रुक गई थोड़ा।
0: ओके ओके ओके ओके, कोई बात नहीं।
1: उसके बाद मैं
0: जी, उसके बाद?
1: उसके बाद मैं ग्रेजुएशन किया फिर मैंने।
0: ओके,
1: हाँ, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हबीबपुर में आ गया मैं।
0: बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारे हमारे जिंदगी में कई चीजें विधाता तय करता है, कई डेस्टिनीज होती हैं जो हम फॉलो करते हैं। कई बार जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान हमको वो नहीं देता जो हमको अच्छा लगता है, भगवान हमको वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो इसलिए जो कुछ भी मिला है वो बहुत अच्छा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारा सा गीत चंद्रकांत जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। चंद्रकांत जी, मुझे बताइए ना, आपके बचपन से लेकर अभी तक में की जिंदगी में आपके फेवरेट टीचर कौन थे और क्यों?
1: मेरे फेवरेट टीचर थे एस पाटिल सर, जो इतने अच्छे थे ना।

0: वो जो जितने भी गरीब लोग है ना, जितने भी, उनको मुफ्त में पढ़ाते थे, ट्यूशन रहता था तो पूरा मुफ्त में पढ़ाते थे वो। इसलिए वो मेरे सबसे फेवरेट है, क्योंकि मार भी बहुत पड़ती थी और वो बहुत स्टिक भी बहुत थे।
1: अरे वाह,
0: उनकी वजह से तो हम अच्छे पढ़ पाए, नहीं तो हमारा अच्छा पढ़ना पॉसिबल नहीं था।
1: आपने ठीक कहा चंद्रकांत भाई। किसी भी शिक्षक का या टीचर का उद्देश्य होता ही यही है कि उसके सानिध्य में, उसके अंदर जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो बेहतर पढ़ ही जाएं। कोई टीचर इस दुनिया में ऐसा है ही नहीं जो ये चीज ना चाहता हो, और उसके लिए उसको अगर थोड़े से कड़े कदम उठाने पड़ते भी हैं तो दिली इच्छा उनकी यही होती है कि बच्चा पढ़े और अच्छी राह पे चला जाए। बहुत खूब। तो दोस्तों आइए सुनते हैं एक और बहुत ही प्यारा सा गीत जो मैं चंद्रकांत जी के ही टीचर को डेडिकेट करना चाहूंगा। चलिए सुनते हैं।

0: बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी गायकी। चंद्रकांत भाई, मुझे ये बताएं ना, ऐसे कौन से तीन शब्द हैं, वर्ड्स हैं, जो आपको सबसे अच्छा बयान करते हैं, आपको डिस्क्राइब करते हैं? अगर तीन शब्दों को कहा जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ओके, हम चंद्रकांत जी के बारे में बात कर रहे हैं।
1: मेरा मेरे तीन शब्द, एक है ईमानदारी, दूसरा है कृतज्ञता और तीसरा है मदद करना।
0: जी,
1: तो ईमानदारी ऐसा है कि जिंदगी में ईमानदार रहना बहुत जरूरी है। एक अंदरूनी खुशी मिलती है ईमान, क्योंकि बचपन से पिताजी भी बहुत ईमानदार थे, पहले से
0: जी
1: क्लास वन ऑफिसर थे, लेकिन पूरा ईमानदार थे। वही हमारे अंदर गुण आ गए सब भाइयों के। और कृतज्ञता यानी धन्यवाद बोलना चाहूंगा सबको, क्योंकि मेरे जिंदगी में जो भी लोग आए ना, मैं सबको कृतज्ञता करता हूँ। यानी धन्यवाद परोपकार उतनी चाहिए ना, धन्यवाद बोलने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और मदद, हेल्पिंग, कैसा है कि हेल्पिंग पीपल, जो हेल्प करने से जो समाधान मिलता है ना, वो खुशी जो मिलती है, इंटरनल हैप्पीनेस, वो किसी में नहीं, अलग ही खुशी मिलती है वो हेल्प करने से।
0: बहुत सही बात कही आपने, बहुत बहुत अच्छी बात कही। किसी की भी मदद करने से जो खुशी मिलती है, वो कितने भी बहुत सारे पैसे खर्च करके कोई चीज खरीदना कभी मिल ही नहीं सकती। बहुत बहुत प्यारी बात कही आपने। दोस्तों, चलिए फिर हो जाए इसी बात पर एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत चंद्रकांत जी की आवाज में।

0: बहुत बढ़िया। चंद्रकांत जी, आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी हॉबीज क्या हैं? गाना गाने के अलावा बताइएगा।
1: हाँ, गाना गाने के अलावा मैंने क्रिकेट बहुत खेला है। क्रिकेट खेलना देखना पसंद करता हूँ
0: जी।
1: मूवीज देखना पसंद करता हूँ, न्यूज देखता हूँ और प्ले देखता हूँ। नाटक जो होते हैं ना,
0: जी जी
1: वो प्ले थिएटर में जो नाटक होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो ज्यादा पसंद है, वो देखता हूँ बहुत सारे।
0: तो हमें
1: मराठी
0: कौन से
1: हमारे यहाँ के, हाँ
0: अच्छा मराठी नाटक,
1: मराठी नाटक हमारे यहाँ के जो होते हैं ना,
0: तो अपने कुछ
1: मैं वो थोड़ा
0: फेवरेट
1: बहुत देखते
0: मराठी
1: हुए
0: नाटकों के
1: ज्यादा।
0: नार
1: हाँ, नट सम्राट है जैसे, वो देखा है
0: जी
1: इस तरह, प्रेमाची खरी गम्मत है,
0: जी
1: एका लगनाची दूसरी गोष्ट, ऐसा दो चार नाटक है ना, वो
0: ओहो,
1: बहुत पसंदीदा है।
0: और आपकी सब

करते हैं, तो जिनमें जिन कंटेंट में जिस भी कंटेंट में थोड़ा मीनिंग होता है, थोड़ा संजीदापन हाँ. होता है, वो चंद्रकांत भाई को पसंद है. तो चलिए सुनते हैं दोस्तों एक प्यारा सा गीत चंद्रकांत जी की ही आवाज में.

0: बहुत बढ़िया चंद्रकांत, मुझे ये बताएं मेरे भाई कि कई बार होता है हमारी चलती हुई जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में, कुछ लोगों के मैनरिज्म में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हमारा मूड खराब हो जाता है। लोगों के व्यवहार में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपका मूड खराब हो जाता है?
1: मूड ऐसा है, मूड खराब नहीं होता, मैं क्या करता हूँ, बाधा तो आती नहीं, लेकिन दिल से जो चाहते हैं ना वो जो मांगते हैं जो दिल से वो मिल ही जाता है वैसा मुझे। लेकिन मूड में थोड़ा सहमा सा रहता हूँ, यानी ऐसा
0: मतलब आपके कौन सी बाधाएं आ जाती हैं ऐसी जो आपकी खुशी को खराब कर देती हैं?
1: खुशी को खराब करने वाली कोई बाधा नहीं आती है ऐसे,
0: ओके।
1: मैं थोड़ा समझ के लेता हूँ उन दूसरों के फीलिंग्स को।
0: जी ठीक कहा आपने, ठीक कहा। मतलब ये समझदारी तो दरअसल इसी में है चंद्रकांत भाई की, अपनी खुशी को हम किसी और को ना सौंपें, कोई भी आकर हमारी खुशी को यूं ही खराब करके कैसे जा सकता है। सही कहा,
1: हमारी वजह से दूसरों का दिल ना टूटे यही देखता हूं मैं।
0: जी
1: थोड़ा हम सह लेते हैं दुख,
0: क्या
1: उनके जीवन में खुशी आ जाए।
0: क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बड़ी ही प्यारी बात कही। तो चलिए दोस्तों, इसी

0: बहुत प्यारा गीत। चंद्रकांत भाई मुझे ये बताइए ना, आपकी जिंदगी में सबसे गौरवपूर्ण उपलब्धि आज तक की डेट में क्या रही?
1: हाँ, वो मैं कॉलेज में फर्स्ट प्राइज मिला था सिंगिंग कंपटीशन में
0: जी।
1: वो मैं कॉलेज में था ना, तब मिला था मुझे, वो मेरा फर्स्ट वाला ही है। उसके बाद मैंने क्रिकेट बहुत खेला था, तो क्रिकेट में फर्स्ट नंबर आता था। हम ग्रुप में खेलते थे ना,
0: जी।
1: तो टीम रहती थी हमारे गांव में, तो बहुत सारे ट्रॉफीज जीते वहां हमने, बड़े
0: ओके।
1: बड़े। हाँ हाँ
0: तो ये आपकी जिंदगी की कुछ गौरवपूर्ण उपलब्धियां हैं जिन पर आपको सचमुच बहुत गर्व है।
1: हाँ
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, चंद्रकांत जी की इन गौरवपूर्ण उपलब्धियों के ही नाम ये प्यारा सा गीत है।

0: चंद्रकांत भाई, आज तक की जिंदगी में आपको सबसे अच्छा गिफ्ट क्या मिला है और किसने दिया है?
1: सबसे अच्छा गिफ्ट तो मैं ऐसा मानता हूँ, मेरे बेटी का जन्म मेरी बेटी का जन्म हुआ ना, वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है।
0: दैट्स वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। जाहिर से बात है, आपकी जिंदगी रोशन हुई होगी, सज गई होगी, ये बहुत प्यारी बात है। बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, चलिए फिर आगे चलते हैं और चंद्रकांत जी की आवाज में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत। चंद्रकांत भाई, क्या आपने कभी कोई छोटी मोटी चीटिंग की है? कभी एग्जाम में या दुकान पर कुछ मिठाई लेकर खा ली हो, घर पे कुछ मिठाई खाई हो, समथिंग लाइक दैट?
1: नहीं, एग्जाम में तो कभी नहीं किया, जो भी है ईमानदारी से ही किया है। जो भी मार्क मिले वो अंदरूनी खुशी अलग ही होती है। जो ईमानदारी से किया ना, वो कितना भी कम भी मार्क पड़े तो अपना अपना खुद का ईमानदारी से किया होता वो अच्छा ही लगता है,
0: जी
1: वो खुशी नहीं मिलती। फिर ऐसा खाने के पास हम सब, मेरा पहला सही वसूल है, मेरे माँ कहती थी ना, एक तिल सात जन में बांटू, छोटा सा
0: ओके
1: तिल, तो
0: ओ
1: वही हमारा गुण है हमारे सर, क्यों हम मिल बांट के खाते थे। ऐसा चुरी चुकी कुछ खाया, ऐसा कुछ किया नहीं ज्यादा जिंदगी में
0: ओहो,
1: ऐसा कुछ।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं तो इस सवाल को पूछने का उद्देश्य सिर्फ इतना सा होता है कि हमारे
1: हाँ
0: दिल में कोई छोटा सा बच्चा होता है जो
1: हाँ
0: कभी एक टॉफी ज्यादा खा ली या एक पेस्ट्री ज्यादा खा ली या एक रसगुल्ला, वो छोटा सा बच्चा खेलता रहता है, उसको जानने की इच्छा के चलते ये सवाल पूछते हैं। लेकिन बहुत सुंदर आपने कहा, आपकी माँ कहती है कि एक तिल को भी सात लोगों में बांट के खाओ, क्या बात है, बहुत खूब। तो चलिए दोस्तों, हो जाए फिर एक बहुत ही प्यारा सा गीत चंद्रकांत जी की आवाज में।

0: चंद्रकांत जी, अब हम हमारे प्रोग्राम की उस जगह पर आ गए हैं जहां मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के साथ कुछ बात कीजिए, कुछ संदेश दीजिए उनको।
1: हाँ, वही, सदा खुश रहिए, स्वस्थ रहे, एक दूसरे की मदद करते रहे, दया कृपा प्रेम बांटते रहे, सब हंसी खुशी जिए बस।
0: क्या बात है जी, जी। बहुत ही क्यूट, बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही सच्चा सा संदेश। दोस्तों, आपने सुना, चंद्रकांत कांबले जी कितनी खूबसूरती से आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। चंद्रकांत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो कैसा लगा दोस्तों आज के टैलेंट से मिलकर? हमें अपने फीडबैक जरूर दें, और आप भी अगर किसी टैलेंट को जानते हैं तो हमें संपर्क करें। हम समीर और नितिन आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।

नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के कलाकार के इस प्यारे से प्रोग्राम में, जहां कुछ ख्वाब आवाज बनकर सचते हैं, कुछ जज्बात गीतों में ढल जाते हैं, और जब दिल गाता है तो हर सुनने वाला अपना सा लगने लगता है। आज हम लेकर आए हैं कुछ ऐसे ही कलाकार जिनकी आवाज में सच्चाई है और सुरों में जादू। तो चलिए इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करें।

0: आइए दोस्तों, एक और बिल्कुल अनप्लग्ड सा आज के कलाकार का प्रोग्राम लेकर हाजिर हूं आपके पास। और आज जो मेरे दोस्त टैलेंट प्रतिभा आप सब लोगों के सामने जो मौजूद है वो है अर्पित साहू भाई। हम उन्हीं से बात करेंगे। अर्पित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। तो चलिए, हमारे सारे सुनने वालों को, हमारे सारे श्रोताओं को थोड़ा बताइए ना, भला आप कहाँ हैं, क्या करते हैं, कौन हैं आप?
1: बिल्कुल समीर जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर एंड फॉर ऑल योर लिसनर्स अ बिग गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम बेसिकली फ्रॉम बैंगलोर। अच्छा, इज इट ओके इफ आई कीप इट इन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज वाइज?
0: मेरी को अर्पित भाई, आप मतलब जैसे आपने बताया था कि अभी आप एमपी से हो, तो हिंदी में ज्यादा मतलब आप समझो ना, 80% हिंदी 20% इंग्लिश चलेगा, मिक्स कर सकते हैं।
1: ओके, ठीक है ठीक है,
0: कोई प्रॉब्लम नहीं।
1: ओके, सो नमस्ते, नमस्कार एवरीवन वंस अगेन एंड थैंक यू मुझे इस मंच पे बुलाने के लिए। एंड अबाउट मी, अपने बारे में कुछ बताऊं तो मेरा नाम अर्पित साहू है, मैं एनटीटी ग्लोबल नेटवर्क्स जो कि एक टेलीकॉम कंपनी है वहां पे काम करता हूं। किंग देयर,
0: ओके।
1: लेकिन एज अ हॉबी आई एम अ पैशनेट म्यूजिशियन, आई लाइक टू सिंग, मुझे बहुत पसंद है गाना गाना। ऑल्सो आई लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, ऑल्सो आई लाइक लोगों से, बच्चों से इंटरेक्ट कर। डेली रूटीन आई टेक सम योगा क्लासेस फॉर द किड्स family just to have fun, engage with them, have some positive vibes during the day. So that's all about me. I'm a fun loving person, enjoys every day and make sure the start and the end you don't regret. Once you have an end of the day, you don't regret for the day. So wow. That's all about me.
0: That is so cute. बड़ी खूबसूरत बात है। देखो दोस्तों, इतने प्यार से अर्पित जी ने बताया है और हम सभी को ये बात मालूम है, लेकिन कई बार ना हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर पाते अपनी जिंदगी में। ज्यादा स्मार्ट बन जाते हैं ना। अब जैसे अर्पित जी ने बताया तो आप लोगों को ये लगेगा कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, जिंदगी को मस्त तरीके से जीना है वगैरह वगैरह, ये बातें तो हमको पता ही है। लेकिन दोस्तों आपसे पूछना चाहूंगा, चाहे किसी भी भगवान की आप पूजा करते हो, मंत्र भी तो 20-25-100-200 बार पढ़े जाते हैं तब याद होते हैं ना, कोई भी आयत आयत आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो उसके स्क्रिप्चर्स आप पढ़ते हो बार बार बार बार तब याद होते हैं ना। तो अगर अर्पित जी ये कह रहे हैं एंड ऑफ द डे यू शुड नॉट रिग्रेट अबाउट एनीथिंग, मस्त रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, तो ये भी तो उसी मंत्र की तरह हम दोहरा ही तो रहे हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अर्पित जी ने कहा है तो ये बेहतर है हम इस मंत्र को एक बार और पढ़ लें, याद हो जाएगा तो मजा आएगा। चलो अर्पित भाई, प्रोग्राम को शुरू करते हैं, तो आप मुझे बताओ कौन सा पहला सॉन्ग और दूसरा सॉन्ग आप हमारे दोस्तों के लिए तैयार करके लाए हो।
1: बिल्कुल, सो जैसा माहौल है उसी माहौल के हिसाब से आई थिंक लेट्स सिंग, आई वुड लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, दीवाना मैं चला।
0: ओके, किसने गाया, कौन सी फिल्म, थोड़ा सा बताइए ना।
1: सो दीवाना मैं चला, इट्स पिक्चराइज्ड, I need to recall myself, but it's picturized on Salman Khan, where he is fighting for his love.
0: Okay.
1: I think yes, the movie is it's a beautiful movie with Salman Khan and Kajol.
0: Okay.
1: That and it is sung by Udit Narayan.
0: Oh, all right.
1: It's a beautiful song where he is finding his love, where he's following her to reach her.
0: क्या बात है?
1: She is trying to go there.
0: तो बस एक लाइन जरा गुनगुना दीजिए.
1: Sure.

0: ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल अमेजिंगली ब्यूटिफुल। और दूसरा कौन सा गीत हम आपका ही हमारे लिए प्ले करें?
1: So I would like to ask everyone, आपका हाल कैसा है जनाब का? That's one of the beautiful songs. I love hearing that song. It's a beautiful song by Kishore Kumar. Sung beautifully. इसकी हरकतें, गाने की जो हरकतें हैं, the interaction between the Kishore Kumar and the female actress is, I think, Madhubala.
0: Madhubala,
1: amazing.
0: Correct.
1: Yes.
0: It's oh amazing. My God, she was so beautiful. अमेजिंग। आज भी तो दिल हिल जाता है यार बॉस उसके बारे में सोच के। लेकिन ये हाल कैसा है जनाब, तो ये तो फीमेल सिंगर ने गाया है ना सर? किसने गाया है?
1: इट्स अ डुएट।
0: अच्छा, इट्स अ डुएट।
1: यस,
0: ओकी डोकी, इट्स अ डुएट। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, तो ये लीजिए ये दोनों प्यारे से गीत जो हमारे लिए अर्पित भाई ने रिकॉर्ड किए हैं, उनको सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।

0: बहुत ही सुंदर गायकी, बहुत ही बढ़िया। अर्पित भाई चलिए अपने बारे में थोड़ा और बताइए। वैसे तो आपने काफी कुछ अपने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया कि आप बच्चों के लिए योगा भी करते हैं, आप आउटडोर स्पोर्ट्स भी करते हैं। आउटडोर स्पोर्ट्स में कौन सा खेल रहे थे आप?
1: सो मेरा डेली रूटीन इज लाइक आई गो फॉर अ योगा क्लास फॉर द
0: योगा क्लास।
1: यस एंड एज ऑफ नाउ इट्स स्टॉप, बट आई जनरली लाइक टू प्ले बैडमिंटन ऑन अ रेगुलर बेसिस। अ वेरी गुड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वी हैव, हम लोग मिलके बैडमिंटन खेलते हैं। And yeah, then the daily normal life. Actually, in sports, I played almost all the sports. So I played hockey, I played football, I played cricket, I played lawn tennis, I played horse riding. I did horse riding, even water sports like windsurfing, kayaking and all that. I've done a lot of sports actually. So I love doing any kind of sports, any outdoor, indoor sports. I always love to do so.
0: Beautiful, amazing. So मैं पूछना दरअसल ये चाह रहा था अर्पित भाई कि आपको थोड़ा सा और बेहतर समझने के लिए, ठीक है? मैं मानता हूँ सिंगिंग आपका maybe, I don't know, you tell me, first love होगा, पैशनेट, पैशन के नाम पर। उसके बाद स्पोर्ट्स आपके मुंह से सुनाई ही दे रहा है कि कयाकिंग और विंड सर्फिंग, देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जॉटिक स्पोर्ट्स जिनका आपने नाम लिया है, बहुत खूब। तो और थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कोई ऐसी चीज अर्पित भाई जो आप कलेक्ट करना पसंद करते हो, जो आपके पास खूब सारी हो? फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लाइक बहुत सारे लोग घड़ियां इकट्ठी करते हैं, मैं जो हूं मुझे जूते इकट्ठे करने का बड़ा शौक है, कुछ ऐसा।
1: या सो आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, बट यस आई लाइक टू कलेक्ट स्माइल्स। अच्छा लगता है कि इफ आई एम डूइंग एनीथिंग फॉर वेयर एवरीवन लुकिंग एट मी और इंटरेक्टिंग विद मी जस्ट गिव्स अ स्माइल, वेदर इट इज म्यूजिक, वेदर इट इज एनी काइंड ऑफ अ बेसिक, इवन सोशल सर्विस इट इज, और एनीथिंग, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, if it gives me a smile, that's the best thing I want back for him. So I really like, if you say really about from the perspective as you made, if I really want to collect, I really want to collect the smiles from everyone.
0: Yeah,
1: that's about me.
0: दोस्तों मस्त, बहुत ही इंटेलिजेंट आंसर है ये। मतलब जैसे वो आप लोग ने बीरबल, अकबर बीरबल की कहानियां सुनी हुई होंगी, है ना? तो अर्पित भाई ने कुछ उसी तरीके का जवाब दिया है, घुमा के बड़े प्यारे ढंग से। मतलब जीत तो वही गए। अब यूं तो उसको कुछ कलेक्ट करने का शौक नहीं था, लेकिन आउट द इमीडिएटली, मतलब एट द स्पर ऑफ द मोमेंट जो कहते हैं ना, थिंकिंग ऑन द फीट, उन्होंने फटाक से सोच के कि आई कलेक्ट स्माइल्स। आय हाय हाय हाय, क्या कह दिया, वाह वाह वाह, मजा आ गया बॉस। सो चलो हमें अगले गीत बताइए जो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
1: श्योर, सो फॉर द ब्यूटिफुल इवनिंग लेट्स सिंग अ सॉन्ग, ये शाम मस्तानी।
0: ओहो,
1: अगेन किशोर कुमार का सॉन्ग विच इज वेरी फेमस, वेरी फॉर द मूवी आराधना आई गेस, जहां ही जहां वो ट्रेन पे, ट्रेन के ट्रैक पे द फीमेल एक्ट्रेस इज गोइंग एंड वो उनके लिए गाना गा रहे हैं।
0: नहीं नहीं, ये वाला
1: राजेश खन्ना जी के ऊपर डिस्प्लाइड,
0: ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, तो नहीं नहीं ये ट्रैक पे नहीं है बॉस, ये तो वो लोग पिकनिक मना रहे हैं सब लोग, और राजेश खन्ना जी खड़े हैं आशा पारिक पे लाइन मार रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा था ना।
1: ओ सॉरी,
0: उनको इंप्रेस करने में लगे पड़े थे।
1: आई एंजॉय सॉन्ग, सो आई थिंक दीज आर ऑल सम ऑफ द अर्ली ओल्ड मूवीज, सो नॉट सीन मच, बट आई मे बी गेट कंफ्यूज्ड विद दैट,
0: डोंट वरी अबाउट
1: इट, रियली द ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग।
0: दूसरा कौन सा?
1: एंड दूसरा मैं गाना चाहूंगा, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।
0: ओके ओके, ये तो किसका, अभिजीत का है? नहीं,
1: अभिजीत का सॉन्ग है, यस इट्स एन अभिजीत, अभिजीत ने गाया है सॉन्ग फॉर शाहरुख खान एंड जूही चावला इन द मूवी।
0: तो जरा सा बस गुनगुना के बोल दीजिए यार अर्पित भाई, जल्दी से।
1: श्योर, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं के आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो।
0: वाओ, ब्यूटीफुल। चलो दोस्तों, हो जाए फिर, ये दो प्यारे प्यारे से गीत सुनते हैं और फिर अर्पित जी के पास वापस आते हैं।

0: बहुत सुंदर, अमेजिंगली ब्यूटीफुल सॉन्ग, बहुत मजा आ रहा है यार बॉस आपसे बात करने में। चलो थोड़ा सा अपने बारे में और बताइए। आपने बताया कि आप एमपी से हैं, राइट? तो मतलब आपका नेटिव टाउन भी एमपी में ही है क्या?
1: यस, सो आई वॉज बॉर्न इन भोपाल, मध्य प्रदेश।
0: भोपाल, करेक्ट,
1: भोपाल मध्य प्रदेश।

0: I served there for almost 3 years. Some unfortunate thing, because of some medical reasons, I could not continue there. So I came out, I looked for an MBA. And since my professional life, so for MBA I did in Pune, and since my professional life, I was in Mumbai for almost like 10 years. And after that, for last 3 years, I'm in Bangalore now. So that's about my journey, or my professional and personal journey, what happened. But throughout the years, the music has been, I would say, always been at the corner. However, I didn't get a time to explore myself as a musician, or how I always had this feeling that I can sing well. So school mein bhi kabhi chote mote events hote the. As I said, my father is in State Bank of India. So we had an opportunity to stay in State Bank campuses, colonies. So wahan pe social activities bahut hote hain. So hamesha un social activities mein, jab bhi hame mauka mila, jab bhi opportunity mili, we used to sing. So that's how it was always stayed with me. Professional life mein aane ke baad, it was like a full stop for the music, for the singing. For a long time, I was not singing anything. Now again, back to Bangalore. Jab main Bangalore aaya, to yahan pe we got a very good environment, very good friends, jinke saath mujhe mauka mila ki I can continue singing and I can perform on some stage. So that's where that music journey basically again flourished. So that's what all about me, my interests.
1: Okay, all right. लेकिन मेरी बात सुनो ना अर्पित भाई, मैं तो दरअसल भोपाल के बारे में कुछ जानना चाह रहा था यार। आप पता नहीं मुझे कहाँ ले गए। भोपाल में कोई बढ़िया सी खाने की चीज बताइए ना, मैं कुछ दिनों के बाद भोपाल जाने वाला हूँ, तो आईड बीन थिंकिंग कि समबडी कैन सजेस्ट कुछ बढ़िया चटपटी, कोई मतलब स्ट्रीट टाइप्स, स्ट्रीट फूड टाइप्स, कुछ बताओ ना, कुछ क्या मिलता है भोपाल में।
0: एक्चुअली आई एम रॉन्ग पर्सन टू आस्क, बिकॉज़ After my professional life, it's been very long now. I have almost like 10 years I have not been to Bhopal.
1: अरे तो यार उस
0: वक्त when you talk about हाँ please बताइए बोलिए
1: भाई, जिस वक्त आप after all आपने 12th वहाँ से की है, तो वो तो बहुत ही अल्लड़ उम्र होती है, पूरे शहर में घूमते हो गए आप, कहीं पर चाट पकौड़ी, कहीं पर जलेबी, कुछ तो खाते हो गए यार, कितना बदल गया होगा।
0: करेक्ट सर, भोपाल इज भोपाल एंड रादर इंदौर जो एमपी का वो सेक्शन है, इज वेरी फेमस फॉर पोहा।
1: पोहा, ऑलराइट,
0: यस। सो पोहा इज वन ऑफ द बेस्ट डेलिकेसीज यू विल फाइंड इन ड्यूरिंग इन भोपाल एज वेल एज इन इंदौर।
1: ओके,
0: सो दैट इज माय फेवरेट टू, वी यूज्ड टू एनीवेयर वी यूज्ड टू गो आउट वी यूज्ड टू हैव दैट।
1: तो अभी आपको बेंगलोर में मिल जाता है पोहा?
0: Fortunate enough कि मेरे parents मेरे साथ हैं, तो my mother is a very good cook. She cooks poha for us, but not in Bangalore city.
1: Okay. हाँ, city में नहीं मिलता होगा। क्या बात है। तो चलिए साहब, ये तो तय हो गया कि I have written down कि भैया भोपाल जाना है तो पोहा तो खाना ही खाना है, 2 से 3 बार तो खाऊंगा ही खाऊंगा। Amazing. चलिए मुझे गीत बताओ बॉस, कौन सा सुनवाऊ मैं आपके दोस्तों को?
0: बिल्कुल। So next song मैं आपके लिए गाना चाहूंगा, रूप तेरा मस्ताना।
1: रूप तेरा
0: मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए।
1: Wow, that's beautiful। मतलब ये भी किशोर का ही गाया हुआ, I think, है ना?
0: Yes. रूप तेरा मस्ताना is also किशोर कुमार।
1: All right, sir. चलो, and the next song.
0: And the next song, again, I would like to go back to Abhijit.
1: Abhijit.
0: It's Suno Na Suno Na
1: Sun Lo Na Hai Hai Hai Hai
0: Hum Safar Bujhi Ko Sun Lo Na
1: Suno Na Suno Na Okay. Amazing. Chalo boss. To aayye dosto, lijiye na. इन दोनों गानों का पहले लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए, आंखें बंद कीजिए और डूब जाइए, तब वापस आते हैं हम लोग।
0: रूप तेरा मस्ताना।

0: बहुत खूब। चलो अर्पित भाई, थोड़ा सा और अपने आसपास के लोगों के बारे में हमें बताइए तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके के चरित्र वाले इंसान हो आप, थोड़ा पता चल जाएगा यार। अपने दो सबसे अच्छे दोस्तों के बारे में हमें बताइए, कौन है वो। देखो आप ये प्लीज मत कहना कि बड़े सारे दोस्त हैं, मैं सबका नाम नहीं लूंगा तो वो नाराज हो जाएंगे। अरे नहीं, कोई नाराज होगा, मैं हाथ जोड़कर सबसे क्षमा मांगता हूं दोस्तों। अगर अर्पित भाई दो लोगों का नाम ले रहे हैं ना, तो बाकी जिनका नहीं लिया वो लोग कोशिश करें कि दो लोगों में वो भी आए, ट्राई करें। इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। ओके, तो अपने दो दोस्तों के बारे में बताओ यार भाई।
1: सो मेरा वन ऑफ द माय बेस्ट फ्रेंड्स, जो मेरा बेसिकली चड्डी बड़ी आई विल कॉल,
0: चड्डी बड़ी।
1: सो हम लोग राइट फ्रॉम क्लास फोर्थ एंड फिफ्थ हम लोग सेम कैंपस में थे। बोथ ऑफ माय, मतलब उसके पेरेंट और मेरे पेरेंट दोनों स्टेट बैंक क्वार्टर्स में रहते थे, हम लोग सेम कैंपस में रहते थे। फॉर्चुनेटली हम लोग सेम स्कूल में भी थे फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओनली आफ्टर जॉब वी काइंड ऑफ दूसरे डिफरेंट ऑफ में गए, लेकिन हमारी बॉन्डिंग इज लाइक सो गुड। हम आज भी एक दूसरे को बात करते हैं तो we don't feel like missing out on anything, or we don't feel like कि हम ऐसी कोई चीज है जो हम एक दूसरे शेयर नहीं कर सकते। we can share everything and anything with each one of them. हमारी childhood memories right from, चाहे वो कुछ games खेलना हो या छोटे, मुझे अभी भी याद है हमने एक छोटे मोटे rockets बनाए थे, एक boomerang बनाया था, जो हम randomly कभी कुछ enjoy करते हुए एक दूसरे के साथ enjoy करते रहते थे। हम उस campus में we were like फेमस किड्स, जो हर तरह की नौटंकी के लिए, हर तरह के एंजॉयमेंट के लिए फेमस थे, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स के लिए हो। अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना है तो वी वर ऑलवेज देयर टू प्ले, और किसी तरह की नौटंकी करनी हो, लाइक उस जमाने में हम लोग पिट्ठू खेलते थे। आई डोंट नो आप कितने लोगों को पिट्ठू पता है, वेयर इट वॉज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यूज टू प्ले। सो हम लोग खेलते थे एंड वी वर लाइक अमंग्स द फास्टेस्ट रनर्स, amongst the fastest to throw and all that, so ke liye hum log bahut accurate the, so it was always fun baaki logo ke beech mein, it was always a demand ki okay these two should be in one team or should be in separate team, but we always like ki nahi hum ek team mein honge, and we always used to enjoy and make sure we are winning and all that. So hum log competitive bhi the, but at the same time hum log ki camaraderie, I think hamara equation was very good even outside playground. घर पे हम लोग एक दूसरे के फैमिलीज के साथ बहुत अच्छे से जॉइंटली मिलते थे। वो मेरे घर आके खाना खाता था, उसको बहुत अच्छा लगता था मेरे मदर के हाथ का खाना। आई यूज टू प्ले विथ हिज फैमिली, उनके घर पे जाके हम लोग, इट वॉज लाइक एवरी वीकेंड वी यूज टू बी देयर ईदर ऑफ वन प्लेसेस, हम किसी एक के घर पे होते थे और वहां पे फुली इंजॉय कर रहे होते थे। ऑलमोस्ट एवरी अदर डे वी आर टूगेदर। सो इट वॉज ओनली आफ्टर after the school and everything, jab hum log jobs ke liye ya education ke liye further aage gaye, that's the reason we were not together, but otherwise the equation with between both of us is beautiful, and his name is Mr. Shri Ram. wo bhi Bangalore mein hai, maybe he'll be listening to us on this. aaj wo Shri Ram hamare sath Bangalore mein hai, but in a different place, not residing with us.
0: to ye to ek dost hue, dusre
1: and second friend I recently made is Musharraf. So this is, he's a very good friend and a helping hand for me in my musical journey. So humne basically 2 years back humne apna music journey ek tarah se I have restarted my music journey. So since then he is with me and he's always supportive, hamesha basic cheezon mein help karta hai har tarike se improve karne ke liye. let's say I want, I'm not singing this well, या मुझे ये टाइप का गाना गाना चाहिए, मुझे उस टाइप की चीजें करना चाहिए, वेर एवर पॉसिबल ही इज द वन हु इज हेल्पिंग मी एज अ फर्स्ट स्टेप. देयर आर सो मेनी अदर फ्रेंड्स, हमारा एक छोटा सा म्यूजिकल ग्रुप है यहाँ पे जो हमेशा हमें हेल्प करते हैं, बट या देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट हिम, ही इज ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड एज अ फ्रंट रनर आई वुड से. सो ही इज द सेकंड फ्रेंड आई हैव, और वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स आई हैव.
0: वाओ,
1: लाइफ
0: अमेजिंग. तो बहुत खूब. चलो दोस्तों, हम ये दो गाने इन दो दोस्तों के लिए ही डेडिकेट करते हैं अर्पित जी के. तो अर्पित जी चलिए हमें बताइए ना, कौन से सॉन्ग्स हम प्ले कर रहे हैं हमारे दोस्तों के लिए, आपके दोस्तों के लिए.
1: श्योर. सो द नेक्स्ट सॉन्ग इज तुमसे मिलने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और कोई वादा है
0: जानम। बहुत बढ़िया।
1: जानम।
0: ओके
1: ये एसपीपी का बहुत ही प्यारा सॉन्ग है।
0: सेकंड
1: एंड सेकंड सॉन्ग इज यू ही कट
0: अरे
1: जाएगा
0: वाह
1: सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से।
0: यार, जितना मुझे याद पड़ता है इसको उदित नारायण ने गाया शायद,
1: उदित नारायण जी ने गाया
0: और
1: है,
0: आमिर खान
1: एंड दिस
0: पर,
1: इज आमिर खान जी।
0: और
1: या इज प्लेइंग,
0: क्या नाम है उसका, जूही
1: इज
0: चावला।
1: गोइंग फॉर अ करेक्ट एंड इज गोइंग फॉर अ पिकनिक विद हिज
0: या
1: विद अ ग्रुप ऑफ किड्स।
0: अमेजिंग। चलिए दोस्तों, इन दोनों प्यारे से गीतों का आनंद उठाते हैं जो कि हम डेडिकेट कर रहे हैं अर्पित जी के ही इन दो दोस्तों के नाम।

0: बहुत खूब। तो चलिए अर्पित भाई, अब काफी कुछ हमने आपके बारे में जाना, आप अब अपने दोस्तों को जो भी आपको सुन रहे हैं, जो भी आज आपके फैन हुए हैं, वो जान गए हैं कि कितने जिंदा दिल इंसान हैं वो आप, कितने खुले विचारों के, हंसते खेलते हमेशा मुस्कुराने वाले इंसान, मुस्कुराहट इकट्ठे करने वाले लोग। तो उन सब लोगों के लिए कुछ भी बात आपके मन में होना तो कह डालिए, बात कीजिए उनसे, आज सबकी पक्की दोस्ती होने वाली है। बोलिए।
1: बिल्कुल। सो आई थिंक सबके लिए एक, आई थिंक जो मेरा मोटो है लाइफ का, इट्स नॉट माय मोटो बट एक आरजे है जिनसे मैंने ये सुना है, एंड आई रियली लाइक द कोट एंड आई रियली फील दैट वी ऑल शुड फॉलो। सो उनका कहना है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।
0: वाह।
1: सो वॉट एवर एक्शन, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, वेदर इट इज सिंगिंग या किसी की हेल्प कर रहे हैं या वॉट एवर एक्शन इट इज, मेक श्योर यू डू इट विथ इतनी शिद्दत से उसको करो कि लोग उसको पसंद करें एंड लोग सोचें कि हाँ मुझे भी ऐसा करना चाहिए, एंड आइडियली यस इट विल हेल्प द सोसाइटी, एंड मेक श्योर उसके पीछे कोई मोटिव ना हो, कोई नेगेटिव मोटिव ना हो। अगर हम फॉर एग्जाम्पल हम आज की डेट में मॉर्निंग में योगा क्लास लेते हैं, उसके पीछे, एंड दिस इज लर्निंग फ्रॉम माय पेरेंट, एक्चुअली मेरे फादर बहुत टाइम से योगा क्लासेस ले रहे हैं, ऑलमोस्ट लाइक 3 इयर्स इन बैंगलोर कंटिन्यूसली वो डेली योगा क्लासेस लेते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने अभी स्टार्ट किया उनको हेल्प करने के लिए, तो इन अ वे आई एम टेकिंग ओनली फॉर द किड्स राइट नाउ।
0: ओके।
1: सो उसके पीछे कोई द मोटिव इज ओनली टू मेक श्योर किड्स आर एंजॉयिंग, और कोई मोटिव नहीं है, देयर इज नो मोटिव फॉर फी, देयर इज नो अदर मोटिव, ओनली ऑब्जेक्टिव इज end of the day kids should have a smile on their face, and every day I'm telling you, every day after that 1 hour class when I hear from those kids, thank you sir, aaj bahut acha laga, aaj humne ye sikha, aaj humne ye enjoy kiya, next day they come and tell sir aaj humne ye different kiya, aaj hum ye karna chahte hain, it really peps up mere, it gives me a complete full of energy, it makes me full of energy, itni energy aa jati hai body mein, lagta hai ki this is what you're living for. So really that's how I feel life should be. Give. Mm-hmm. And it, don't expect anything. Definitely lots and lots of love you will get in back.
0: Okay. So, दोस्तों, बहुत ही प्यारे ढंग से अर्पित जी ने अपनी बातें बताई, और जाहिर से बात है किड्स के साथ उनके जो रिलेशंस है बिल्कुल मासूम, बहुत पवित्र, बहुत खूब, ब्यूटिफुल, बहुत ही प्यारी सिंगिंग। अर्पित भाई, बस हमारे प्रोग्राम का वो वक्त आ चला जहां पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बस चलते चलते हमारे सभी लोगों के लिए कुछ बोल दीजिए, मैसेज दीजिए, कुछ गुनगुना दीजिए।
1: ओह, वेरी नॉट, वेरी नॉट। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, अभी ना जाओ छोड़ कर ये दिल अभी भरा नहीं।
0: क्या बात है।
1: सो इट्स नेवर, आपसे बात करना और लोगों से बात करने का आई थिंक कोई एंड नहीं है। आई थिंक बेस्ट हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि वी कैन सेंड स्माइल्स, वी कैन टेक स्माइल्स,
0: कलेक्ट स्माइल्स,
1: दैट्स व्हाट, कलेक्ट स्माइल्स। And even mera objective bhi hai, I think there were some people always ask what is the success for you, right?
0: Mm-hmm,
1: I always say success for me is the number of smiles I am getting from that. So even if I'm performing an event, agar sabke chehre happy hai, people are enjoying, no matter there is galti hui hai, no matter what happened, but agar everyone is happy, end of the day we are performing for the audience, we are performing for the people who are giving you time, so they should go happy.
0: Sure.
1: So that's my always an objective and I always live forward to that.
0: सही फरमाया। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और हमारे सुनने वालों को भी सुन के बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, प्लीज यू टेक केयर।
2: कहने को वैसे तो सारा सुकून है, फिर भी ये दिल है के इसको जुनून है।
0: दोस्तों, आज के कलाकार के इस सुरीले से सफर में बस यहीं तक। मुझे उम्मीद है आज की ये महफिल आपके दिल में एक मीठी याद छोड़ गई होगी। दोस्तों, कुछ गीत खत्म नहीं होते, बस दिलों में बस जाते हैं, और जब भी याद आते हैं तो फिर से मुस्कुराहट बिखेर जाते हैं। तो हम फिर आएंगे नए सुरों और नए कलाकारों के साथ, तब तक अपने दिल को बस यूं ही गुनगुनाने दीजिए। नमस्कार।

शुभ प्रभात दोस्तों, एक नई सुबह, नई रोशनी और नए विचारों के साथ आपका स्वागत है हमारे आध्यात्मिक कार्यक्रम दिव्य दर्शन में। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे सकारात्मक सोच, मन की स्थिरता और दिन की शुरुआत शांति और ऊर्जा के साथ करने की। तो चलिए एक गहरी सांस लीजिए, मन को हल्का कीजिए और हमारे साथ इस सुंदर सुबह की यात्रा शुरू कीजिए। और आज हमारे साथ एक प्रबुद्ध मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आध्यात्म के बारे में, धर्म के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं दिव्य दर्शन।

0: नमः।
1: आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों दिव्य दर्शन के इस पवित्र प्रोग्राम में। जैसा हम हमेशा करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं कि ये पूरा प्रोग्राम विचार करने का है, क्योंकि हम इसमें अपने आप को पहचानने की कोशिश करते हैं। और इस पहचानने की कोशिश में हमारे जो मेहमान होते हैं वो हमारा साथ देते हैं, हमें बताते हैं क्या करें, क्या ना करें, क्या सोचें। तो आज हमारे साथ जो मेहमान है वो सुनीता मैम है। मैं सुनीता मैम का बहुत आभार करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और उनसे ही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे सुनने वालों के लिए अपने बारे में थोड़ा सा बताएं। आप कौन हैं सुनीता मैम, कहाँ हैं, क्या करती हैं आप?
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सुनीता, अगर मैं उसके साथ एक विशेषण जोड़ दूं तो साधारण सुनीता।
1: वाह क्या बात है,
2: बस ये मेरी पहचान है। और क्या बोलूं कि कहाँ रहती हूँ, हाँ इस जमीन पे हूँ, जमीन से जुड़ी हूँ और ठौर ठिकाना बहुत जगह है। कभी अमेरिका तो कभी भारत, तो कभी भारत के हिमाचल में, तो कभी दिल्ली में, तो कभी गोवा में। सो भगवान की दया से ऐसा कुछ वक्त रहा है कि मुझे जगह जगह रहने को मिलता है। अब मैं रिटायर्ड हूँ तो घूम सकती हूँ इधर उधर।
1: जी जी, नहीं तो रिटायर्ड मतलब आप किसी प्रोफेशन में थी, कुछ विभाग में थी, कुछ कर रही थी आप?
2: जी मैं पढ़ाई से जुड़ी थी और मैं अध्यापिका रही हूँ और फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक ट्रेनर, और जिसमें मैं इंग्लिश की वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर भी रही हूँ। और कैसे कोई भी भाषा, देखिए हम हिंदी बोलें तो हिंदी की का भी उच्चारण हमेशा सही होना चाहिए, और सही नहीं होने से उसका जो अर्थ है वो विकृत हो जाता है। ऐसे ही अंग्रेजी में भी ये है, तो मैं प्रोनंसिएशन पे काफी जोर देती थी और उसको न्यूट्रलाइज करने का कि ना तो आप अमेरिकन ढंग से बोलें, ना आप अपना अपना रीजनल टच उसमें लेके आए। जैसे अगर बंगाली होते हैं तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट अलग सा एक तरीका हो जाता है, तो उससे फिर मीनिंग्स जो हैं वो बदल जाते हैं। तो मैं साधारणतः यही चाहती हूँ कि जो भी भाषा हो उसको जितना हो सके उसको स्वच्छ स्पष्ट रूप से बोला जाए, और वही मैं सिखाती थी।
1: बहुत सुन, बिल्कुल सही बात बताई सुनीता मैम ने कि भाषा वैसे भी किसी सहारे की मोहताज नहीं होती, अपने आप में बहुत ताकतवर चीज होती है भाषा। और बड़ी मजेदार बात है दोस्तों, हम इंसानों को, मनुष्यों को प्रकृति से, प्रकृति के दूसरे जीवों से अलग हमारी भाषा ही बनाती है। हमने उसको कितना डेवलप किया है, कितनी भाषाएं मौजूद हैं और हम उसको कितने प्यार से बोलते हैं। तो ये भाषाएं बहुत ताकतवर होती है दोस्तों, इनका गलत इस्तेमाल कभी ना करिएगा।
2: और फिर राष्ट्रभाषा
1: जी,
2: तो वो हमारी माँ है
1: जी,
2: तो उसका सम्मान तो करना ही है,
1: करना ही
2: है। जो बोले वो अच्छा बोले।
1: बिल्कुल, बड़ी प्यारी बात। तो जैसा कि इस प्रोग्राम का थीम है सुनीता जी, जो इस प्रोग्राम की आत्मा है उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो है अध्यात्म। तो मुझे बताइए, हमारे दोस्तों को बताइए, अपने विचार साझा कीजिए कि अध्यात्म से आप क्या समझती हैं, आप क्या मानती हैं, अध्यात्म क्या है?
2: जी सो अध्यात्म या जो आजकल बाकी लोग जैसा इसको बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी,
1: जी
2: उसका अर्थ है स्वयं की उन्नति। अब जब आध्यात्मिकता की बात होती है तो हमारे माइंड में, हमारे मन में अलग अलग विचार आने लगते हैं। मैं जन साधारण की बात कर रही हूँ, वो सोचते हैं कि शायद कोई गेरुए रंग का चोगा पहना होगा, या कोई चीज से परहेज करते होंगे, या कुछ और ऐसा होगा। लेकिन सही माने में अध्यात्म का अर्थ केवल स्वयं का उद्धार है। हम अभी जिस तल पर हैं, उससे हम ऊपर उठें, हम स्वयं को जानें, स्वयं को देखें कि हम खुद कौन हैं, मैं कौन हूँ। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे जीवन का मूल बन जाता है कि मैं किस तरीके से काम कर रहा हूँ। और अध्यात्म को कभी भी हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। ये कोई भी एक धर्म नहीं है, हिंदू क्रिश्चियन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल इंसान को अपना समझना, अपनी वृत्तियों को समझना, अपने ध्येय को समझना, अपनी हम क्या करते हैं और कैसी हमारी सोच है, स्वयं को जानना, ये है अध्यात्म।
1: जी अमेजिंग। जाहिर सी बात है कितने प्यारे ढंग से सुनीता मैम ने इस चीज को समझाने की कोशिश की दोस्तों, कि अध्यात्म, और बहुत ही खूबसूरत से उन्होंने अध्यात्म और धर्म के बीच का फर्क भी हमें समझाया, बहुत खूबसूरत। अब इसी विषय में आगे बढ़ते हुए मैं एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा, उससे पहले हम लोग बस जरा सी देर रुकते हैं, एक भजन का आनंद लेते हुए फिर आपके पास वापस आता हूं।

0: अब इसी बातचीत को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जैसे कि अध्यात्म की बात कर रहे हैं तो एक शब्द आया धर्म, तो उसको आपने हमें समझाया। फिर एक और शब्द आता है प्रार्थना, प्रेयर, और एक और शब्द आता है ध्यान, यानी कि मेडिटेशन। तो हमारे सुनने वालों के लिए और आपस में हम जो विचार विमर्श कर रहे हैं उसके उद्देश्य के लिए, प्रार्थना और ध्यान के बीच का फर्क या उनकी सिमिलैरिटी के बारे में सुनीता जी आपको क्या लगता है, आप क्या कहना चाहेंगी, मेडिटेशन एंड प्रेयर यानी कि ध्यान और प्रार्थना?
1: जी, सो ये आजकल बहुत ही एक प्रचलित शब्द है मेडिटेशन, और ये एक तरह का फैड भी बन गया है, फैशन भी बन गया है, और लोग इसमें अपन को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि मैं तो जी मेडिटेशन करता हूँ, ये मेरा मेडिटेशन का टाइम है। लेकिन जब सच में वो करने बैठते हैं, आम जनता की बात कर रही हूँ, तो 5 मिनट भी इतने लंबे लगते हैं, इतने लंबे लगते हैं, और हर तरह के उसमें आपके ख्याल आ रहे होते हैं
0: जी।
1: तो यहाँ पे मैं ये जरूर इसमें फर्क बताना चाहूंगी कि ध्यान या मेडिटेशन आंखें मूंद कर बैठना नहीं है, बल्कि अपनी ही गतिविधियों को देखना है, परखना है, कहाँ दौड़ रहा है, किसके पीछे, किस मकसद से, मेरी वृत्ति क्या है, मैं क्या चाहता हूँ, क्या पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, अच्छा या बुरा नहीं, लेकिन भले के लिए कुछ कर रहा हूँ या किसी की खुशी के लिए कर रहा हूँ, इसमें भी देखिए आप बहुत अंतर है। सो ये जब हम ध्यान में बैठते हैं, या इससे तात्पर्य ये भी है कि ये सही अवलोकन है कि इसमें जब हम बैठते हैं तो हम इन प्रश्नों के बारे में अपनी ही वृत्ति को देखते हैं। अब देखिए, अब एक चोर मानिए, वो भी तो आंख बंद करके बैठ सकता है ना, लेकिन आप सोचिए वो क्या सोच रहा होगा, वो चुपचाप बैठकर अगले दाम के बारे में सोच रहा होगा
0: जी,
1: है ना, कि वो केवल सिर्फ प्रिटेंड करना नहीं है, है ना, वो तो अपनी चोरी की युक्ति निकाल सकता है, लेकिन यहाँ फिर सच्चाई का मामला है अपनी ही चोरी पकड़ने का।
0: जी जी,
1: ये है कि मैं जो ये कब काम करने लगी हूँ, या मैं ऐसे जो शब्द बोल रही हूँ, या मैं किसी के आगे बहुत झुक रही हूँ, झुक कर नमस्कार कर रही हूँ, और जैसे ही वो चले जाते हैं मैं बोलती हूँ अरे फिर आ गए परेशान करने, और फिर ये ऐसे या फिर ये, तो ये अपनी चोरी पकड़नी है, अपने को स्वयं देखना है कि हम कितने सच्चाई से चल रहे हैं।
0: जी जी,
1: इस बारे में सोचना का अर्थ है मेडिटेशन और ध्यान। फिर जब आप अपने के लिए जब सोचते हैं तो आप देखिए आपके आधा घंटा क्या घंटा भी निकल सकता है, और तपस्वी लोग आपको पता ही है कि वो फिर घंटों निकाल देते हैं।
0: बिल्कुल सही,
1: ये है सही माने में।
0: बहुत खूब दोस्तों, आपने जाना कि सुनीता मैम ने कितने प्यार से इस चीज को समझाया है कि ध्यान और प्रेयर प्रार्थना किस तरीके से हमें इतना मग्न कर देती है अपने आप में।
1: प्रार्थना आपने मेरे को बोला, प्रार्थना तो हम बस हमारी एक ये विश है कि हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, इसी को बस ऊंचा से हम बोल रहे हैं, और वो बदलती रहती है। प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे वो लड़की मिल जाए, प्रार्थना कर रहा हूँ मुझे वो लड़का मिल जाए, आज प्रार्थना कर रहा हूँ वो मुझे ये घर मिल जाए, ये इतना पैसा मिल जाए, अब इसको तो प्रार्थना नहीं बोलेंगे। प्रार्थना का मतलब है आप सच में एक उच्च शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं और उसका धन्यवाद दे रहे हैं, तब तो हम कहेंगे ये प्रार्थना। ध्यान में भी वही है कि आप कृतज्ञता को महसूस करें।
0: वेरी राइट, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पर एक फर्क आ रहा है कि प्रार्थना हम कुछ स्वार्थी होकर करने लगते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, मेडिटेट करने की जरूरत है कि बहुत ज्यादा स्वार्थी होकर भी नहीं। स्वार्थ अपने आप में एक लेवल तक ठीक होता है, क्योंकि अगर आप अपने आप को उचित रख पाएंगे तभी तो आप दूसरे का ख्याल रख पाएंगे, लेकिन बस बाल भरे का फर्क होता है, हम कभी अपने लिए स्वार्थी होते हुए उस बाल को कब पार करते हैं पता ही नहीं चलता। यही संभलने की जरूरत है, इसी को आध्यात्म कहते हैं। बहुत खूब, तो जाहिर सी बात है कुछ फायदे हमें नजर आए अभी सुनीता जी ने बताया। तो सुनीता जी इस बारे में आप थोड़ा और खुल के हमें बताइए कि आध्यात्म किसी भी इंसान को कैसे और ज्यादा पॉजिटिव कर सकती है और सकारात्मक बना सकती है और एक अच्छा इंसान बना सकती है।
1: जी, क्योंकि आध्यात्मिकता जो है, जैसे मैंने कहा, ये एक सत्य के पथ पर चलने का तरीका है। और जब हम खुद से सच्चे रहेंगे तो हम हमेशा सच्चाई से ही आगे बढ़ेंगे और परोपकार की तरफ भी बढ़ेंगे। सो आप एक बार ही फिर आपने बोला कि पॉजिटिव
0: जी
1: है ना, कि पॉजिटिव जो है कि सच जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, इन अ सेंस कि हमें आम किस चीज का डर होता है, कभी मृत्यु का डर, कभी ये जीवन जानते हुए कि ये बिल्कुल क्षण भंगुर है, फिर भी हम डरते हैं कि अगर मेरा ये छिन गया या मृत्यु हो गई या बीमारी आ गई, ये सब चीज जो है, अगर हम ये समझें कि हम एक प्रकृति का एक अंग है, एक रूप भी है, जैसे एक पेड़ भी बड़ा होता है, पत्ते आते हैं उसमें नए नए, ऐसे ही हमारी भी अपने शरीर भी जो है वो उन्हीं पंचभूतों का बना हुआ है।
0: बिल्कुल,
1: पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, ये सब चीजें हम में भी हैं और प्रकृति में भी यही है। तो हम प्रकृति का ही एक अंग है। हम कभी भी ये नहीं सोचें कि नहीं मैं अलग सा दिखता हूं तो मैं ये बिल्कुल अलग सा हूं। अब पॉजिटिविटी की बात ये है कि जैसे एक वृक्ष में जितनी हम उसका ध्यान रखेंगे, अच्छी खाद डालेंगे, उतना ही वो पनपता है। ऐसे ही हम अपने शरीर रूपी वृक्ष में हम जितना अच्छी खाद, मतलब अच्छा ज्ञान, सही कर्म, ये सब करेंगे तो हमारा जीवन भी एक सकारात्मकता को पकड़े रहेगा। और जो जितनी भी विषमताएं हैं जिंदगी की, उसको भी समझेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। कुछ कठिन काम या मेहनत करने से डरेगा नहीं, क्योंकि सच यही है कि कोई भी चीज हमें हासिल बिना एक मेहनत करे नहीं होती है। तो ये सच जानते हुए हम जल्दी से विफल नहीं महसूस करेंगे और ना ही हम आलस करेंगे, तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे। हिम्मत भी बनी रहेगी कि अभी नहीं हुआ तो थोड़ी और देर में हो जाएगा, इसमें और काम करना होगा, क्योंकि आप सच्चाई के पथ पे चल रहे हैं, अपने को भी देख रहे हैं कि क्या मैंने ये काम करने के लिए मैंने पूरी स्किल्स मैंने जुटा ली हैं, किया मैं ऐसे ही प्रिटेंड कर रहा हूं कि मैं ये काम कर सकता हूं। तो सच को धारण किए हुए आपका जीवन जो है वो हमेशा सकारात्मक ही रहेगा, दुनिया की तरफ भी, लोगों की तरफ भी और अपनी तरफ भी।
0: जी, बहुत सुंदर, बहुत गहरी बात सुनीता मैम ने हमें बताई है कि किस तरीके से आध्यात्म हमको सकारात्मक रहने में कैसे कैसे मदद करता है। आराम से टेक योर टाइम दोस्तों, विचार कीजिए और तब तक इस भजन को